मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स, DRM 1233 किलोहर्ट्स, न्यूज़ ऑन AIR ऐप, DTH और वेव्स OTT पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 10वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 1 अगस्त 2026। सुबह के 5:56 हो रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

0: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुबह के 6 बजने को हैं। हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। उन्होंने भटके हुए युवाओं के प्रति सहानुभूति दिखाने की अपील की और कहा कि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए उन्हें दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखानी चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने राजधानी के जंतर मंतर पर हुई हाल की घटना का जिक्र किया, जहां उनके और उनकी दिवंगत मां के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया था। उन्होंने कहा कि इस घटना को देश और दुनिया के लोगों ने देखा है और समाज में इस तरह के व्यवहार पर आक्रोश और निराशा स्वाभाविक है, लेकिन बचपन सीखने, गलतियां करने और उन्हें सुधारने का भी एक दौर है।
2: बचपन में गलतियां होती है और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है।
1: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट पर प्रतिबंध लगाने को लेकर सोशल मीडिया कंपनी मेटा की ग्लोबल टीम को तलब किया है। उनसे एल्गोरिथम में पूर्वाग्रह और सार्वजनिक व्यवस्था में उनकी भूमिका से संबंधित मुद्दों पर पूछताछ की जाएगी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मेटा की ग्लोबल टीम से अगले सप्ताह के मध्य में पूछताछ होने की संभावना है। टीम को संसदीय समिति के समक्ष भी पेश होना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश में भोगपुरम स्थित अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित इस हवाई अड्डे को प्रतिवर्ष 60 लाख यात्रियों को संभालने के लिए तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री इस दौरान विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूर पहुंचेंगे। यहां वो स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। मंत्रिमंडल ने 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह निर्णय युवा विकास और राष्ट्र निर्माण के लिए खेलों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
3: कंप्लीट एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लिया जाएगा, स्टेडियम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रेनिंग का प्रोग्राम हो, न्यूट्रिशन प्रोग्राम हो, मेंटोरशिप हो, उन सब के ऊपर एक बहुत केयरफुली क्राफ्टेड प्रोग्राम बनाया गया है। 29,000 करोड़ रुपीस की ये स्कीम है 5 ईयर्स के लिए और ये सीधा वीविन करेगी ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और आगे कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने वाले हैं 2030 में भारत में, उन सब के साथ ये वीविन करेगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नहेम से बात कर उन्हें पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी। कल सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने बताया कि बातचीत के दौरान दोनों नेता प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, शिक्षा और जनधन संबंधों जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करने और भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने पर सहमत हुए। दिल्ली सरकार ने बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा का लाभ उठाने के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड के अनिवार्य उपयोग की समय सीमा 16 अगस्त

0: तक बढ़ा दी है। संशोधित निर्णय के अंतर्गत 15 अगस्त तक बैंक टिकट जारी किए जाएंगे। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने जूडो में पहली बार 2 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने जूडो में स्वर्ण पदक जीते। भारत के अब तक कुल 21 पदक हो गए हैं, जिसमें 5 स्वर्ण, 12 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 241.54 मीटर पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। इस कार्यक्रम में आज का विषय है परवल की खेती। इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं दिनेश कुमार सिंह।
2: किसान भाइयों, आज हम परवल की खेती के बारे में चर्चा करेंगे। परवल की खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी सर्वोत्तम होती है। इसमें जल निकास का उचित प्रबंध होना चाहिए। भारी व लवणीय मृदाएं इसके लिए उपयुक्त नहीं होती। यह फसल सूखे के प्रति सहनशील है। जलमग्न दशा में इसकी बढ़वार ठीक नहीं हो पाती है। मिट्टी पलटने वाले हल से एक गहरी जुताई करने के बाद 4-5 जुताइयां देसी हल अथवा कल्टीवेटर से करनी चाहिए। प्रत्येक जुताई के बाद पाटा चलाकर मिट्टी को भुरभुरा एवं समतल बना लेते हैं। जहां तक उर्वरकों की बात है तो परवल की अच्छी खेती के लिए 200 से 250 कुंटल सड़ी हुई गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से पहले ही खेत में मिला देना चाहिए। फिर इसके बाद 120 किलोग्राम यूरिया, 240 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 65 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से आवश्यकता होती है। अंतिम जुताई के समय 40 किलोग्राम यूरिया, 250 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 65 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से बेसल ड्रेसिंग के रूप में प्रयोग करना चाहिए। बाकी जो यूरिया बचती है, 40 किलोग्राम यूरिया मार्च माह में सिंचाई के बाद खेत में देना चाहिए तथा 40 किलोग्राम यूरिया फूल आने पर पौधों के चारों तरफ देना चाहिए। जब खेत तैयार हो जाए फिर 30 से 40 सेंटीमीटर गहरे गड्ढे 2 मीटर की दूरी पर बना लेते हैं। लाइन से लाइन की दूरी भी 2 मीटर ही रखते हैं, परंतु जब इसे मचान पर चढ़ाने के लिए उगाते हैं तो ये दूरियां 1.5-1.5 मीटर ही रखते हैं। प्रत्येक गड्ढे में आधा भाग मिट्टी, 1/4 भाग बालू और 1/4 भाग सड़ी हुई गोबर की खाद तथा 100 ग्राम नीम की खली, ये सब मिलाकर गड्ढे की भराई कर देते हैं और फिर इसमें परवल के पौधे को लगाते हैं। इसकी जो प्रजातियां हैं वह हैं डांडली, कल्याणी, बिहार शरीफ, सुपारी, सफेदा, निरिया, संतोखिया और जौनपुरी, ये सब देसी किस्में हैं। इसके अलावा कुछ उन्नतशील किस्में हैं जैसे FP1, FP3 और FP4। तो इनमें से जो भी प्रजाति आपको मिले लेकर के रोपाई करें। परवल के पौधे तनों द्वारा लगाए जाते हैं। इसके लिए परवल की लताओं की कटिंग लगाते हैं। पके परवल के बीज बोकर भी पौधे तैयार किए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से लगभग 50% पौधे नर निकल जाते हैं, जिससे पैदावार की क्षति होती है। अतः पौधों का प्रसारण कटिंग द्वारा ही किया जाता है। जिन पौधों में फलत समाप्त हो चुकी होती है वो तो मादा पौधे ही होते हैं। इन्हें पहचान कर इन्हीं लताओं में से 120 से 150 सेंटीमीटर लंबे टुकड़े, जिनमें 3-4 गांठों से कम ना हो, गोलाई में घुमाकर इस प्रकार मोड़ना चाहिए कि लच्छे की चौड़ाई लगभग 30 सेंटीमीटर रह जाए। फिर गोले को आमने सामने दाब कर बीच में बांध देते हैं, जिससे ये लंबे हो जाते हैं और दोनों किनारों पर छोर की शक्ल बन जाती है। इन लच्छों को तैयार किए गए थालों में, जो जमीन से 6 से 8 सेंटीमीटर ऊपर उठे हों, में इस प्रकार रोपित करते हैं कि बंडल के दोनों सिरे लगभग 2-2 सेंटीमीटर जमीन से बाहर निकले रहें। रोपाई के बाद मिट्टी भली भांति दबा देनी चाहिए ताकि वायु जड़ों तक न पहुंच सके। एक बात और ध्यान में रखें, परागण क्रिया सुचारू रूप से होने के लिए 10% नर पौधों की रोपाई भी करना जरूरी है। लताओं की रोपाई के तुरंत बाद थालों में हल्की सी सिंचाई

0: करनी चाहिए। इसके बाद आवश्यकता अनुसार गर्मियों में 8 से 10 दिन के अंतराल पर तथा सर्दी में 15 से 20 दिन के अंतर पर सिंचाई करते रहना चाहिए। फूलने एवं फलन के समय खेत में नमी रहना आवश्यक है। पौधों को मचान पर चढ़ाने से 2 से 4 क्विंटल प्रति एकड़ उपज अधिक मिलती है। ये मचान एंगेलायरन अथवा लकड़ी के खंभों पर लोहे के तारों अथवा लकड़ी के मार्च के महीने में बनाए जाते हैं। अप्रैल या मई माह में परवल में फल आने लगते हैं तथा अक्टूबर तक मिलते हैं। फल लगने के 15-20 दिन बाद परिपक्व हरे फलों की तुड़ाई मुलायम अवस्था में ही कर लेनी चाहिए। तो इस तरह से इन सब बातों को ध्यान में रखकर परवल की खेती करनी चाहिए।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें। परवल की खेती विषय पर जानकारी दे रहे थे दिनेश कुमार सिंह। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। भावना और रस के मिश्रित भाव से भक्ति का जन्म होता है और ये भक्ति ही हमें प्रत्यक्ष रूप से हमारे आराध्य का अनुभव कराती है। आराध्य का अनुभव करना ही हर भक्त की आखिरी पड़ाव होता है और भाव को खोजते हुए जब भक्त अपने हृदय तल की गहराइयों में उतरता है तब वह अपने आराध्य का दर्शन प्राप्त करता है।

हृदय तल की गहराइयों से भक्ति को अनुभव कर अपने आराध्य का दर्शन करने के पश्चात मनुष्य भौतिक सुविधाओं से ऊपर उठकर एक साधक के रूप में अपनी चेतना और अपने भक्ति भाव से अपने प्रभु की सेवा करता है, और इसी प्रकार वह भक्त से साधक के मार्ग पर आगे बढ़ता है। सच्चा साधक सभी विद्याओं में माहिर नहीं, बल्कि अपने प्रभु की इच्छा को जानने वाला, उनके प्रेम को समझने वाला और उनके द्वारा दिए गए आशीर्वचनों का पालन करने वाला होता है। साधना के मार्ग में सबसे सरल हैं शिव, और ये शिव हमारे आप सब में विद्यमान होते हैं। शिव अनेक महिम रूपों से मिलकर बने और हर भक्त में उसकी भावना के अनुरूप ढल जाते हैं।

साधना से प्राप्त प्रभु शिव हमेशा अपने भक्तों और संतानों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं और वो इस चराचर जगत में एक अखंड चेतना का व्यवहार करते हैं, जिससे सभी आपस में भक्ति प्राप्त कर एक

0: आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विचार बिंदु। आज के कार्यक्रम का विषय है शक्ति और युक्ति। आलेख और स्वर है अरुण पांडे का।
1: मनीषियों का अनुभव भरा कथन है कि शक्ति के बल पर पाया तो कुछ भी जा सकता है, पर उसे भोगा नहीं जा सकता। भोगने के लिए युक्ति की और चित्त से अभिपूरित समझदारी की आवश्यकता होती है। जहां दोनों का समन्वय होगा, वहां उपलब्धि भी हस्तगत होगी और सुख संवेदन

0: आया तो कुछ भी जा सकता है, पर उसे भोगा नहीं जा सकता। भोगने के लिए युक्ति की और चित्त से अभिपूरित समझदारी की आवश्यकता होती है। जहां दोनों का समन्वय होगा, वहां उपलब्धि भी हस्तगत होगी और सुख संवेदना की अनुभूति भी। दोनों का युग्म है, एक के बलबूते तो आधी बात ही बनती है, उसका स्वरूप आधा औंधा और कुबड़ा रह जाता है। शक्ति की महत्ता सर्वविदित है। भाप की शक्ति से रेल इंजन दौड़ते हैं और बिजली से कारखाने के यंत्र चलते हैं। इतने पर भी उनको दिशा देने में व्यवस्था करने के लिए बुद्धिमान संचालक की आवश्यकता पड़ती है। चालक न हो तो भाप की पर्याप्त मात्रा होने पर रेल चल भले ही पड़े, पर उसका अंत किसी से जा टकराने के रूप में ही होगा। बिजली मोटर घुमा सकती है और संबंधित मशीनों को गति दे सकती है, पर अभीष्ट उत्पादन नहीं दे सकती। उसके लिए उन कारीगरों की बुद्धिमत्ता अपेक्षित है जो ये जानते हैं कि किस प्रकार के उत्पादन के लिए क्या किया जाना चाहिए। उनका सहकार न मिलने पर बिजली खर्च होती रहेगी और मशीनें घिसती रहेंगी। हो सकता है कि ऐसी स्थिति में कुछ अनर्थ भी हो चले, कोई पुर्जा टूट जाए, कोई बॉयलर फट जाए। मनुष्य शक्ति संचय के लिए प्रयत्नशील रहता है और प्रयत्नपूर्वक उसे उपार्जित संकलित भी कर लेता है। धनवान होना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि उसका उपयोग किस प्रकार हुआ और उससे कितना लाभ उठाया गया, कैसा सुख पाया गया, क्या हित साधन हुआ। यदि इस विषय में समझदारी न साथ दे तो दुर्व्यसनों में, अपव्यय में, प्रदर्शन में उसका समापन हो सकता है। इस राह को अपनाने पर बहुत सारी कुप्रवृत्तियां व्यक्ति के साथ हो जाती हैं, स्वास्थ्य नष्ट हो सकता है, कुसंग में आदतें बिगड़ सकती हैं और अनीति अपनाने पर द्वेष प्रतिशोध की आपत्ति आ सकती है। ऐसे धनवान होने से वे निर्धन कहीं अच्छे रहते हैं जो रोज कमाते, रोज खर्चते और समझदारी के साथ संतुलन बिठाकर अपने जीवन की गाड़ी हंसी खुशी के बीच चलाते रहते हैं। शारीरिक सौंदर्य तो प्रकृति प्रदत्त है, पर बलिष्ठता आहार विहार को उच्च स्तरीय बनाकर बढ़ाई जा सकती है। पहलवान और योद्धा बनना कठिन नहीं है, पर प्रश्न ये है कि उस सामर्थ्य का उपयोग किस निमित्त हुआ। सामर्थ्य का उजला पक्ष तब बनता है जब उस समर्थता का उपयोग अनीति रोकने और सत प्रवृत्ति बढ़ाने में किया जाए। मुसीबत में फंसे हुओं को निकालने में बलिष्ठ ही बढ़ चढ़कर स्वयंसेवी की भूमिका निभाते हैं। उनकी उपस्थिति में कुछ भी अनिष्ट नहीं होता। वर्तमान समय में आज के बुद्धिवादी वैज्ञानिक मन की सारी व्यथाओं को दूर करने और एक सर्वांगपूर्ण मनोवैज्ञानिक प्रणाली प्रदान करने का साहस अभी भी भारतीय ऋषियों द्वारा प्रणीत अध्यात्म विज्ञान करता है। ये तथ्य चौंकाने वाला भले लगे, पर है सर्वथा सत्य। निःसंदेह विश्व के इतिहास में पहली बार धर्म, अध्यात्म और दर्शन तीनों एक साथ एक बिंदु पर आ मिले हैं और उन्होंने अपनी वैज्ञानिकता सिद्ध की है। इस वैज्ञानिकता से परिपूर्ण पद्धति ही सर्वांगपूर्ण मनोवैज्ञानिक प्रणाली के रूप में पल्लवित हुई, जिसे योग दर्शन, योग मनोविज्ञान और अध्यात्म मनोविज्ञान कहा गया। महर्षि पतंजलि के यीशु संबद्ध सूत्र यद्यपि अपने मूल भावों में उससे पहले भी उपनिषदों, वेदों में विद्यमान थे, फिर भी इन्हें सुव्यवस्थित करके मनोवैज्ञानिक स्वरूप देने का श्रेय उन्हीं को प्राप्त है।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम विचार बिंदु। आज का विषय था शक्ति और युक्ति। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। आज के कार्यक्रम का विषय है दिनचर्या और ऋतुचर्या का स्वास्थ्य पर प्रभाव। इस विषय पर जानकारी दे रही हैं डॉक्टर मंगला गौरी।
2: सभी को नमस्कार, मैं डॉक्टर मंगला गौरी राव, स्वस्थ वृत्त एवं योग विभाग, आयुर्वेद संकाय, चिकित्सा

0: विज्ञान संस्थान बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर पद पर कार्यरत हूँ। आज हम लोग दिनचर्या और ऋतुचर्या का स्वास्थ्य पर प्रभाव इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो पहले पहले जो आज के दिन में कि सबसे ज्यादा जो बीमारियां होती है वो हमारे जीवन शैली से जुड़े हुए हैं, तो ये जीवन शैली में जब बाधा आती है तो अलग अलग तरीके का बीमारी होती है। वही अगर हमारा जीवन शैली हम सही ढंग से चलाएंगे तो उससे बीमारियां नहीं होती है, स्वास्थ्य हमारा बढ़ता रहता है, या इसको स्वास्थ्य संवर्धन भी बोलते हैं। तो इनमें जैसे आयुर्वेद में ये कहते हैं कि अलग अलग विधान का चर्या होती है, जैसे दिनचर्या, रात्रि का चर्या, ऋतुचर्या, और उसके साथ हमारा जो मेंटल मेकअप है वो सही रखना है, उसके लिए सद्वृत्त आचार रसायन ये सब चीजें कहा गया है हमारे साथ स्वास्थ्य संवर्धन के लिए। इस दिनचर्या में अगर बोलेंगे तो हम लोगों के जो शरीर है इसमें अलग अलग फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, तो ये दिनचर्या का सही तरीके से पालन किया जाए तो हमारा शरीर का जो बदलाव है उसको सपोर्ट करता है, ताकि उससे हमारा जो अग्नि बोलते हैं आयुर्वेद में, अग्नि का मतलब हमारा डाइजेस्टिव पावर या जो आहार का पचन करने का शक्ति, और असिमिलेटिव पावर या जो हमारा आहार को शरीर के धातु में कन्वर्ट करने का शक्ति, और मेटाबॉलिज्म जो धातु बनने का प्रोसेस है ये बहुत अच्छी तरीके से निभाया जा सकता है। तो इसी में कि लाइक इसको हम लोग सर्कैडियन रिदम बोलते हैं, अगर दिनचर्या का बात आती है तो हम लोग जो हमारा जितने भी कार्य हैं वो सही ढंग से चलना है तो दिनचर्या का पालन सही से करते हैं तो सर्कैडियन रिदम जो है सही से चलता है, और उससे बहुत सारे बीमारियों को हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसमें दिनचर्या में सुबह जल्दी उठने से, लाइक आयुर्वेद में बोलते हैं ब्राह्मी मुहूर्ते उत्तिष्ठे, मतलब सूरज उगने से पहले हम लोगों को उठना चाहिए। इससे क्या होता है कि हम लोगों के शरीर में जो वात होता है हम लोगों के शरीर के अंदर जमा हुआ मल को अच्छे से निकालने में हेल्प करता है, उससे हमारा बोवेल इवैक्यूएशन अच्छे से होता है, या जो हमारा पेट अच्छे से साफ होता है, और वैसे ही हमारे शरीर के अंदर जितने भी लाइक कल्मश रहते हैं उसको भी बाहर अच्छे से निकल पाता है, और उसके साथ हमारे मन को भी अच्छा लगता है अगर हम सुबह के वक्त उठते हैं, क्योंकि ब्रह्म योग्य समय है। तो ब्रह्म मुहूर्त में या सुबह सूरज उगने से पहले उठने से हम लोगों का जितना भी हम लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, ये सब चीजें करते हैं, या हमारा प्रोफेशन है उससे लेके जो काम होता है वो बहुत अच्छे से कर पाते हैं, तो इसलिए वहां से शुरू होता है। फिर हमारा ओरल हाइजीन बोलते हैं, या मुख का स्वास्थ्य के लिए हम लोगों का अलग अलग चीजें होती है उसको करते हैं, जैसे होता है हमारा टूथ ब्रशिंग से चालू होता है, और साथ में कवल धारण बोलते हैं या गंडूषा धारण बोलते हैं, ये सब चीजें करना चाहिए। इससे कवल धारण या गंडूषा धारण को हम लोग अलग अलग चीजों से कर सकते हैं, उसमें सबसे अच्छा माना जाता है हम अगर तेल से हमारा कवल करेंगे, तो कवल मानो कि मुंह में अराउंड 10 ml जो तिल का तेल है उसको डाल के उसको कुल्ला करते रहना है, जब हमारा मुंह पूरा भर जाएगा तभी उसको हमको थूकना है, उसके साथ बहुत सारे जो हमारे अंदर जो टॉक्सिन्स एक्युमुलेटेड है वो बाहर जाता है, और साथ में दांतों को बल देता है और इन्फेक्शन को कम करने का ये है। ऐसे ओरल हाइजीन के साथ हमारा जनरल जो स्वास्थ्य है वो भी जुड़ा हुआ है।
1: आप सुन रहे थे स्वास्थ्य चर्चा के कार्यक्रम में दिनचर्या और ऋतुचर्या का स्वास्थ्य पर प्रभाव। इस विषय पर जानकारी दे रही थीं डॉक्टर मंगला गौरी राव। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस से संगीतमय पाठ।

पतित पावनी गंगा का सुहावना तट, अशोक वृक्ष के नीचे कुश और कोमल पत्तों की साथरी पर श्री राम तथा सीता रात्रि विश्राम कर रहे हैं। प्रभु को धरती पर शयन करते देख निषाद राज गुह का मन विषाद से भर जाता है। लक्ष्मण ने निषाद राज की मनोदशा भांप उन्हें ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का उपदेश दिया। कहा, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, सब अपने कर्मों का फल भोगते हैं। भले बुरे का योग, मिलन और वियोग, शत्रुता, मैत्री तथा उदासीनता भ्रमजाल हैं। जन्म और मरण, संपत्ति विपत्ति, कर्म और काल इस जगत के जंजाल हैं।

आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस से संगीतमय पाठ। आज की कड़ी के कलाकार थे रविंद्र साठे। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अब आपको जानकारी देते हैं हमारे केंद्र से आज दिनांक 1 अगस्त 2026 को प्रसारित किए जाने

वाले कार्यक्रमों की। संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम का प्रसारण होगा रात 10 बजे। रात 9:30 पर अखिल भारतीय साहित्यिक पत्रिका साहित्य भारती वृत्तचित्र आजादी का काव्य पाठ का प्रसारण किया जाएगा। कार्यक्रम इस सप्ताह संसद में का प्रसारण किया जाएगा रात 8 बजे। ये तीनों कार्यक्रम आप सुन सकेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से। उर्दू कार्यक्रम का समय होगा सुबह 9:30 पर। ये कार्यक्रम हमारे लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:31 पर सुनिए पंडित डी के दातार का वायलिन वादन, और दिन में 12:45 पर पद्मा तलवरकर का गायन। सुगम संगीत के कार्यक्रम में दिन में 12:30 पर सुनिए स्मृति शुक्ला के भजन, और रात 8 बजे रूमी दत्ता के गजल। शाम 6:30 पर कार्यक्रम कृषि जगत में सुनिए खरीफ में हरे चारे की खेती विषय पर डॉक्टर निखिल कुमार सिंह से सुधीर कुमार श्रीवास्तव की बातचीत, और साथ ही सुनिए राम नारायण मौर्य और साथी के गाए गीत। इन्हीं के गाए गीत आप सुन सकेंगे कार्यक्रम लोक संगीत में दिन में 1:45 और सुबह 9:50 पर। कार्यक्रम युववाणी में शाम 5:15 पर सुनिए फोन इन कार्यक्रम यूथ जंक्शन, साथ ही सुनिए यूथ डायरी इतिहास में आज का दिन और रोजगार सूचना।

ग्रामीण महिलाओं के कार्यक्रम अंगनैया का समय होगा दिन में 1:15 पर। रात 8:15 पर रस माधुरी और शाम 7:45 पर रस रंग का प्रसारण किया जाएगा। शाम 7:31 पर कार्यक्रम हिंदी वार्ता में वार्ताकार होंगे प्रोफेसर वशिष्ठ द्विवेदी और इस वार्ता का विषय होगा भारतेंदुकालीन कविता। कार्यक्रम नन्ही दुनिया का प्रसारण समय होगा शाम 5:00 से। गीतांजलि आप सुन सकेंगे दिन में 2:30 पर। गैर फिल्मी गीतों और गजलों के कार्यक्रम कहकशा का समय होगा दिन में 12:00 से। हेलो फोन इन फरमाइश का प्रसारण किया जाएगा दिन में 11:00 से। फिल्म संगीत के कार्यक्रम झनकार का आप आनंद ले सकेंगे सुबह 10:00 से। सदाबहार फिल्मी गीतों के कार्यक्रम मधुरिमा का समय होगा सुबह 8:45 पर। स्थानीय सूचनाओं और घटनाक्रम पर आधारित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस आप सुनेंगे अब से थोड़ी देर में यानी सुबह 7:00 से। ये था हमारे केंद्र आकाशवाणी वाराणसी केंद्र से प्रसारित होने वाले आज दिनांक 1 अगस्त 2026 के कार्यक्रमों का विवरण। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

जीवन जीते, रक्तदान, मरणोपरांत नेत्रदान। नेत्रदान है महादान, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। जीवन का अमूल्य वरदान, नेत्रहीन को करें नेत्रदान।

0: एकदिवसीय आन्ध्रप्रदेश कर्णाटक यात्रायां भविष्यति। आन्ध्रप्रदेशे प्रधानमन्त्री भोगापुरम इत्यत्र अल्लूरी सीताराम राजु अन्ताराष्ट्रिय विमानस्थानकस्य उद्घाटनं करिष्यति। सार्वजनिक निज सहभागिता प्रारूपस्यान्तर्गतं 675,000,000,000,000 रूप्यकाधिकेन व्ययेन निर्मितं तदन्ताराष्ट्रिय विमानस्थानकं प्रतिवर्षं 60,00,000 यात्रिणां सेवा प्रदातुं विनिर्मितमस्ति। प्रधानमन्त्री 80,000,000,000,000 रूप्यकाधिक व्ययुता राष्ट्रिय राजमार्ग परियोजना राष्ट्राय समर्पयिष्यति, तासां शिलान्यासम् अपि करिष्यति। आन्ध्रप्रदेश यात्रानन्तरं प्रधानमन्त्री कर्णाटकस्य मैसूरनगरं गमिष्यति, यत्र स्वामी विवेकानन्द सांस्कृतिक युव केन्द्रस्य विवेक स्मारकस्य उद्घाटनं करिष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान् यत् अपशब्द प्रयोग द्वेषभावना च कस्यापि समस्यायाः समाधानं न भवतः। असौ मार्गभ्रष्टेभ्यः युवभ्यः करुणाभावम् आवहन् अवदत् यत् ते दण्डनीयाः न अपितु राष्ट्रनिर्माणस्य राष्ट्रहितस्य च भावनया सम्यक् मार्गे प्रेरणीयाः। सामाजिक संचारपटलेषु प्रसारिते एकस्मिन् दृश्य श्रव्य सन्देशे प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय राजधान्याः जन्तर्मन्तरस्थले सद्यः एव जातायाः तस्याः घटनायाः उल्लेखमकरोत् यस्मिन् तस्मै तस्य दिवंगतमात्रे च अपशब्दाः प्रयुक्ताः आसन्। सः अवदत् यत् एषा घटना देशविदेशेषु बहुभिः जनैः दृष्टा। एतादृशस्य आचरणस्य विषये समाजे विद्यमानः आक्रोशः निराशा च स्वाभाविकौ स्तः। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् एतादृशान् युवकान् न्यायालयीय प्रक्रियासु न निवेशयेत्, सामाजिक तिरस्कारस्य भाजनं वा न कुर्यात्, अपितु समाजेन तान् सस्नेहं स्वीकृत्य सम्यक् मार्गः प्रदर्शनीयः।
1: बचपन में गलतियां होती है और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूँ, समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूँ, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है।
0: केंद्रीय मंत्रिमंडलेन प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना अनुमोदिता। एषा योजना ऊर्जा संचयन प्रणालीभिः युक्तानां फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक इति परियोजनानां विकासाय प्रवर्तिता अस्ति। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलस्य उपवेशनानन्तरं नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् अस्याः योजनायाः अन्तर्गतं 5,000 मेगावाट् मितानां क्षमतायुतानां फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक इति परियोजनानां विकासः भविष्यति। ताभिः सह स्थापितानां ऊर्जा संचयन प्रणालीनां न्यूनतम संचयन क्षमता द्विहोरात्मिका भविष्यति। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन प्रधानमन्त्री किसान सम्मान निधि योजनायाः अस्मात् वर्षात् 31,000,000,000 प्रवर्तनस्य निरन्तरतायै अपि अनुमोदनं प्रदत्तम्। भारतम् अवदत् यत् पाकिस्तानाधिकृतस्य जम्मू कश्मीर प्रदेशस्य तथा कथितानि निर्वाचनानि पाकिस्तान प्रशासनस्य अपमानास्पदम् इव सन्ति। नवदिल्ल्यां वार्ताहरैः सह वार्तालापं कुर्वन् विदेश मन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जायसवालः अवदत् यत् पाकिस्तानस्य प्रशासनं पीओजेके इत्यत्र शान्तिप्रियाणां नागरिकाणां विरुद्धं निष्ठुरं बलप्रयोगं निरन्तरं करोति। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः गतसायं ईरान देशस्य विदेशमन्त्रिणा अब्बास राघची इत्यनेन सह दूरभाषया वार्तालापम् अकरोत्। अस्मिन् वार्तालापे सः अस्मिन् क्षेत्रे प्रवर्तमानायाः शत्रुतायाः विषये भारतस्य गभीरां चिन्तां प्रकटितवान्। राष्ट्रमण्डल क्रीडासु भारतस्य पदक संख्या 23 यावत् वर्धिता, यस्मिन् 5 स्वर्णपदकानि, 12 रजतपदकानि, 6 कांस्यपदकानि च सन्ति इति वार्ताः।
2: मीडियम वेव के मीटर पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुबह के 7 बज रहे हैं, सुनिए कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस।

0: 6, 5, 4, 3, 2, are you ready?
1: Good morning and a very, very, very good morning. लीजिए एक बार फिर हाजिर हो गई हूँ मैं आपकी रेडियो दोस्त वो जिसके नाम से होती है आपके दिन की शुरुआत.
2: हेलो मैं पूजा, पहचाना?
3: इस नाम से उसे कोई नहीं जानता, वो बुलाओ जो सब बुलाते हैं.
1: हाँ जी, पूजा और लेकर हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस. दोस्तों, गंगा की उठती तरंगों में जहाँ ज्ञान का वास है, जहाँ के हर कण में साहित्य का इतिहास है, उस पावन नगरी काशी के एक ऐसे लाल की कहानी जिसकी कलम ने रची एक अजूबी दुनिया सुहानी. जी हाँ, बनारस जब भी अपनी काशी, अपने बनारस का नाम आता है तो यहाँ की गलियों में बहती कविताएं, कबीर की साखियां, प्रेमचंद्र के उपन्यास और बिस्मिल्ला खान साहब की शहनाई की तान दिमाग में गूंज उठती है ना? लेकिन आज हम काशी के एक ऐसे रत्न की बात करने वाले हैं जिसने भारतीय साहित्य में एक ऐसा जादू बुना जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती. जी हाँ, आज के गुड मॉर्निंग बनारस में हम हमारी ये श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं तिलिस्म और अय्यारी के बेताज बादशाह बाबू देवकी नंदन खत्री जी को. बनारस एक ऐसा दौर था जब लोग हिंदी पढ़ना सिर्फ इसलिए सीख रहे थे ताकि वो खत्री जी के उपन्यासों को पढ़ सके. क्या था उनका जादू, कौन थे वो, आइए जानते हैं. बनारस बाबू देवकी नंदन खत्री जी का जन्म 18 जून 1861 को बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में हुआ था, लेकिन उनका परिवार मूल रूप से पंजाब का रहने वाला था जो बाद में काशी यानी अपने बनारस आकर बस गया. और काशी की इस पावन माटी ने उनके अंदर छिपे सृजनता को वो पंख दिए कि वो पूरी तरह काशी के होकर रह गए. जब खत्री जी युवा हुए तो उन्होंने जंगलों और खदानों के ठेके लिए. मिर्जापुर, नौगढ़ और विजयगढ़ के बीहड़ जंगलों, गुफाओं और पुराने खंडहरों में घूमते घूमते उनके दिमाग में तिलिस्म और फैंटेसी की एक नई दुनिया ने जन्म लिया. और फिर आया वर्ष 1888 जब प्रकाशित हुआ उनका ऐतिहासिक उपन्यास चंद्रकांता. चंद्रकांता और उसके बाद आई चंद्रकांता संतति, इसका जादू लोगों के सिर चढ़कर इस कदर बोला कि जो लोग हिंदी नहीं जानते थे, उर्दू, बंगला या अंग्रेजी भाषी थे, उन्होंने सिर्फ खत्री जी के उपन्यासों को पढ़ने के लिए देवनागरी और हिंदी भाषा सीखी. इतिहास में किसी लेखक के लिए यह सबसे बड़ा सम्मान है. दोस्तों, खत्री जी ने केवल एक लेखक नहीं होकर के वो अपनी सोच में समय से बहुत आगे रहने वाले एक क्रांतिकारी रचनाकार हो गए थे. उन्होंने क्रूर सिंह, जाबाज, अय्यार तेग सिंह, नाजिम और अहमद जैसे ऐसे ऐसे अविस्मरणीय पात्र रचे कि पाठक पन्नों से अपनी आंखें हटा ही नहीं पाते थे. अय्यार यानी भेष बदलने में माहिर जासूस और तिलिस्म यानी जादुई दुनिया, इसकी जो कल्पना उन्होंने की उसने भारतीय फैंटेसी साहित्य की नींव रखी. उनकी प्रमुख कालजयी रचनाओं पर अगर नजर डालें ना तो चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति, नरेंद्र मोहिनी, काजर की कोठरी, वीरेंद्र वीर, कुसुम कुमारी, भूतनाथ, जो उनके निधन के बाद उनके पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने पूरी की. खत्री जी इतने स्वाभिमानी और दूरदर्शी थे कि जब उन्हें अपने उपन्यासों को छापने में शुरुआती कठिनाई हुई तो उन्होंने वाराणसी में खुद का लहरी प्रेस स्थापित किया और सुदर्शन नाम की पत्रिका निकाली. सोचिए, उस जमाने में बिना किसी

0: कंप्यूटर या आधुनिक तकनीक के सिर्फ अपनी कल्पना शक्ति से हजारों पन्नों की तिलिस्मी दुनिया गढ़ देना, यह उनकी असाधारण सृजनता का ही तो प्रमाण है ना। तो दोस्तों, साहित्य के इस जादूगर ने 1 अगस्त 1913 को काशी की इसी पवित्र भूमि पर अपनी अंतिम सांस ली और इतिहास के पन्नों में अमर हो गए। बाबू देवकीनंदन खत्री जी की सबसे बड़ी अच्छाई यह थी कि उन्होंने आम जनता के दिल में हिंदी भाषा के प्रति वो प्रेम जगाया जो बड़े बड़े विद्वान भी नहीं जगा पाए थे। उनकी भाषा इतनी सरल, रोचक और मनोरंजक थी कि हर वर्ग का इंसान उनसे जुड़ जाता था। उन्होंने हिंदी को जन जन की भाषा बनाने में एक युग नायक की भूमिका निभाई। आज जब भी हम कोई सस्पेंस, थ्रिलर या फैंटेसी कहानी पढ़ते हैं, देखते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि इस रास्ते के सबसे पहले मशालची काशी के रत्न बाबू देवकीनंदन खत्री जी ही थे। साहित्य के आकाश पर जो चांद बनकर चमके, जिनकी कलम के तिलिस्म से हर दिल में दीप महके, ऐसी महान विभूति को काशी का शत शत नमन। सो बनारस, आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग बनारस मेरे यानी पूजा के साथ। और आज दिन है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिल्कुल ही बताऊंगी। आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग बनारस मेरे यानी पूजा के साथ। आज है दिन शनिवार का और तारीख है 1 अगस्त। फाइनली दोस्तों, हम साल के 8वें महीने में एंटर कर चुके हैं, तो चलिए अब एंटर करते हैं वहाँ जहाँ पे जानेंगे क्या खास हो रहा है अपने शहर बनारस में आज। सावन माह के शुभारंभ के साथ ही धर्म नगरी काशी पूरी तरह शिवमय हो गई है। देवाधिदेव महादेव की कृपा प्राप्त करने की कामना लेकर देश के विभिन्न राज्यों से शिव भक्त और कांवड़ियों का जत्था काशी पहुंचने लगा है। इसके साथ ही विश्वनाथ धाम से लेकर गंगा घाटों तक केसरिया रंग की छटा बिखरने लगी है। सावन के दूसरे दिन से ही स्थानीय शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती दिखाई दी, जबकि श्री काशी विश्वनाथ धाम में जलाभिषेक और दर्शन पूजन के लिए सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें लग गईं। विश्वनाथ धाम के द्वार से लेकर दशाश्वमेध घाट तक हर ओर कांवरियों की आवाजाही और हर हर महादेव के जयघोष से वातावरण भक्तिमय बना रहा। चितरंजन पार्क स्थित विश्राम स्थल पर बड़ी संख्या में कांवर रखे दिखाई दिए, जो इस बात का संकेत थे कि दूर दराज से आए शिव भक्त आसपास ही विश्राम कर रहे हैं। गंगा का जल स्तर बढ़ने के कारण घाटों पर प्रशासन ने अतिरिक्त सतर्कता बरती और सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत किया। बनारस ग्लासगो 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में अश्मिता डे ने इतिहास रचते हुए महिलाओं के 48 किलो वर्ग के फाइनल में कनाडा की हाइडी क्वाच को हराकर जूडो में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता है। सारनाथ में श्रावणी मेले की तैयारी के बीच नगर निगम ने सड़क किनारे लगे अतिक्रमण हटाने और सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने का अभियान चलाया। सारंगनाथ मंदिर मार्ग से करीब 1 दर्जन अवैध दुकानें हटाई गईं और बैरिकेडिंग की गई। कार्यवाही के दौरान संग्रहालय के सामने गैदरिंग प्लाजा में चल रही 2 टॉय कारें भी जब्त की गई। हालांकि स्थानीय लोगों के अनुसार निगम टीम के लौटते ही गतिविधियां फिर शुरू हो गयी। जोनल अधिकारी ने बताया कि सावन को लेकर साफ सफाई व्यवस्था की गई है। क्षेत्र में 3 पालियों में सफाई कर्मी लगाए गए हैं। संस्कृति विभाग व जिला प्रशासन ने लम्ही में मुंशी प्रेमचंद की जयंती पर भव्य आयोजन किया। अतिथियों ने मुंशी प्रेमचंद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया। दिन में नाट्य मंचन ने शमा बांधा तो शाम को दीपों से मुंशी प्रेमचंद का आशियाना जगमगा उठा। पूरे दिन हर्ष व उल्लास का माहौल रहा। गांव में जैसे मेले जैसा माहौल रहा। कार्यक्रम में MLC धर्मेंद्र राय ने कहा कि किसानों की गरीबी, जमींदारी प्रथा, जातीय भेदभाव, महिलाओं की स्थिति, भ्रष्टाचार, शोषण और सामाजिक कुरीतियों को अपनी रचनाओं का विषय बनाया। DM सत्येंद्र कुमार ने कहा कि हम सभी ने ईदगाह पढ़ी है। बनारस काशी हिंदू विश्वविद्यालय में शनिवार से स्नातक कक्षाओं में प्रवेश लेने वाले छात्रों की काउंसलिंग आरंभ होगी और उन्हें मेरिट व उनके चयन की प्राथमिकता के आधार पर सीटों का आवंटन किया जाएगा। काउंसलिंग के चरणों के बाद सीटों का आवंटन पूर्ण होने के बाद अगस्त माह के अंत में छात्रों का परिचय व अभिविन्यास कार्यक्रम आरंभ हो सकता है। केंद्रीय प्रवेश समिति के समन्वयक ने बताया कि प्रथम चक्र की काउंसलिंग के दौरान ही अगले चक्र की काउंसलिंग की तिथियां भी जारी की जाएंगी। साथ ही सभी पाठ्यक्रमों के कट ऑफ भी प्रवेश पोर्टल पर दिए जाएंगे। स्नातकोत्तर कक्षाओं में सामान्य काउंसलिंग के बाद खाली रह गई लगभग 2400 सीटों के लिए स्पॉट राउंड चलाया गया, जिसमें लगभग 80% रिक्त सीटें भर गईं। बनारस सावन मास के प्रथम सोमवार को श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में सुचारू दर्शन पूजन के लिए बैरिकेटिंग और रेलिंग लगाना शुरू कर दिया गया है। धाम के गेट नंबर 4 से लेकर गदौलिया चौराहे तक स्टील की रेलिंग लगाकर जगह जगह बैरियर लगाए जा रहे हैं। श्रमिकों की टीम रेलिंग को सहारा देकर बांधने और बैरियर लगाने में जुटी रही। धाम में भी जिगजैग बैरिकेटिंग के साथ ही पेयजल के काउंटर लगाए गए। सभी प्रवेश द्वारों और शंकराचार्य चौक पर जर्मन हैंगर शेड लगाए गए हैं, जिससे भक्त धूप और बारिश से सुरक्षित रह सके। इसके अलावा भक्तों के स्वागत के लिए पूरे मार्ग में रेड कार्पेट बिछाया गया है। सावन के सोमवार को आने वाले श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया जाएगा। श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए VIP दर्शन पर रोक लगाई गई है। धाम में श्रद्धालु गर्भगृह के बाहर से ही बाबा का दर्शन और जलाभिषेक कर सकेंगे। मंदिर प्रशासन ने स्पर्श दर्शन पर रोक लगा रखी है। बनारस आने वाले समय में इंडियन नेवी की कई एडवांस टेक्नोलॉजी का कनेक्शन बनारस से भी जुड़ सकता है। जी हां, IIT और इंडियन नेवी ने एक बड़ा MOU साइन किया है। इस पार्टनरशिप के बाद दोनों मिलकर ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे जो देश की समुद्री सुरक्षा को और मजबूत बनाएगी। इसका फायदा सिर्फ नेवी को ही नहीं बल्कि संस्थान के स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स और स्टार्टअप्स को भी मिलेगा। 30 जुलाई को नई दिल्ली स्थित नेवी हेडक्वार्टर में इस MOU पर साइन किए गए। इंडियन नेवी की तरफ से कंट्रोलर ऑफ मटेरियल वाइस एडमिरल और IIT BHU की तरफ से डीन ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। बनारस 21 जुलाई को 500 बेड के कामकाजी महिलाओं के छात्रावास को हरी झंडी मिल गई। 5 दिन के अंदर ही निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत के सभी मानक भी पूरे होने के कगार पर हैं। रामनगर के साहित्य नाका में 6000 वर्ग मीटर जमीन राजस्व विभाग के पास है, जिसे अगले 2 से 3 दिन में प्रोबेशन विभाग को हस्तांतरित कर दी जाएगी। कार्यदायी संस्था नामित हो गई और DPR की प्रक्रिया अंतिम दौर में है। मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास योजना और त्वरित आर्थिक विकास योजना के तहत CM ने छात्रावास की घोषणा की। सो बनारस, ये तो बात हो गई क्या खास हो रहा है अपने शहर बनारस में आज, और अब बात करते हैं इतिहास की। तो चलिए चलते हैं इतिहास की गलियों में और जानते हैं आज के दिन के इतिहास को। आज ही के दिन 1 अगस्त 1920 में महात्मा गांधी के आह्वान पर असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। भारत का पहला राष्ट्रव्यापी अहिंसक जन आंदोलन था असहयोग आंदोलन। आज ही के दिन 1939 में प्रसिद्ध साहित्यकार गोविंद मिश्र का जन्म हुआ। 1932 में आज ही के दिन फिल्म अभिनेत्री मीना कुमारी का जन्म हुआ। आज ही के दिन 1913 में प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता एवं फिल्म निर्माता निर्देशक भगवान दादा का जन्म हुआ। आज ही के दिन भारत के प्रसिद्ध तबला वादकों में से एक कांठे महाराज का निधन 1969 में आज ही के दिन हुआ। आज ही के दिन 1920 में विद्वान गणितज्ञ दार्शनिक और भारतीय राष्ट्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक का निधन हुआ। और 1913 में आज ही के दिन हिंदी के महान और प्रथम तिलिस्मी लेखक देवकी नंदन खत्री का भी निधन हुआ। सो बनारस, ये तो बात हो गई इतिहास की और अब जानते हैं आज के स्पेशल इवेंट के बारे में। बनारस, आज से शुरू हो रहा है विश्व स्तनपान सप्ताह यानी वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। स्तनपान के प्रति जन जागरूकता लाने के मकसद से अगस्त माह के प्रथम सप्ताह को पूरे विश्व में स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। स्तनपान सप्ताह के दौरान माँ के दूध के महत्व की जानकारी दी जाती है। नवजात शिशुओं के लिए माँ का दूध अमृत के समान है। माँ का दूध शिशुओं को कुपोषण व अतिसार जैसी बीमारियों से बचाता है। स्तनपान को बढ़ावा देकर शिशु मृत्यु दर में कमी लाई जा सकती है और शिशुओं को जन्म से 6 माह तक केवल माँ का दूध पिलाने के लिए महिलाओं को इस सप्ताह के दौरान विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाता है। सो बनारस, आज की बात कर ली, बीते कल की बात कर ली और आज के स्पेशल स्टे की बात कर ली और अब बात करनी है उस सेगमेंट की जिसका रहता है आप सबको इंतजार।
1: काशी रत्न, द जेम्स ऑफ वाराणसी।
0: बनारस, जब भी अपने काशी की बात होती है तो दिमाग में क्या आता है? गंगा की लहरें, 80 घाट की शाम, बाबा विश्वनाथ का धाम और वो जादुई ताल जो इस शहर की रग रग में बहती है। आज काशी रत्न में हम बात कर रहे हैं एक ऐसे फनकार की जिनके हाथों की उंगलियां जब तबले पर पड़ती थी तो लगता

0: था मानो स्वयं नाद ब्रह्म उतर आए हों। जी हाँ, आज हम याद कर रहे हैं बनारस तबला घराने के स्तंभ पंडित कांठे महाराज जी को। 1880 में कबीर चौरा की पावन माटी में जन्मे कांठे महाराज जी ने तबला वादन को उस मुकाम पर पहुंचाया जहां दाहिने और बाएं का ऐसा संतुलन बनता था कि सुनने वाला सुध-बुध खो बैठता था। इनके पिता पंडित दिलीप मिश्र भी जाने माने तबला वादक थे। इनकी आरंभिक संगीत शिक्षा बलदेव सहाय जी से आरंभ हुई थी। कांठे महाराज को प्रथम संगीतज्ञ माना जाता है जिन्होंने तबला वादन द्वारा स्तुति प्रस्तुत की थी। लगभग 70 वर्ष तक इन्होंने सभी विख्यात गायकों एवं नर्तकों को अपने तबले पर संगति दी। 1954 में इन्होंने 2.5 घंटे लगातार तबला बजाने का विश्व कीर्तिमान स्थापित किया था। इन्हें सभी शैलियों में तबला वादन पर महारत प्राप्त थी, लेकिन इनकी विशेषता बनारस बाज में थी। 1961 में इन्हें संगीत नाटक एकेडमी द्वारा सम्मानित किया गया था। बनारस घराने का वो दमदार पूरी हथेली का बाज हो या बिजली जैसी कड़कती रेला, महाराज जी की उंगलियों का कोई सानी नहीं था। और जानते हैं, संगीत के महानायक बाबा अलाउद्दीन खान साहब जब सरोद बजाते थे और कांठे महाराज जी तबले पर संगत करते थे तो खां साहब खुद गदगद होकर कहते थे, मैं तो महर माई का सेवक हूँ, पर कांठे महाराज तो संगीत के नंदी हैं। संगीत की यह अनमोल विरासत सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी। महाराज जी ने अपने भतीजे और शिष्य पंडित किशन महाराज जी को भी तैयार किया जिन्होंने आगे चलकर पूरी दुनिया में बनारस घराने का डंका बजाया। तो आज के इस भागदौड़ भरे दौर में आइए कुछ पल निकालें और भारतीय शास्त्रीय संगीत के इस अनमोल पन्ने को नमन करें। काशी रत्न में आज के लिए बस इतना ही।
1: काशी रत्न, द जेम्स ऑफ वाराणसी।
0: और अब बनारस समय हो गया है मेरे यहाँ से जाने का, क्योंकि घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि समय हो गया है मेरे टाटा बाय बाय कहने का। तो अपना ध्यान रखिए और सुनते रहिए आकाशवाणी वाराणसी केंद्र के कार्यक्रम। नमस्कार।
2: चलिए सुबह का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
3: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
2: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम।
3: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
2: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है। और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है, और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
3: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है, और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
2: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती, और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
0: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वैष्णवी त्रिपाठी। पहले मुख्य समाचार। वर्ष 2031 तक

0: जारी रहेगी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, किसानों में उत्साह, केंद्र सरकार के प्रति जताया आभार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खेलो इंडिया योजना के विस्तार का प्रस्ताव भी किया पारित। ग्रेटर नोएडा में 25 से 29 सितंबर तक आयोजित होगा उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिंगापुर, ओमान, ऑस्ट्रिया, ब्राजील सहित अन्य देशों की सहभागिता सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से किया हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़ कर सहभागिता का आह्वान। 5 करोड़ घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का लक्ष्य। और श्रावण मास में मंदिरों और शिवालयों में उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़, कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए किए गए व्यापक इंतजाम। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने को मंजूरी दे दी गई है। इस अवधि के दौरान इस योजना के लिए कुल 3,15,000 करोड़ रुपए का वित्तीय आवंटन स्वीकृत किया गया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना के माध्यम से डीबीटी द्वारा पात्र किसान परिवारों को समय पर और पारदर्शी आय सहायता प्रदान की जा रही है, जिससे किसानों को कृषि निवेश बढ़ाने और अपनी आजीविका को मजबूत करने में मदद मिल रही है।
1: पीएम किसान योजना को और आगे एक्सटेंशन दिया गया है। इस प्रोग्राम में देश के किसानों को क्रॉप साइकिल के हिसाब से बेनिफिट दिया जाता है। साल में 3 बार 2,000 रुपए इनकम सपोर्ट दिया जाता है। इसमें पिछले 5 वर्षों में क्यूमुलेटिव डिस्बर्समेंट अभी करीब करीब 3,10,000 करोड़ रुपए का बेनिफिट किसानों के पास जा चुका है।
0: प्रदेश के किसानों ने इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है। जौनपुर के किसान श्याम दत्त ने कहा कि पीएम किसान योजना के तहत दी गई सहायता से किसानों को कृषि आवश्यकताओं से जुड़ी चीजें खरीदने में बहुत मदद मिलती है।
2: ये जो हमें पीएम किसान सम्मान निधि मिलती है, मैं अपनी किसान से संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेता हूँ। मैं इसी पैसे से बीज खरीद लेता हूँ, इसी पैसे से खाद खरीद लेता हूँ। मैं नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देता हूँ कि जो उन्होंने किसान सम्मान निधि को आगे तक बढ़ाया है।
0: इसके अलावा मंत्रिमंडल ने 2026-27 से 2030-31 तक की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों की बढ़ी हुई सहायता को भी मंजूरी दे दी है। स्वीकृत बजट पिछली खेलो इंडिया योजना की तुलना में लगभग 8 गुना है। केंद्रीय कैबिनेट ने 5,070 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को भी मंजूरी दी है। कैबिनेट की बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना से जलाशयों और अंतर्देशीय जल निकायों के अभिनव उपयोग से देश की स्वच्छ ऊर्जा क्षमता का विस्तार होगा। श्री मोदी ने कहा कि सरकार किसानों की समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने कहा कि खेलो इंडिया योजना का विस्तार और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि से देशभर के युवा एथलीटों को बेहतर प्रशिक्षण, आधुनिक सुविधाएं और अपनी प्रतिभा को निखारने के अधिक अवसर मिलेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल आगामी 25 से 29 सितंबर को ग्रेटर नोएडा में होने वाले उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने इसे उत्तर प्रदेश की औद्योगिक क्षमता, नवाचार उत्पादों और निर्यात सामर्थ्य को विश्व के समक्ष प्रस्तुत करने का महत्वपूर्ण अवसर बताया। एक रिपोर्ट।
3: ट्रेड शो के चौथे संस्करण में 2400 से अधिक प्रदर्शकों, 1.5 लाख से अधिक पंजीकृत B2B खरीदारों, करीब 4.5 लाख से अधिक B2C आगंतुकों और 85 देशों से 550 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों की सहभागिता का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। साथ ही 4000 से अधिक MOU, 3200 करोड़ रुपए से अधिक प्रस्तावित MOU मूल्य और 13,500 करोड़ रुपए से अधिक बिजनेस इंक्वायरी होने का अनुमान है। मुख्यमंत्री ने सिंगापुर, ओमान, ऑस्ट्रिया, ब्राजील, थाईलैंड, जापान, इंडोनेशिया और रूस सहित अन्य देशों के साथ भी सक्रिय संवाद स्थापित कर उनकी अधिकाधिक सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। समाचार कक्ष से तन्वीर फातिमा।
0: सरकार ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी योजना के अंतर्गत किसी भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का कोई बकाया नहीं है। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने VBG रामजी योजना को अधिसूचित कर लागू करना शुरू कर दिया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR News गोरखपुर और X हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है।

0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में हर घर तिरंगा अभियान, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस और स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने प्रदेशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर सहभागिता का आह्वान करते हुए इस वर्ष 5 करोड़ घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का लक्ष्य निर्धारित किया। एक रिपोर्ट।
1: मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय ध्वज के निर्माण, उपलब्धता एवं वितरण की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा स्वयं सहायता समूहों, खादी एवं ग्रामोद्योग संस्थाओं, एमएसएमई इकाइयों एवं स्थानीय उत्पादन केंद्रों को हर घर तिरंगा अभियान से जोड़ने के निर्देश दिए। श्री योगी ने कहा कि राशन की दुकानों, ग्राम पंचायत भवनों, जनसेवा केंद्रों, तहसीलों, विकासखंड कार्यालयों, विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों, डाकघरों, पेट्रोल पंपों एवं अन्य निर्धारित केंद्रों के माध्यम से आम जन को राष्ट्रीय ध्वज सहज उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि आगामी 14 एवं 15 अगस्त प्रदेश के सभी सिनेमा घरों में राष्ट्रगीत एवं राष्ट्रगान का अनिवार्य प्रसारण सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी 9 अगस्त को काकोरी ट्रेन एक्शन दिवस तथा 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के सभी कार्यक्रम पूरे सम्मान, गरिमा एवं राष्ट्रभक्ति के भाव के साथ आयोजित किए जाएं। समाचार कक्ष से अरुण।
0: प्रदेश भर के शिव मंदिरों और शिवालयों में पवित्र श्रावण मास पर भक्तों और कांवड़ियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। सुबह से ही श्रद्धालु वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ धाम में गंगा जल लेकर बाबा विश्वनाथ के जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं प्रदेश के विभिन्न जनपदों में कांवड़ यात्रा को लेकर रूट डायवर्शन लागू किए गए हैं। अमरोहा में पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर बताया है कि श्रावण मास के प्रत्येक रविवार शाम 5 बजे से सोमवार शाम 5 बजे तक नेशनल हाईवे 9 पर सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। बदायूं में कांवड़ यात्रा के मद्देनजर प्रत्येक शनिवार और सोमवार को कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल बंद रहेंगे। अंबेडकर नगर में कांवड़ यात्रा को सकुशल ढंग से संपन्न कराने के लिए 9 जोनल, 78 सेक्टर और 9 स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। जिलाधिकारी ईशा प्रिया ने बताया कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर लगातार निगरानी के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं।
2: कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत ये अयोध्या का रूट है टांडा होके, उसपे भी विशेष रूप से इंतजाम किए गए हैं। सारे सड़कों को गंधा मुक्त किया गया है। जो हमारे मेन घाट है महादेवा घाट, उसकी लगातार सफाई के लिए 3 चिप्टों में सफाई कर्मी लगाए गए हैं। प्रकाश की व्यवस्था की गई है। 3 लेयर्स ऑफ बैरिकेडिंग लगाई गई है ताकि किसी की भी जल लेने के समय कोई किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो। और जिला प्रशासन समुचित रूप से सतर्क है और सेक्टर मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी लगाई गई है।
0: गोरखपुर में भी व्यापक यातायात डायवर्जन व्यवस्था लागू की गई है जो सावन के प्रत्येक सोमवार को प्रभावी रहेगी। मौसम विभाग ने आज से आगामी 5 दिनों तक प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों के कई जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है। वहीं पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश तथा हरिद्वार, बिजनौर और नरौरा बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण बदायूं के कछला गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। इसके चलते जिले के 36 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वर्ष 2031 तक जारी रहेगी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। किसानों में उत्साह, केंद्र सरकार के प्रति जताया आभार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खेलो इंडिया योजना के विस्तार का प्रस्ताव भी किया पारित। ग्रेटर नोएडा में 25 से 29 सितंबर तक आयोजित होगा उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिंगापुर, ओमान, ऑस्ट्रिया, ब्राजील सहित अन्य देशों की सहभागिता सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से किया हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़ कर सहभागिता का आह्वान। 5 करोड़ घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का लक्ष्य और श्रावण मास में मंदिरों और शिवालयों में उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़, कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए किए गए व्यापक इंतजाम। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ, यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
4: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहते

0: रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
1: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलो हर्ट्स, DRM 1233 किलो हर्ट्स, न्यूज़ ऑन AIR ऐप, DTH और वेब्स OTT पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में सुनते हैं पंडित DK दातार का वायलिन वादन, राग है अहिर भैरव।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आपने सुना कलाकार पंडित डी के दातार का वायलिन वादन राग था अहिर भैरव। आइए अब सुनते हैं पंडित डी के दातार का ही वायलिन वादन, राग है मिश्र भैरवी।

0: आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में पंडित डी के धातार का वायलिन वादन। राग था मिश्र भैरवी और अहिर भैरव। तबले पे संगत था नयन घोष का। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। समाचारों का सिलसिला हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7-7 हजार रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोक

0: आम संशोधन विधेयक 2026 को स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं। वीडियो संदेश में कहा, राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए युवाओं को दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर, वे वहां कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे प्रदर्शन पाकिस्तानी सत्ता के खिलाफ जनता की कड़ी नाराजगी का प्रमाण। भारत ने ईरान से किसी भी परिस्थिति में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले न होने देने को कहा। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। जूडो में 2 ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीते। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में यादगार दोहरा पोडियम स्थान हासिल किया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। ये विधेयक बृहस्पतिवार को संसद से पारित किया गया था। इसका उद्देश्य कठोर दंड का प्रावधान करने और फास्ट्रैक अदालत बनाकर लोक परीक्षाओं में अनुचित गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। ये अधिनियम विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा करते हुए एक मजबूत कानूनी ढांचा तैयार करके परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, निष्पक्षता और सत्यनिष्ठ को सुदृढ़ करने का प्रयास करता है। अधिनियम में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति जब्ती जैसे कठोर दंड शामिल हैं। मामलों के शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट्रैक अदालत स्थापित करने की आवश्यकता है। इसमें यह भी अनिवार्य है कि प्राथमिकी दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर अपराधों की जांच पूरी की जाए, जबकि आरोप पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त किए जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। उन्होंने भटके हुए युवाओं के प्रति सहानुभूति दिखाने की अपील की और कहा कि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए उन्हें दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखाया जाना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने राजधानी के जंतर मंतर पर हुई हाल की घटना जिक्र किया, जहां उनके और उनकी दिवंगत माता के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया था। उन्होंने कहा कि इस घटना को देश और दुनिया के लोगों ने देखा है और समाज में इस तरह के व्यवहार पर आक्रोश और निराशा स्वाभाविक है, लेकिन बचपन सीखने, गलतियां करने और उन्हें सुधारने का भी एक दौर है।
1: बचपन में गलतियां होती है, बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम, उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको ताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूँ, समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूँ, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े।
0: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट पर प्रतिबंध लगाने को लेकर सोशल मीडिया कंपनी मेटा की ग्लोबल टीम को तलब किया है। उनसे एल्गोरिदम में पूर्वाग्रह और सार्वजनिक व्यवस्था में उनकी भूमिका से संबंधित मुद्दों पर पूछताछ की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी पहले आंध्र प्रदेश जाएंगे, जहां वे विजयनगरम जिले के भोगपुरम में करीब 18,000 करोड़ रूपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री भोगपुरम स्थित अल्लूर सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: इस नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को सार्वजनिक निजी भागीदारी द्वारा 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित किया गया है। प्रधानमंत्री विशाखापट्टनम में 460 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से विकसित की जा रही ASIP सेमीकंडक्टर परियोजना की आधारशिला रखेंगे। श्री मोदी कुर्नूल 4 नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के एकीकरण के लिए 4.5 गीगावाट क्षमता वाले ट्रांसमिशन सिस्टम के प्रथम चरण की आधारशिला भी रखेंगे। इसे पावर ग्रिड द्वारा एक विशेष प्रयोजन वाहन द्वारा लगभग 5,550 करोड़ रुपए के निवेश से कार्यान्वित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री लगभग 3,550 करोड़ रुपए की लागत से कार्यान्वित कुर्नूल पवन ऊर्जा क्षेत्र और सौर ऊर्जा क्षेत्र भाग ए और भाग बी के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम का भी उद्घाटन करेंगे। अनंतपुरम में 2,500 मेगावाट और कुर्नूल में 1000 मेगावाट के सौर ऊर्जा क्षेत्रों

0: के लिए पावर ग्रिड द्वारा 800 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के कार्यान्वित ट्रांसमिशन सिस्टम का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी 1,880 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। विजयवाड़ा से अलू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूरु पहुंचेंगे, जहां वे स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री इस अवसर पर सभा को संबोधित भी करेंगे।
2: प्रधानमंत्री द्वारा आज उद्घाटन किए जाने वाले विवेका स्मारक स्वामी विवेकानंद के विचार और सिद्धांत के प्रचार कार्य के लिए बनाया गया है। 75 स्क्वायर फीट में फैले इस स्मारक के साथ 4D एक्सपीरियंस सेंटर, प्रदर्शनी स्थान, एम्फीथिएटर, पाठशाला, कॉन्फ्रेंस हॉल, ग्रंथालय, ध्यान और योगा केंद्र भी बनाया गया है। श्री रामकृष्ण आश्रम के ओर से यहाँ शिक्षा के साथ युवाओं को प्रोत्साहित करने के कार्यक्रम आयोजित किए जाने वाले हैं। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: पश्चिम बंगाल में आज से जनगणना शुरू हो रही है। ये प्रक्रिया 2 चरणों में डिजिटल माध्यम से संपन्न की जाएगी। इस प्रक्रिया का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से अद्यतन जनसांख्यिकीय आंकड़े एकत्र करना है। 2 चरणों वाली ये प्रक्रिया राज्य में व्यापक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है।
3: पहले चरण में नागरिक आज से 15 अगस्त तक आधिकारिक जनगणना पोर्टल sec.census.gov.in पर अपनी जानकारी देकर सेल्फ इन्यूमरेशन करने की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इस चरण का दूसरा भाग 16 अगस्त से 14 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान जनगणना अधिकारी मकान सूचीकरण और शुरुआती गिनती के लिए घरों का दौरा करेंगे। आखिरी चरण अगले साल फरवरी में होगा, जब जनगणना करने वाले कर्मचारी वास्तविक जनसंख्या गणना के लिए प्रत्येक घर के हर सदस्य के नाम, उम्र, लिंग, जाति और धर्म के बारे में जानकारी एकत्र करेंगे। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
4: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब 12 करोड़ से ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजेके में तथाकथित चुनाव के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तानी सत्ता को नकारे जाने का प्रमाण है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पीओजेके में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों का पाकिस्तान लगातार दमन कर रहा है।
2: पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण नागरिकों के खिलाफ लगातार निर्मम बल रूथलेस फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है और इस सख्त कार्रवाई में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और कई एक और लोग घायल हुए हैं। एक हिंसक शासन का सामना करते हुए वहां के लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन से गैर कानूनी हत्याओं की स्वतंत्र जाँच की मांग की है। हम आग्रह करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान की हरकतों की बारीकी से जाँच करनी चाहिए और उसके अत्याचारों के लिए जवाबदेह जाना चाहिए।
1: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल शाम ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से फोन पर बात कर पश्चिम एशिया क्षेत्र में जारी तनाव पर चिंता व्यक्त की। डॉ जयशंकर ने किसी भी परिस्थिति में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले न होने देने को कहा। उन्होंने कहा कि भारत किसी भी पक्ष द्वारा किए गए ऐसे किसी भी हमले की निंदा करता है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने कल जूडो में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण पदक जीते। भारत ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में यादगार डबल पोडियम फिनिश हासिल की। डेकाथलॉन में पहला कांस्य पदक जीता और 10 मुक्केबाजों ने अपनी अपनी स्पर्धा के फाइनल में जगह बनाई। एक रिपोर्ट।
3: अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने जूडो में भारत के लिए पहले राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। अस्मिता ने महिलाओं का 48 किलोग्राम

0: वर्ग का खिताब जीता, जबकि हर्ष ने पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। यामिनी मौर्य ने महिलाओं के 57 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। एथलेटिक्स में ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में 85.83 मीटर के साथ रजत पदक जीता, जबकि यशवीर सिंह ने 85.41 मीटर के थ्रो के साथ कांस्य पदक जीता। तेजस्विन शंकर डेकाथलॉन में कांस्य पदक जीतकर राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। भारत के 10 मुक्केबाजों ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत अब कुल 23 पदक के साथ तालिका में 10वें स्थान पर है, जिसमें 5 स्वर्ण, 12 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डेकाथलॉन स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर एथलीट तेजस्विन शंकर को बधाई दी है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, दक्षिण आंध्र कर्नाटक, कोंकण, गोवा, केरल, माहे में मूसलाधार वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी आज बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सेना।
2: जंतर मंतर पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की माता के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले बच्चों के लिए श्री मोदी का बयान देने का अखबार की हेडलाइन है। जनसत्ता लिखता है, प्रधानमंत्री ने इंस्टाग्राम पर कहा, हमें इन गुमराह बच्चों को माफ करना चाहिए। पत्र ने अंदर के पृष्ठ पर शीर्षक से छात्रों के प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों का वक्तव्य दिया है। वर्दी के पीछे एक परिवार होता है। दैनिक भास्कर ने परिजनों की पीड़ा का उल्लेख किया है। भीड़ ने खींचा, खून से सनी वर्दी में घर लौटे। आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद आखिर हुसैन सहित 5 को उम्र कैद की सजा की खबर अखबारों की सुर्खी है। दैनिक जागरण लिखता है, अदालत ने कहा, अंकित शर्मा की हत्या इतनी क्रूर और बर्बर कि समाज की अंतर आत्मा को छोड़ देती है। पत्र ने अपने संपादकीय में लिखा है, अदालत के फैसले से पीड़ित परिवार को न्याय की उम्मीद बंधी। दंगों में धर्म के नाम पर आम लोगों को निशाना बनाया गया, इसके जख्म आज भी हरे हैं। लोकतंत्र में शांति प्रदर्शन का अधिकार तो है, पर इसकी बात में उपद्रव फैलाने की छूट किसी सूरत में नहीं दी जा सकती। गांव में आतंकी हमला, मजदूर की मौत, नवभारत न्यूज के पृष्ठ पर है। अमर उजाला लिखता है, कश्मीर में आतंकियों के नाम पूछकर बरसाई गोलियां, प्रवासी की मौत, टीआरएफ ने ली जिम्मेदारी। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल को जूडो में पदक मिलने की खबर ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स लिखता है, जूडो में अस्मिता हर्ष की स्वर्ण गाथा, जीते 2 गोल्ड मेडल। अमर उजाला ने हर्ष सिंह अस्मिता का चित्र देते हुए लिखा है, 42 साल में पहली बार देश को जूडो में स्वर्ण, पहली बार जिंदा दिल लेकर दौड़ी वंदे भारत।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं। वीडियो संदेश में कहा, राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए युवाओं को दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे प्रदर्शन पाकिस्तानी सत्ता के खिलाफ जनता की कड़ी नाराजगी का प्रमाण। इसके साथ ही समाचार विभाग का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Naresh Mago. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls for compassion and guidance for misguided youth. Says hatred and abuse never solve anything. President gives assent to anti-paper leak bill, introducing stricter punishment and setting up of fast-track courts. Prime Minister to launch multiple development projects in Andhra Pradesh and Karnataka today. India raises concerns over ongoing hostilities in West Asia region, urges Iran to avoid attacks on commercial shipping and seafarers. Italy suspends free border travel with Spain over Ceuta migrant crisis. And at Commonwealth Games, India clinched 2 historic gold medals in judo, secured double podium finish in men's javelin throw, and win a first ever bronze in decathlon.

अपने जिलों में सोने के दो तमगे जीते हैं जो एक तारीख है। भारत ने नेजा फेंकने के मर्दों के मुकाबले में दो तमगे हासिल किए हैं। उसने डेक्थलॉन में अभी तक का पहला कांसे का तमगा जीता है। खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बुरा भला कहने और नफरत से कभी कोई मसला हल नहीं हुआ। उन्होंने

0: मर्दशुमारी करने वाले अहलकार हर घर के फर्द के बारे में तफसीली मालूमात जमा करेंगे, जिसमें नाम, उम्र, जिंस, जात और मजहब की बुनियाद पर आबादी का हकीकी तौर पर इंदराज होगा। कोलकाता से संदीपोन दास गुप्ता और श्यामलाल गोस्वामी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
1: भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में नाम नेहाद इंतखाबात पाकिस्तानी इंतजामिया को शर्मनाक तरीके से मुस्तरद करने के मुतअरिफ हैं। दिल्ली में नामा निगारों से बात करते हुए वजारत खारजा के तर्जमान रणदीप जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तानी इंतजामिया कश्मीर के अपने जेरे कब्जा इलाके में पुरअमन शहरियों के खिलाफ बेरहमाना ताकत का इस्तेमाल जारी रखे हुए है। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई का नतीजा 40 से ज्यादा शहरियों की अलमनाक मौत और बहुत सों के जख्मी हो जाने की शक्ल में बरामद हुआ है। रूसी फौज में भारतीय शहरियों के बारे में तर्जमान ने कहा कि रूसी फौज में बकिया भारतीय शहरियों की रिहाई के लिए भारत रूस से बातचीत कर रहा है। उन्होंने कहा कि इन कोशिशों की वजह से अभी तक 139 भारतीय शहरी रिहा कराए जा चुके हैं। भारत और चीन आज सिक्किम में नाथुला दर्रे के जरिए सरहदी तजारत दोबारा शुरू करेंगे, जिससे दोनों पड़ोसी ममालिक के दरमियान एक अहम तजारती रास्ते की बहाली होगी। तजारत की बहाली से 6 साल तअतुल खत्म हो जाएगा, जो 2020 से कोरोना वायरस वबा की वजह से पैदा हुआ था। तवक्को है कि तजारत की बहाली से सरहद पार तजारत को फरोग मिलेगा, जिससे रजिस्टर्ड ताजिरों, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों और मुतअल्लिका कारोबारियों को फायदा पहुंचेगा। नाथुला के जरिए तिजारत 4 दहाइयों से ज्यादा अरसे तक मुअत्तल रहने के बाद 2006 में दोबारा शुरू हुई थी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कल शाम अपने ईरानी हम मनसब अब्बास इराकची से बात की और मगरबी एशिया खित्ते में जारी कशीदगी पर भारत की गहरी तश्वीश का इजहार किया। फोन पर हुई बातचीत के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने जोर देकर कहा कि किसी भी सूरत हाल में तजारती जहाजरानी और समंदरी अमले पर हमले नहीं होने चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत किसी भी फरीक की जानिब से किए गए इस तरह के किसी भी हमले की मजम्मत करता है। वज़ीर ख़ारजा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्हें मौजूदा वाकयात और जारी बातचीत के ताल्लुक से ईरान के मौके से भी रोशनास कराया गया। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा बातचीत और सिफारतकारी की तायद करता है। इटली ने स्पेन के साथ खुली सरहद के रास्ते सफर की सहूलत आरजी तौर पर मुअत्तल कर दी है, क्योंकि मराकश की जानिब से स्पेन के सियूटा इलाके में आने वाले माइग्रेंट्स की तादाद में अचानक इजाफा हो गया था। इस कदम से परवाजों और समंदरी ट्रांसपोर्ट पर असर पड़ेगा, जिस स्पेन के शेंचिंग खुली सरहद के सफर की सहूलत पर असर पड़ेगा, जिसे हाल ही में मुअत्तल किया गया है। अभी तक इस सहूलत के तहत लोग 29 यूरोपीय मुल्कों में आजादाना तौर पर आमदो रफ्त करते थे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बरतानिया के वज़ीर आज़म एंड्रू बर्नमैन से बातचीत की और ओहदा संभालने पर उन्हें मुबारकबाद दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि उन्होंने अपनी बातचीत में टेक्नोलॉजी इख्तरा, दिफा, सलामती, साफ सुथरी तवानाई, तालीम और आम से आवाम के रिश्तों ने इस भारत बरतानिया जामे अहम शराकतदारी को नई बुलंदियों तक ले जाने जैसे मैदानों में मिलकर काम करने से इत्तफाक किया। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों मालिक भारत और बरतानिया आवाम की खुशहाली और तंदुरुस्ती के मकसद से तिजारत और सरमायाकारी के उन मौकों को भी पूरी तरह फरोग देंगे जो भारत बरतानिया जामे इक्तिसादी और तिजारती समझौते पर हाल ही में अमल दरामद से पैदा हुए हैं। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने मशरकी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, साहिली कर्नाटक, जुनूबी अंदरूनी कर्नाटक, कोंकण, गोवा, केरला और माहे में आज इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है। IMD ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मगरबी राजस्थान, बिहार, दिल्ली, हिमालयी मगरब, बंगाल, अंडमान निकोबार, जजायर, लक्षद्वीप और शुमाल मशरकी भारत के कुछ हिस्सों में भी शदीद बारिश की पेशगोई की है। ग्लासगो में जारी दौलत मुश्तरका खेलों में कल भारत ने फिर से शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। उसने जूडो में सोने के 2 तारीखी तमगे जीते हैं, जबकि मर्दों के भाला फेंकने के मुकाबले में भी 2 यादगार तमगे हासिल किए हैं, जबकि डेक्थलॉन में उसने अब तक का पहला कांसे का तमगा जीता है। नेज 10 मुक्केबाजों ने अपने मुतअल्लिका जुमरों में फाइनल्स में जगह बनाई है। सरे 10 भारत सोने के 5, चांदी के 12 और कांसे के 6 तमगों के साथ कुल 23 तमगे जीतकर दर्जाबंदी में 10वें मकाम पर है। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने कल अपना 2 रोजा भूटान का सरकारी दौरा मुकम्मल किया। दौरे के दौरान जनाब मिश्री ने भूटान के 13वें 5 साला मनसूबे के लिए 5वीं भारत भूटान तरक्याती ताबन मुजाकरात की मुश्तरक सदारत की। पांचवें मंसूबे की बातचीत के दौरान दोनों फरीकों ने भूटान के 13वें पंचसाला मंसूबे के लिए भारतीय हुकूमत की तरफ से 10,000 करोड़ रुपए की इमदाद की मजमुई पेशरफ्त और अमल आवरी का जायजा लिया। मजमुई तौर पर 12 नए प्रोजेक्टों और मखसूस मंसूबों के लिए माली तआवुन से मुतालिक 332 करोड़ रुपए के प्रोजेक्टों को मंजूरी दी गई। इनका ताल्लुक बुनियादी ढांचे, सेहत की देखभाल, ज़राअत, शहरी सहूलियात

0: और डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे शोबों से है। सोशल मीडिया कंपनी मेटा की आलमी टीम, जिसे वजीर आजम नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट पर बंदिश लगाए जाने के बाद मरकज ने तलब किया है, उसने एल्गोरिदम के जरिए जानिबदारी अपनाए जाने और अवामी नज्म व नस्त में इसके रोल से मुतालिक मामलात पर पूछताछ की जाएगी। सरकारी जराए ने हमारे नामानिगार को बताया कि उम्मीद है कि मेटा की इस आलमी टीम से अगले हफ्ते के वक्त में किसी वक्त पूछताछ की जाएगी। मेटा से पूछा जाएगा कि उसका एल्गोरिदम किस तरह काम करता है और अवामी नज्म व नस्म में कंपनी का क्या रोल है। ये टीम एक पार्लियामानी कमेटी के सामने भी हाजिर होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फौज को इस हफ्ते के आखिर तक ईरान पर नए हमले की तैयारी का हुक्म दिया है। अमरीकी मीडिया ने अफसरों का नाम बताए बगैर अपनी रिपोर्टों में कहा है कि इस मुजव्वजा हमले का मकसद तेहरान पर खुदसुपुर्दगी के लिए दबाव कायम करना है। ये रिपोर्टें उस वक्त मंजर आम पर आई हैं जब ट्रंप ने ईरान के साथ सिफारती बातचीत के मुस्तकबिल पर सवाल उठाए हैं और उर्दन में अमरीकी फौजी तनसीबात पर हमले के बाद सख्त फौजी जवाबी कार्रवाई का इंतबाह दिया है। 28 फरवरी को शुरू हुई इस महाधाराई से पूरे खित्ते में अदम इस्तेहकाम में इजाफा हो गया है। ईरान ने बाद में अबनाए हुरमुज को बंद कर दिया, जिसे खाम तेल, कुदरती गैस और खाद की तरसील में रखना पैदा हुआ। दिल्ली सरकार ने अपनी बसों में मुफ्त सफर की सहूलत से फायदा उठाने के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड के लाजमी इस्तेमाल की मुद्दत कार इस माह की 16 तारीख तक के लिए बढ़ा दी है। इस फैसले के तहत कंडक्टर 15 अगस्त तक पिंक टिकट फराहम करते रहेंगे। और अब अखबारात के आईने के साथ मुजीब अख्तर।
1: शुक्रिया अब्दुल वाहिद। राजधानी दिल्ली से छाए होने वाले आज के बेशतर अखबारात ने अलग अलग खबरों को सुर्खी बनाया है। रोजाना प्रताप के वजीर नरेंद्र मोदी के आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के दौरे की खबर को खसूसी तौर पर शाया किया है। आंध्र प्रदेश में 17,900 करोड़ रुपए से ज्यादा के मुतादी तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद रखेंगे और इफ्तिताह करेंगे। वो कर्नाटक के मैसूर में वाक़ श्री राम कृष्ण आश्रम में स्वामी विवेकानंद सकाफती यूथ सेंटर विवेक स्मारक का इफ्तिताह करेंगे। हुकूमत के मुताबिक पेपरमिल के मुकदमात की समाअत अब नए मरहले में दाखिल हो गई है, जिसके सबब बरसों से अदालतों में ज़ेर इल्तवा मामलात में तेजी आएगी। लेकिन इस तरह के सभी मामलों को फास्ट ट्रैक अदालत में मुंतकली की तैयारी की जा रही है। इस खबर पर रोजनामा इंकलाब ने तवज्जो मरकूज की है। रोजनामा प्रताप ने मरकजी काबीना के जरिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना की मंजूरी की खबर को उजागर किया है, जिसके 5,000 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस किया गया है।
0: आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुमराह नौजवानों के तहत हमदर्दी और रहनुमाई अख्तियार करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि नफरत और गालम गलोज से कभी कोई मसला हल नहीं होगा। जमहूरिया ने पेपर लीक की रोकथाम के बिल को मंजूरी दे दी है, जिसमें सख्त सजा और तेजी से काम करने वाली अदालतें कायम करने के लिए कहा गया है। वज़ीर-ए-आज़म आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। भारत ने मगरबी एशिया खित्ते में जारी मुखासिमाना कार्रवाईयों पर तश्वीश जाहिर की है। उसने ईरान से जोर देकर कहा है कि वो कमर्शियल जहाजों और जहाजियों पर हमले से गुरेज करे। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम मधुरिमा इस छोटे से अंतराल के बाद।
3: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
7: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
8: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
7: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
8: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
7: बुकिंग है तो संपर्क करें
9: 0542227658
6: 0542227658।

മെലഡി മധുരിമ आकाशवाणी वाराणसी के सभी श्रोताओं का स्वागत है कार्यक्रम मधुरिमा में। कार्यक्रम को शुरू करते हैं और आपको सुनवाते हैं पहला गीत फिल्म 72 आवर्स से। इस गीत को अपनी आवाज़ दी है मोहित चौहान और प्रियंका नेगी ने। गीत के बोल हैं सुजाता देवरानी और विकास चौहान के। संगीत है संजय बोस का।

आप सुन रहे थे 72 आवर्स का ये गाना। अब आपको सुनवाते हैं फिल्म बत्ती गुल मीटर चालू से राहत फतेह अली खां की आवाज़ में ये गीत।

फिल्म बत्ती गुल मीटर चालू से राहत फ़तेह अली खान की आवाज़ में सुना आपने ये गीत। आइए अब अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म बवाल से, जिसे आवाज़ दी है अरिजीत सिंह और मिथुन ने। गीत के बोल हैं मनोज मुंतशिर शुक्ला के और संगीत है मिथुन का। फिल्म बवाल से।

फिल्म बवाल से अरिजीत सिंह और मिथुन की आवाज में आपने सुना ये गीत। अब आपको सुनवाते हैं अभिजीत भट्टाचार्य और श्रेया घोषाल की आवाजों में फिल्म बेशरम का ये गाना, जिसे संगीत दिया है ललित पंडित ने और गीत के बोल हैं राजीव बरनवाल के। अभिजीत भट्टाचार्य और श्रेया घोषाल की आवाजों में।

फिल्म बेशरम से अभिजीत भट्टाचार्य और श्रेया घोषाल की आवाज़ में है, आपने सुना ये गाना। अब आपको सुनवाते हैं फिल्म केसरिया से अरिजीत सिंह की आवाज़ में ये गीत। इस गीत के बोल हैं अमिताभ भट्टाचार्य के और संगीत है प्रीतम का। फिल्म है ब्रह्मास्त्र।

फिल्म ब्रह्मास्त्र का ये गीत आप सुन रहे थे आपके पसंदीदा कार्यक्रम मधुरिमा में। आइए आज के कार्यक्रम का आखिरी गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म बॉम्बे से। इस गाने को अपनी आवाज़ दी है रेमो फर्नांडिस ने और संगीत है ए आर रहमान का। फिल्म बॉम्बे।

0: Madhurima, the sound of melody. Madhurima.
1: आप सुन रहे थे सदाबहार फिल्मी गानों का कार्यक्रम मधुरिमा। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है, मीडियम वेव 241.54 मीटर पर। अब आप सुनेंगे जिले की हलचल हमारे लखनऊ केंद्र से।

0: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है।
1: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए सिद्धार्थनगर और सोनभद्र जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं सिद्धार्थनगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है डॉक्टर सावन कुमार का।
2: सिद्धार्थनगर पुलिस को साइबर क्राइम से संबंधित मामले में बड़ी सफलता हासिल हुई है। जनपद की खसराहा थाने की पुलिस ने साइबर क्राइम को लेकर एक 20 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया। इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस अधीक्षक अभिषेक महाजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पुलिस द्वारा NCRP समन्वय पोर्टल पर दर्ज कुल 9 मामले के 15,47,63,520 रुपए के मामले में एक 20 वर्षीय अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से साइबर क्राइम कर इकट्ठा हुए रुपए से खरीदा गया एक आईफोन, एक वीवो मोबाइल, एक लैपटॉप व साइबर ठगी के 20,000 रुपए नगद बरामद हुए। यह अभियुक्त अपने 6 विभिन्न खातों में 14,00,000 रुपए का लेन देन कर चुका है। आगे भी पुलिस द्वारा जांच की जा रही है।
3: NCRP पोर्टल और समन्वय पोर्टल पे जो भिन्न भिन्न राज्यों से शिकायतें आती हैं, उसमें 9 शिकायतें प्राप्त हुई थी म्यूल अकाउंट के संबंध में, और उसी जांच के क्रम में म्यूल खाते का भी पता चला और ये पता चला कि ये एक बड़ा फ्रॉड नेटवर्क है जिसने

0: 15 करोड़ से भी
1: से
0: अधिक
1: लेकर
0: की साइबर
1: साइबर
0: फ्रॉड
1: फ्रॉड
0: किया
1: किया है।
0: है।
1: सिद्धार्थनगर जिले में एक पेड़ माह के नाम वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 का भव्य शुभारंभ किया गया। इस महाअभियान के तहत जिले में 45,65,400 पौधे लगाने का लक्ष्य पूरा किया गया। सभी विभागों के कर्मचारियों और स्कूली बच्चों ने अपने कार्यालय, स्कूल और खाली स्थानों पर पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इसके तहत सभी विभाग के कर्मचारियों व बच्चों ने अपने कार्यालय, स्कूल व अन्य खाली स्थानों पर पौधारोपण किया। एक पेड़ माँ के नाम विषय पर प्रसिद्धीय स्कूल के बच्चों ने मंच से इसकी महत्ता बताई। इस अवसर पर धौरी कुइयां गांव में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सिद्धार्थनगर में आयोजित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम में विभिन्न धर्म के 146 जोड़ों का विवाह उनकी रीति रिवाज के अनुसार संपन्न हुआ। जनपद मुख्यालय के BSA ग्राउंड पर आयोजित इस सामूहिक कार्यक्रम में स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल, नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे, विधायक विनय वर्मा, पूर्व कैबिनेट मंत्री विधायक जय प्रताप सिंह, सदर विधायक श्याम धनी राही सहित जिले के आला अधिकारियों ने शादीशुदा जोड़ों को आशीर्वाद दिया। उत्तर प्रदेश में संचारी रोग नियंत्रण पखवाड़ा कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा चुका है। वहीं जनपद सिद्धार्थनगर में इस कार्यक्रम को लेकर मुख्य विकास अधिकारी के नेतृत्व में लगातार लोगों में प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इस विशेष अभियान को गति देने के लिए विकास भवन से एक विशेष प्रचार वाहन को रवाना किया जा चुका है, जो जनपद में सभी तहसील क्षेत्र के गांव, कस्बा व नगर में जाकर रोग के बारे में लोगों को जागरूक कर रहा। जनपद में तहसील स्तर पर सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व सामुदायिक केंद्रों पर एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया, जिसके नेतृत्व में आशा, आंगनबाड़ी व स्वास्थ्य विभाग की टीम गाँव में कैंप लगाकर संचारी रोग को लेकर लोगों को जागरूक कर रहा है, साथ ही बचाव के लिए भी जानकारी दे रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य आम जनमानस को मौसमी और संचारी बीमारियों के प्रति जागरूक करना है, साथ ही जिले में स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना है, जिससे बरसात के दिनों में फैलने वाले जानलेवा बीमारियों से बचा जा सके। सिद्धार्थनगर जिले में भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर क्षेत्र के नव नियुक्त क्षेत्रीय अध्यक्ष विनोद राय का जिला मुख्यालय पर प्रथम आगमन हुआ। जिले में पहुँचने पर सिद्धार्थनगर नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद माधव, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि उपेंद्र सिंह सहित जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। चिलचिलाती धूप के बावजूद हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने लायक था। स्वागत समारोह के बाद जिला कार्यालय पर एक महत्वपूर्ण जिला बैठक की आयोजित की गई। मीडिया से मुखातिब होते हुए क्षेत्रीय अध्यक्ष विनोद राय ने शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया और संगठन को मजबूत करने के लिए संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन्हें जो भी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, उसका पूरी निष्ठा से निर्वहन करेंगे। उनका लक्ष्य है कि आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी साल 2017 से भी अधिक सीटें जीतकर इतिहास रचे। इसके लिए वह हर मंडल में प्रयास करेंगे, कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद स्थापित करेंगे। सिद्धार्थनगर जिले के विकास खंड बर्डपुर में ग्राम पंचायत बर्डपुर नंबर 6 टोला माधवनगर में ग्राम चौपाल गांव की समस्या गांव में समाधान का आयोजन किया गया। इस मौके पर अपनी समस्याओं को लेकर आए ग्रामीणों की जिलाधिकारी श्री शरणप्पा जीएन, मुख्य विकास अधिकारी बलराम सिंह सहित जिले के अधिकारियों ने समस्याएं सुनी और उनसे बेहतर ज्यादातर का निपटारा मौके पर कर दिया। ग्रामीण चौपाल को लेकर जिलाधिकारी ने बताया कि शासन की मंशा के अनुरूप पूरे जिले भर में सप्ताह के एक दिन जिले के किसी एक गांव में ग्राम चौपाल का आयोजन किया जाता है। इस मौके पर जिले के हर विभाग से संबंधित अधिकारी मौजूद रहते हैं और ग्रामीणों की समस्या सुनकर उसे निपटाने की कोशिश की जाती है। कुछ समस्या जिनका निदान मौके पर नहीं हो सकता, उसको उसके लिए एक समय सीमा के भीतर इसका निपटारा करने के निर्देश दिए जाते हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि इस कार्यक्रम से लोगों की समस्याओं को निदान के साथ साथ सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी भी लोगों तक पहुंचाई जाती है।
0: सिद्धार्थनगर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं सोनभद्र जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मनोज सिंह का।
2: जनपद सोनभद्र में करीब एक सप्ताह देरी से पहुंचे मानसून के बावजूद सामान्य से कुछ ज्यादा वर्षा से किसान खुश हैं। धान की डाली गई नर्सरी के बाद किसान धान की रोपाई अभी भी कर रहे हैं। जनपद के लगभग आधे से कुछ कम हिस्सों में ही धान की रोपाई की जाती है, बाकी के हिस्सों में दलहन तिलहन की बुआई होती है, जिसके लिए हाल के समय की वर्षा पर्याप्त है। भौगोलिक दृष्टिकोण से जनपद अधिकांश इलाका उबड़ खाबड़ टीले नुमा है, ऐसे में धान की रोपाई करना किसानों के लिए संभव नहीं है। जनपद सोनभद्र में 50 एकड़ से ज्यादा क्षेत्रफल में सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र बनाया जाएगा। जिलाधिकारी चतीश गौड़ ने बताया कि शासन स्तर पर लिए गए निर्णय के अनुक्रम में जनपद ने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी निभाई है। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद का मारकुंडी क्षेत्र, बिंध्य और पूर्वांचल

0: प्रमुख औद्योगिक कौशल विकास एवं रोजगार का केंद्र बनेगा। उन्होंने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र के लिए लगभग 16 करोड़ की लागत से सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से तेजी से उद्योगों की स्थापना होगी। जिलाधिकारी ने बताया कि सिंगल विंडो के माध्यम से समस्या का त्वरित निस्तारण भी किया जाएगा। रोजगार की दृष्टि से महत्वपूर्ण कदम से स्थानीय लोगों को भरपूर रोजगार और स्वयं के उद्योग भी लगा सकते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल योजना युक्त योजना के अंतर्गत स्थानीय एमएसएमई स्टार्टअप एवं नए उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे आदिवासी बाहुल जनपद में स्थानीय लोगों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। जनपद सोनभद्र के बबनी ब्लॉक की 1000 हेक्टेयर भूमि पर औद्योगिक हब बनाया जाएगा। एक्सप्रेस वे के करीब बनाए जा रहे औद्योगिक हब के लिए जिलाधिकारी और उद्योग बंधुओं के बीच बैठक हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने आदेशित किया कि सभी समस्याओं का त्वरित निस्तारण किया जाए। जनपद में विगत दिनों मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का निस्तारण समय से किया जाए, जिससे स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा मिल पाए। जनपद सोनभद्र में जिला उर्वरक निर्धारित समिति की बैठक के बाद जिलाधिकारी ने आदेश दिया है कि किसी भी परिस्थिति में खाद की ओवर रेटिंग नहीं होनी चाहिए। साथ ही हर सहकारी समिति एवं संबंधित एजेंसी पर डीएपी और यूरिया की उपलब्धता होनी ही चाहिए। उन्होंने कहा कि किसान हाल में खरीफ की बुआई में व्यस्त है, ऐसे में उर्वरक सही समय पर उनको उपलब्ध कराना प्रशासन की जिम्मेदारी है। जनपद सोनभद्र में संचारी रोगों की प्रभावी नियंत्रण के लिए युद्ध स्तर पर अभियान चलाया गया। गाँव में नालियों की सफाई कराई गयी, पानी स्टोरेज इलाकों को चिन्हित करके दवाओं का छिड़काव कराया गया। इस बीच आशा आंगनबाड़ी एएनएम द्वारा लगातार संचारी रोगों से बचाव के लिए कार्य किए गए। जनपद सोनभद्र में अवस्थित रिहंद बांध की कैचमेंट एरिया में जल भराव उम्मीद के अनुरूप नहीं है। जनपद के पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में मानसून की कमजोर सक्रियता का असर रिहंद के जलस्तर पर दिखाई दे रहा है। विभागीय आंकड़ों के मुताबिक 30 जुलाई को सुबह बांध का जलस्तर 854.4 फीट रिकॉर्ड किया गया, जबकि पिछले वर्ष इसी दिन बाद यह 868.1 फीट पर था। विशेषज्ञों का कहना है कि जुलाई माह में 22.7 फीट जल स्तर कम होने का असर आगामी समय में विद्युत उत्पादन पर पड़ेगा। केंद्र और राज्य सरकारों ने रिहंद के जल पर आधारित कई बड़ी तापी परियोजनाओं की स्थापना की है। रिहंद बांध से जुड़े एनटीपीसी की रिहंद नगर, सिंगरौली और शक्ति नगर परियोजनाओं के अलावा अनपरा तापी बिजली परियोजना, रेणु सागर ओबरा तापी परियोजना प्रमुख है। इन सभी संयंत्रों की शीतलन प्रणाली और उत्पादन प्रक्रिया के लिए बड़ी मात्रा में पानी रिहंद बांध से उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही रिहंद बांध से वर्ष भर सस्ती बिजली का उत्पादन भी किया जाता है। जनपद सोनभद्र में प्रदेश सरकार के समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव सिंह गोड़ ने विगत दिनों कन्हरा दैरपुर मार्ग पर बिजुल नदी पर दीर्घ सेतु की आधारशिला रखी। संजीव सिंह गोड़ ने बताया कि उत्तर सेतु के निर्माण से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच आवागमन और भी सुगम हो जाएगा, साथ ही व्यापार के अवसर भी बढ़ेंगे।
1: यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 1233 किलो हर्ट्ज, न्यूज ऑन एआईआर ऐप, डीटीएच और वेब्स ओटीटी पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना। आज की पहली सूचना हमें प्राप्त है कार्यालय पुलिस उपायुक्त कमिश्नरेट वाराणसी से, जो सुनैना साहनी पुत्री संतोष साहनी निवासी B3/84 शिवाला थाना भेलूपुर कमिश्नरेट वाराणसी की है। ये दिनांक 2 जुलाई 2026 से लापता हैं। इनकी आयु 17 वर्ष, कद 4 फीट 5 इंच, रंग गोरा है। आखिरी बार जब इन्हें देखा गया था तो इन्होंने नीला जींस और शर्ट पहन रखा था। इनके बारे में कोई भी सूचना प्राप्त हो तो आप अपने नज़दीकी थाने या कार्यालय पुलिस उपायुक्त कमिश्नरेट वाराणसी को सूचित कर सकते हैं। इसी क्रम में हमें जो सूचना प्राप्त है पुलिस अधीक्षक कार्यालय बलिया थाना प्रभारी नरही से, जो सत्या पटेल पुत्री अमरनाथ पटेल निवासी ग्राम और पोस्ट नरही थाना नरही जिला बलिया की है। ये दिनांक 11 जुलाई 2024 शाम 7 बजे से लापता हैं। इनकी

आयु 15 वर्ष, रंग गोरा, कद 5 फीट 1 इंच है। आखिरी बार जब इन्हें देखा गया तो इन्होंने सूट सलवार पहन रखा था। इनके बारे में कोई भी सूचना प्राप्त हो तो आप पुलिस अधीक्षक कार्यालय बलिया, थाना नरही को सूचित कर सकते हैं या अपने नज़दीकी थाने से संपर्क कर सकते हैं। इसी क्रम में जनपद चंदौली के थाना चकिया से प्राप्त सूचना के अनुसार अमृता पुत्री रामजतन मौर्या निवासी गोपालपुर बसंत नगर अलीनगर चंदौली से है, जो दिनांक 25 जून 2026 दोपहर 12:30 से लापता हैं। इनकी आयु 19 वर्ष, शरीर इकहरा रंग गेहुआ है, कद 5 फीट 1 इंच, चेहरा गोल है। आखिरी बार जब इन्हें देखा गया तो इन्होंने सफ़ेद रंग की कुर्ती, ब्राउन लोवर और चप्पल पहन रखा था। इनके बारे में कोई भी सूचना प्राप्त हो तो आप थाना कोतवाली चकिया जनपद चंदौली या आप अपने नज़दीकी क्षेत्रीय थाने से भी संपर्क कर सकते हैं। इसी क्रम में हमें जो सूचना प्राप्त हो रही है वो है जिला बलिया से, थाना बैरिया। अखिलेश यादव पुत्र बच्चा लाल यादव निवासी टेगहरी जिला बलिया की है। इनकी आयु 32 वर्ष है। ये मानसिक रूप से अर्धविकसित हैं और पैर से विकलांग हैं। ये दिनांक 8 दिसंबर 2018 से लापता हैं। इनके बारे में कोई भी सूचना प्राप्त हो तो आप अपने नज़दीकी थाने या थाना बैरिया जिला बलिया को सूचित कर सकते हैं। थाना जिगना जिला मिर्जापुर से प्राप्त सूचना के अनुसार मनीषा यादव पुत्री सुखराम यादव निवासी कछार डीह महासमुंद भोहा छत्तीसगढ़ की है, जो दिनांक 30 मई 2026 के दोपहर से सारदा ईट भट्ठा छतरीपुर से कहीं लापता हो गई हैं। इनकी आयु 18 वर्ष, चेहरा गोल, रंग सांवला और कद 5 फीट 6 इंच है। आखिरी बार जब इन्हें देखा गया तो इन्होंने सफ़ेद रंग का सूट सलवार पहन रखा था। इनके बारे में कोई भी सूचना प्राप्त हो तो आप अपने क्षेत्रीय थाने या थाना जिगना जिला मिर्जापुर को सूचित करें। ये थी खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। अब से थोड़ी देर में यानी सुबह 9:30 पर आप सुनेंगे उर्दू कार्यक्रम, जो रिले किया जाएगा हमारे लखनऊ केंद्र से।

0: लखनऊ केंद्र है। प्रस्तुत है उर्दू कार्यक्रम।
1: आज का उर्दू प्रोग्राम लेकर राजेश्वरी आपकी खिदमत में हाजिर है। नगमगी की इस महफिल में आप सबका खैर मकदम है। आदाब।

कोई तो है जो दुआओं में याद रखता है, कोई तो है जो दुआओं में याद रखता है, मैं डूबता हूं वो उछाल देता है। सामने ऊपर वाले का बड़ा एहसान है कि जब जब भी हमने आपसे मिलने का वादा किया, उसने तब तब हमें मुलाकात का मौका फराहम किया है। और आपके समातों का बेहद शुक्रिया कि तमाम मसरूफियात के बाद भी आप नगमगी की इस महफिल में बड़ी मोहब्बतों के साथ तशरीफ लाते हैं। यकीन जाने आपकी तवज्जो ही हौसला अफजाई का सबब है। आइए शुरू करते हैं आज का सफर। हालांकि मसरूफियात बहुत बढ़ गई है हम सबके, या हमने खुद बढ़ा ली है। हम जब भी तनहा होते हैं तो शायद यही सोचते हैं कि जिंदगी तो कहाँ लेके आ गई हमें, हम क्या थे और क्या हो गए हैं, और सोचते हैं कि हम कहाँ अक्लो शऊर के दलदल में आ धंसे, ख्वाबों और ख्वाहिशों के नगर में आ फंसे, नफरतों और अदावतों के कबीले में आ बसे, जहां हमें सुकून और शादमानी के दो पल भी मयसर नहीं। माँ बाप

की शफकतें भी हासिल नहीं, दादी नानी और अम्मा की लोरियां और कहानियां भी अब समातों को नसीब नहीं। हाँ, अगर हासिल है तो उलझने, परेशानियां, दुश्वारियां, इन सभी मुसीबतों के दरमियान दिल ढूंढता है सुकून के वो पल, नादानियों की वो लम्हे, शरारतों की वो मौसम, जो अब भी जिंदगी के सफर में बहुत पीछे छूट चुके हैं। जब भी बचपन की तरफ मुड़ के देखा, दिल ढूंढता है वो पतझड़ के मौसम में पत्तों से पत्ते जोड़कर रेल बनाना, कागज की कश्ती बनाकर बारिश के पानी में तैराना, कागज की पतंग हवाई जहाज बनाकर बलखाती हवा में उड़ाना। स्कूल जा रहे हैं लेकिन मालूम नहीं क्यों मेहमानों के आने पर खुश हो जाना, इसलिए कि आज पढ़ाई से बच जाएंगे। क्या सोचने लगे आप, याद आ गया ना सब कुछ? बेशक, बेहद खूबसूरत होते हैं बचपन के दिन, बहुत याद आते हैं।

दिल लौटता है। वो पतझड़ के मौसम में पत्तों से पत्ते जोड़कर रेल बनाना, कागज की कश्ती बनाकर बारिश के पानी में तैराना, कागज की पतंग हवाई जहाज बनाकर बलखाती हवा में उड़ाना। स्कूल जा रहे हैं लेकिन मालूम नहीं क्यों मेहमानों के आने पर खुश हो जाना, इसलिए कि आज पढ़ाई से बच जाएंगे। क्या सोचने लगे आप, याद आ गया ना सब कुछ? बेशक बेहद खूबसूरत होते हैं बचपन के दिन, बहुत याद आते हैं बचपन के दोस्त, किसी बात के ना फिक्र ना कोई गम।

जो इम्तियाज़े शामों सहर से गुजर गए, ऐसे भी कुछ मकाम नज़र से गुजर गए। हर चंद फर्शे राह थी उसके लिए निगाह, फिर भी खबर नहीं वो किधर से गुजर गए। सामईन, जिस तरह दर्दी मोहब्बत सभी से नहीं सही जाती, उसी तरह मोहब्बत के तकाजे भी सभी से पूरे नहीं किए जाते। मोहब्बत अनोखी लज्जत से आशना तो कराती ही है, पर कभी कभी ये जमाने भर के रंजो आलम से भी हमकनार कर देती है। जहां दामने गुल कांटों से भर जाता है, बेरंग और खुश्क जिंदगानी के साथ ये उम्रे नातवा गुजर जाती है। ऐसा गुमा होता है जैसे कोनैन में कोई इनकलाब आया हो और निजामे हयात को दरहम बरहम कर गया हो। तलखियों का बोझ वजूद को दबाए देता है। वो कौन सी जगह है जहां तुम मिलोगे? कहीं से आवाज तो दो, ये सोते हुए दरिया भी जाग जाएंगे। तुम ही हो जो सोते हुए शगुफों को हंसाया करती थी। तुम्हारी आमद से फजाएं महक उठती हैं। सुबह की किरणें तुम्हारी सुनहरी जुल्फों से रंगत चुरा लिया करती हैं। चांद तुम्हारे रुखे जेबा का दीदार करने को रोज निकलता है, लेकिन मैं तन्हा हूं बस तुम्हारे दीदार की हसरत लिए।

कभी अपने इश्क के तबसरे, कभी तस्करे रुख यार के, यूं ही बीत जाएंगे ये दिन भी जो खिजा के हैं न बहार के। मैं आज भी तन्हाइयों में बैठकर तुम्हारी यादों से वाबस्ता हूं, ढलते दिनों को गिन रहा हूं जो तमाम तर्राहतों के बाद हाँ ना में तब्दील, रिश्तों में बढ़ती दरारें और गहरी होती नजर आती हैं। वो तेरा एक लहजा एक खार की मानिंद मेरे दिल को जख्मी कर जाता है। तू आज भी मेरी दामनगीर है, मैं तुझसे नाशना तो नहीं। तू वक्त की दहलीज को पार कर जमाने की तखलियों से महफूज हो जा। मैं आज भी तेरा मुंतजर हूं, मैं इंतजार करता हूं तेरे उस हयागीर सरापे का जो कभी काबिल एहतराम था। तेरे अंदाजे गुफ्तगू के हम कायल हैं, ये राहें आज भी तेरा इंतजार कर रही हैं। उम्मीदों के चराग मद्दम होते जा रहे हैं, डर है कहीं जिंदगी की शाम इसी मकाम पर ना हो जाए, फिर मलाल के सिवा रह भी क्या जाएगा।

समीन कहां से शुरू करूं जिंदगी की ये दास्तां, एक कोना पकड़ूं तो दूसरा फिसल जाता है। एक बड़ी लंबी फेहरिस्त है जिंदगी के सफर की, अभी तो बहुत कुछ था जो आपसे कहना है। बातों और अशार के जरिए अपने दिल की बात कहने अगले हफ्ते यानी अगले जुमे को इसी वक्त इसी दिन फिर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। इस वक्त नगमगी की महफिल से राजेश्वरी अब रुखसत होता है। आदाब।

0: अभी आप सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी लखनऊ की पेश।
1: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलो हर्ट्स, DRM 1233 किलो हर्ट्स, न्यूज़ ऑन AIR ऐप, DTH और वेब्स OTT पर। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत। आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे राम नारायण मौर्य और साथी के गाए गीत। उससे पहले ये एक संदेश।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए
4: 0542227658।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें
5: 0542227658।
1: आइए सुनते हैं कार्यक्रम लोक संगीत के अंतर्गत राम नारायण मौर्य और साथी का गाया ये देवी गीत।

राम नारायण मौर्य और साथी की आवाज़ में आपने सुना ये देवी गीत। आइए अब सुनते हैं राम नारायण मौर्य और साथी की ही आवाज़ों में ये कजरी।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक संगीत। आज के कार्यक्रम में आपने सुना राम नारायण मौर्य और साथी की आवाज़ों में ये देवी गीत और कजरी। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम झनकार। आज के इस कार्यक्रम में पहला गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म नमक हलाल से। इस गीत को अपनी आवाज़ दी है किशोर कुमार ने। संगीत है बप्पी लहरी का। फिल्म है नमक हलाल।
1: Ha ha ha.

किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म नमक हलाल से ये गाना आप सुन रहे थे। अब सुनते हैं फिल्म क्रांति से लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और किशोर की आवाज़ों में। संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, गीत के बोल हैं संतोष आनंद के। फिल्म है क्रांति।

लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार की आवाज़ों में क्रांति फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। आपके पसंदीदा कार्यक्रम झनकार में प्रसारण आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से हो रहा है। आइए सुनते हैं फिल्म नमक हराम से किशोर कुमार की

फिल्म नमक हराम का ये गीत आप सुन रहे थे। अब आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म द ट्रेन का ये गाना, जिसका संगीत है आर डी बर्मन का और गीत के बोल हैं आनंद बख्शी के।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फ़िल्म द ट्रेन का ये गाना आप सुन रहे थे आपके पसंदीदा कार्यक्रम झनकार में। आइए कार्यक्रम को आगे ले चलते हैं और आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में फ़िल्म फ़र्ज़ का ये गाना। इस गाने को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और गाने के बोल हैं आनंद बख्शी के।

फिल्म फर्ज से लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में आपने सुना ये गीत। अब आपको सुनवाते हैं फिल्म राम भरोसे से मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में। हसरत जयपुरी के बोल और संगीत है रविंद्र जैन का। फिल्म है राम भरोसे।

आशा भोसले की आवाज़ों में है आपने सुना ये गीत। अब सुनते हैं फिल्म संगम से लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ है। संगीत है शंकर जयकिशन का और गीत के बोल हैं शैलेंद्र के। फिल्म है संगम।

संगम फिल्म से लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में आपने सुना ये गीत। अब सुनवाते हैं आपको लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में फिल्म आया सावन झूम के से ये गाना, जिसका संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और गीत के बोल हैं आनंद बख्शी के। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में।

फिल्म आया सावन झूम के का ये गीत आप सुन रहे थे आपके पसंदीदा कार्यक्रम झनकार में। प्रसारण आकाशवाणी वाराणसी के केंद्र से हो रहा है। आइए अब सुनते हैं फिल्म हमराज से। महेंद्र कपूर की आवाज़ है, संगीत है रवि का और गीत के बोल हैं साहिर लुधियानवी के।

हमराज फिल्म से महेंद्र कपूर की आवाज़ थी, संगीत था रवि का और गीत के बोल थे साहिर लुधियानवी के। आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म सीआईडी का ये गाना, जिसे आवाज़ दी है शमशाद बेगम ने। फिल्म सीआईडी।

फिल्म सीआईडी से शमशाद बेगम की आवाज़ थी। संगीत था ओपी नैयर का और गीत के बोल थे मजरूह सुल्तानपुरी के। इसी के साथ हमारा फिल्म संगीत का आज का कार्यक्रम झनकार यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स, DRM 1233 किलोहर्ट्स, न्यूज़ ऑन AIR ऐप, DTH और वेब्स OTT पर प्रस्तुत है कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। अब से थोड़ी देर में

0: इंतजार खत्म हुआ और वक्त आ गया प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश का।
1: एक्सक्यूज मी,
2: हाँ बोलना,
1: क्यूट है ना?
0: और श्रोताओं, आपसे बातचीत के लिए आपसे मुखातिब है आपका दोस्त अरुण। नमस्कार।
3: सलाम।
4: आपकी कॉल
0: आप जानते हैं ना, आपने डायल किया है फोन नंबर 222-10-52 यानी 222-1052 और अब आप बातें करेंगे अपने दोस्त अरुण से। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश।
5: राम राम जी।
0: राम राम, नमस्कार, स्वागत है आपका।
5: देहरादून से बोल रहा जी।
0: तो आज फोन लग गया आपका कांबोज जी।
5: हाँ जी सर, हाँ जी सर।
0: तो पूरा नाम पता अपना बता दीजिए।
5: सर मेरा नाम सुकांत कांबोज है, मैं देहरादून से बोल रहा जी।
0: जी जी, और अभी तो देहरादून में बड़ी रौनक होगी क्योंकि बारिश के मौसम में जो झरने वगैरह हैं वो बड़े गुलजार हो जाते हैं।
5: लेकिन सर झरनों के पास जाना बेकार है आज के टाइम में ना, मतलब बारिश बूंद में।
0: अच्छा, पानी में सरकने फिसलने का डर और थोड़ा सा ये पानी भी बहुत साफ नहीं होता, मटमैला होता है।
5: जी सर, जी सर।
0: क्योंकि मसूरी की यादें हैं, कैंपटी फॉल में जब मसूरी में एक वक्त हम गए थे तो उस समय भी बारिश का मौसम था और वो पानी बिल्कुल ऐसा लगता था कि मिट्टी ही मिट्टी है उसमें।
5: थोड़ा वो है ना सर, मतलब पानी ज्यादा आता है तो दिक्कत आ जाती है कई बार ना,
0: और अचानक से कई बार ऊपर से जी जी
5: ज्यादा पानी आ जाए, तो मेरा मानना तो यही है ऐसी जगह पे बरसात में जाना सही नहीं है जी।
0: जी जी बिल्कुल। और आपका कामकाज बढ़िया चल रहा है?
5: जी सर बढ़िया चल रहा है कामकाज, बहुत बढ़िया।
0: और प्रतिदिन कितने लीटर दूध का कारोबार होता है आपका?
5: सर मेरा कम से कम 250 लीटर के एयरफेयर का भी 240-250 इतना निकल जाता है मेरा।
0: बहुत बढ़िया। और तब तो आपको बहुत सारे लोगों से परिचय होगा पूरा देहरादून और आसपास में।
5: बिल्कुल बिल्कुल सर, पहले मैं यहाँ पे रह के पढ़ा भी हूँ सर। तो नजदीकी है हमारा, ज्यादा दूर तो है नहीं यहाँ से, हमारे घर से 30-40 किलोमीटर पड़ता है।
0: और आसपास तो तमाम जगह जी,
5: हमारे घर से देहरादून

0: भी उतना ही है, सहारनपुर भी उतना ही है, रुड़की शहर उतना ही है, हरिद्वार शहर उतना ही है, मतलब
1: हाँ,
0: चारों तरफ
1: ये
0: उतना ही है
1: सारी
0: हमारे।
1: चीजें, शहर जो मकबूल हैं, लोग यहाँ आते हैं दूर दराज से, सभी जगह आपके देहरादून वो केंद्र है, सेंटर है,
0: जी बिल्कुल सर,
1: इसीलिए
0: बिल्कुल
1: वो राजधानी भी है वहां पर।
0: जी सर, और एजुकेशन हब भी बन चुका सर अब तो
1: जी,
0: देहरादून
1: बहुत
0: को,
1: सारे कॉलेजेज हैं इंजीनियरिंग मेडिकल के।
0: जी बहुत ज्यादा हो गए अब तो कॉलेज सर, और
1: जी,
0: कोचिंग वगैरह भी बहुत बड़े बड़े कोचिंग वगैरह भी हो गए यहाँ पे
1: और प्रोग्राम कैसे लग रहे हैं आप सुन रहे हैं?
0: सर। प्रोग्राम तो बहुत बढ़िया लग रहे हैं, मैं बहुत दिन से फोन मिला रहा था, मेरा फोन नहीं मिल रहा।
1: और देखिए, आज ये संयोग हुआ कि आज इस कार्यक्रम में आपका पहला फोन है।
0: अच्छा जी,
1: क्योंकि
0: बहुत
1: शुरुआत
0: बढ़िया
1: में
0: सर,
1: कई बार रिकॉर्डिंग में थोड़ी सी दुश्वारियां आजकल आ रही हैं, लाइन में कई बार
0: जी सर,
1: आवाज
0: और
1: नहीं
0: मैं उस
1: आती।
0: पे मिला रहा था सर 52 पे ना,
1: जी,
0: तो मुझे दिक्कत हो रही थी, तो मैं एक दिन आपका प्रोग्राम सुना
1: आजकल
0: तो
1: हम लोग
0: उसमें
1: बता रहे हैं कि 52 पे एक दो बार प्रयास करिए, फिर आप 50 पे
0: जी,
1: लगा सकते हैं।
0: नहीं मैं तो आज 50 से ही शुरू करा सर।
1: जी बिल्कुल। तो आज किस गाने की फरमाइश है सुकांत जी?
0: सर गाना सुनवा दीजिए, कर चले हम फिदा जाने तन साथियों,
1: फिल्म हकीकत का गीत।
0: जी, पुराने पुराना ही है ना ये सर।
1: जी, बिल्कुल।
0: हाँ जी सर,
1: तो ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी
0: सर
1: पसंद
0: मैं
1: पर।
0: बीच में
1: जी,
0: इसलिए नहीं कर पाया मैं कॉल ना, थोड़ा वाइफ की तबीयत खराब हो रखी थी। चलो
1: तो सभी स्वस्थ प्रसन्न रहे। हमें भी याद है कि आपका
0: जी
1: फोन काफी दिनों के बाद आया
0: जी
1: है,
0: सर, जी सर, जी सर,
1: तो
0: बहुत
1: अब
0: बढ़िया लगा सर इतने दिन बाद बात करके आपसे।
1: हमें भी अब गीत आप तक पहुंच रहा है। हकीकत फिल्म से रफी साहब की आवाज, कैफी आजमी के बोल, मदन मोहन का संगीत। शुक्रिया सुकांत
0: जी
1: जी।
0: धन्यवाद सर।

0: जी कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश।
1: हेलो सर नमस्कार।
0: नमस्ते, तो ये डायल किया गया नंबर व्यस्त कहाँ पर है?
1: सर आपको ही लगा रहा है सर।
0: तो स्वागत है, बहुत बढ़िया। नाम क्या है आपका?
1: जी सर गिराम हीरापुर जिला सीहोर मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ सर जी।
0: भगवान सिंह परमार जी, बहुत स्वागत है आपका। आप भी बहुत सधे हुए अंदाज में बोलते हैं।
1: जी जी सर।
0: हाँ, ये तो है कि जैसे हम लोग बोलचाल में आमतौर पे बात करते हैं, कुछ भी चलते फिरते घर परिवार में, और जब माइक्रोफोन पे आते हैं तो थोड़ा सा अटेंटिव तो हो जाना चाहिए ताकि जब श्रोता सुने तो बात उन्हें अच्छी सुनाई दे।
1: जी जी सर।
0: तो आपके यहाँ मौसम कैसा है? अब तो बारिश बिल्कुल मानसून सबाब पर है।
1: जी हाँ सर, एक दो दिन में हमारे इधर बारिश अच्छी होने वाली है, वैज्ञानिक बता रहे हैं।
0: और वैज्ञानिकों के अध्ययन पर यकीन हमें करना चाहिए।
1: जी जी सर,
0: जी
1: बिल्कुल।
0: बिल्कुल। और आजकल बहुत सारे जो सैटेलाइट वगैरह हैं जो मौसम का अध्ययन करते हैं, तो बहुत सी जानकारियां सही और दुरुस्त भी आ रही हैं।
1: जी जी सर बिल्कुल।
0: तो उसी के हिसाब से चलना चाहिए। आप किस हिसाब से चल रहे हैं? कार्यक्रम अच्छे लग रहे हैं आपको?
1: सर कार्यक्रम तो हमें वाराणसी के बहुत अच्छे लगते हैं सर, और हमेशा हम सुनते रहते हैं सर। एक कार्यक्रम आपने व्हाट्सएप पर आधारित किया है, बहुत दिन से चल रहा है सर, वो भी हमको अच्छा लगता है सर।
0: बहुत बढ़िया। तो सभी कार्यक्रमों में भाग लीजिए। श्रोताओं से हम तो कहते हैं कि हमारे कार्यक्रमों के बारे में आपकी जो राय है, इस प्रोग्राम में तो हम लोग बातें करते हैं, लेकिन आप तफसील से लिख करके भी हमें भेज सकते हैं पत्र के लिए, धन्यवाद कार्यक्रम में।
1: जी जी सर बिल्कुल।
0: और कौन से गाने की आज फरमाइश है आपकी?
1: सर फिल्म का नाम है आई मिलन की रात, और गाने के बोल हैं देखे अपनी किस्मत में कांटा है के फूल है।
0: हाँ, आनंद मिलिंद का संगीत, समीर के बोल हैं, और बड़ा फिलॉसफी दर्शन वाला गाना है।
1: जी सर, यही अंदाज हमको आपका बहुत पसंद आता है सर जी। जब आप हम आपको फिल्म का नाम बताते हैं, गाने के बोल बताते हैं, आप बिना कंप्यूटर में देखे हुए उसका सब डेटा
0: हाँ,
1: बता देते हैं सर।
0: बहुत
1: ये
0: सारी
1: अंदाज
0: चीजें
1: आपका
0: हैं कि
1: सबसे
0: ये
1: ज्यादा
0: सारे
1: है।
0: गाने जैसे आप लोगों को पसंद है, हम लोगों ने भी इन गाने के साथ वर्षों की यात्रा तय की है। तो गीतों के बोल और हर फिल्म में कौन सा गीत क्या कहता है, ये चीजें हैं। तो ये थोड़ा सा दार्शनिक अंदाज का गीत है।
1: जी जी सर।
0: और मोहम्मद अजीज, अनुराधा पौडवाल की आवाजें, गीत आप तक पहुंच रहा है। बहुत शुक्रिया, नमस्कार।

0: जी कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश है।
1: अरुण सर
0: देखिए थोड़ी सी नेटवर्क की समस्या जब आती है तो आवाज यूं कटने लगती है, हमें भी बहुत तकलीफ होती है, मुश्किल से श्रोताओं के फोन लगते हैं। क्या नाम है आपका?
1: राकेश कंगोत्रा।
0: राकेश कंगोत्रा जी, अच्छा आप तो ऊंचाई पर हैं। तो इसलिए थोड़ी सी आवाज, और मौसम ऐसा है कि नेटवर्क की समस्या हर इलाके में है इस समय।
1: नेटवर्क का प्रॉब्लम है सर, थोड़ा मौसम खराब ही है।
0: जी, और आपका जिला कौन सा पड़ता है? उधमपुर।
1: उधमपुर विलेज पंचायत।
0: पंचारी है ये। जी, और आज कुछ या तो व्यस्तता है या सुस्त उदास लग रहे हैं आप।
1: नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, मैंने
0: अच्छा
1: बना
0: मैडम
1: था।
0: मैडम बगल में हैं आपके इसलिए लग रहा है।
1: जी।
0: तो डरते तो नहीं है ना?
1: नहीं डरते तो नहीं है।
0: हाँ, वैसे अब ये चीज अब बाद में आप समझिएगा कि डर नहीं लगता है, इसको समझ के क्या होगा।
1: ठीक है सर।
0: और अभी अखरोट वगैरह की क्या स्थिति है? ये कच्चे भी रहते होंगे तो कैसे दिखते हैं? हम लोगों ने तो कच्चा अखरोट देखा ही नहीं है।
1: जिस दिन मैं अच्छे करूंगा ना आपको, उस दिन उसका पिक भेजूंगा।
0: जी, अच्छा वो बिल्कुल हरा हरा दिखता होगा।
1: हाँ वो तो दिखता है ना आपको। हाँ ये वो मंगलवार को भेजूंगा।
0: हाँ, एक दिन आपने कुछ फूलों के फोटो भेजे थे।
1: हाँ भेजे थे।
0: हाँ, तो वो तो गेंदे के फूल थे।
1: नहीं वो ऐसा ही था
0: अच्छा, वहीं आप बगीचे
1: ऊपर।
0: में। तरह
1: हाँ
0: तरह के
1: ऊपर
0: वहाँ
1: से फूल
0: पहाड़ी
1: गिरने का
0: फूल
1: डूबा
0: बहुत
1: ऊपर
0: तरह
1: से
0: के होते हैं, पहाड़ों के अलग किस्म के फूल होते हैं।
1: बहुत किस्म
0: तो
1: के फूल।
0: अभी मौसम कैसा है, और जैसे पहाड़ी इलाकों में चलने फिरने आने जाने स्कूल कॉलेज या बाजार कैसा उसमें लगता है?
1: अब सर थोड़ी थोड़ी बारिश लगी रहती है।
0: और वहां पर आमतौर पे जैसे ये सड़कें हैं, मैदानी जैसा इलाका भी है या फिर सिर्फ पैदल ही आना जाना पड़ता है?
1: नहीं सर सबके तो हैं, लेकिन की कंडीशन अच्छी नहीं है सर।
0: और इसलिए बहुत स्कूटर मोटरसाइकिल पहाड़ी इलाकों के लिए उतने मुफीद नहीं है।
1: स्कूटर मोटरसाइकिल तो फिर भी चल जाते हैं, लेकिन गाड़ी के लिए रूल नहीं होता है सर उसका।
0: और प्रोग्राम अच्छे लग रहे हैं आज, कौन से गाने की फरमाइश है आपकी?
1: आज सर अभी तो सोचा नहीं था, तो आप कोई इंडियन फिल्म का बता देना, कोई भी गाना।
0: कौन सा?
1: इंडियन फिल्म।
0: इंडियन फिल्म, अच्छा फिल्म का नाम इंडियन है। इंडियन आनंद राज आनंद का संगीत है। दीवाने जाना मैंने रब दी कसम वतन
1: ये वाला
0: वालों। ये प्यार।
1: ये वाला पहले वाला जो बोला।
0: दीवाने जाना, अच्छा पहला वाला जो शान और अलका याग्निक ने गाया है।
1: जी।
0: ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, आनंद बख्शी के बोल हैं, आनंद राज आनंद का संगीत। नमस्कार,
1: और सर
0: शुक्रिया।
1: आप बताओ,
0: और सब हम अच्छे से हैं, आपको कुछ नाम लेने हैं तो ले लीजिए परिवार वालों के।
1: नाम सर आप जानते हैं, राघव रिवांश और निकिता जी और माता पिता जी।
0: बिल्कुल, सभी को सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का गीत, फिल्म है इंडियन। बहुत शुक्रिया,
1: कर लो
0: नमस्कार।
1: बात सर।
0: जी
2: हेलो
0: जी नमस्ते, निकिता जी स्वागत है आपका।
2: नमस्ते सर।
0: तो अभी तो आराम ही आराम होगा, बारिश के मौसम में बहुत बाहर ज्यादा नहीं निकलना होता है।
2: हाँ इतनी बारिश नहीं आ रही, पर वैसे थोड़ी थोड़ी आराम।
0: अच्छा वो तो थोड़ा हरियाणा की तरह से इस तरह से बात करते हैं, लेकिन आपकी आवाज में वो पहाड़ी जो टोन है वो पता चल जाती
2: हाँ
0: है ना? अच्छा
2: तो आज
0: दोनों।
2: तो वो भी है ना पूर्णमासी, गुरु पूर्णिमा, तो हमने वो भी व्रत रखा होता है।
0: जी, आपके यहाँ गुरु पूर्णिमा पर क्या क्या होता है खास तौर से?
2: खास कुछ नहीं होता है, सिर्फ वही मत रखते हैं इसका कि
0: अच्छा,
2: बाहर में सब
0: व्रत तो
2: होता है।
0: आपने रखा है ना?
2: हाँ
0: हाँ, तो आवाज तो राकेश जी की सुस्त लग रही थी हमें। अच्छा उन्होंने भी रखा है, यानी उनके पे व्रत का
2: इनकी हालत थोड़ी खराब हो जाती है, खाने को बहुत भूख होती है इनको।
0: यही हमने पकड़ लिया, हमें लगा कि आज ये थोड़ी सी आवाज में वो वाली बात नहीं आ रही हर बार की तरह से।
2: हाँ, मैंने तो वैसे भी पूरे जाते बस हर बात रखती हूँ, इनको नहीं रख सकते ना, तभी थोड़ी देर।
0: जी, और बच्चे पढ़ लिख रहे हैं अच्छी तरह से आपके
2: हाँ
0: मार्गदर्शन में,
2: बच्चे की आज इसमें
0: तो उसका श्रेय आपको ही जाता है कि इनको भी कुछ जाता है?
2: नहीं, इनको भी रहता है।
0: दोनों को बराबर। तो अब हम
2: हाँ
0: दोनों को गीत सुनवा रहे हैं, फिल्म
2: हाँ
0: है, गीत सुनते हैं। अनीता जी, राकेश जी, आपकी फरमाइश पर बहुत शुक्रिया, नमस्कार।

0: कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश।
1: अरुण सर को प्यार भरा नमस्कार।
0: प्यार भरा नमस्कार, एक आप ही हैं जिसका नंबर 52 पे लगा है बड़ी मुश्किल से।
1: तो मैं पहले गीत बता देता हूँ।
0: जी जी जी बिल्कुल,
1: थानेदार मूवी का गीत रहेगा। संजय दत्त का जन्मदिन है आज।

0: लेकिन जब प्रसारित होगा तो वो नहीं रहेगा। बहरहाल चलिए, संजय दत्त को जन्मदिन की आपकी और हमारी ओर से शुभकामनाएं। हाँ,
1: तमा तमा वाला गाना है ना,
0: क्या बात है।
1: सुपर हिट गाना है अपने जमाने का।
0: हाँ, ये तो है कि एक वक्त में ये तम्मा तम्मा लोगे, हालांकि एक विदेशी गीत है, वहां की तर्ज पर ये पूरा हूबहू बप्पी लाहिरी ने इसे लिया था। अनुराधा पौडवाल की भी आवाज है बप्पी लाहिरी के साथ, हिंदी वर्ग के बोल हैं, और 1990 की फिल्म है, याद है हमें इस फिल्म के बारे में। आप तो
1: बिल्कुल,
0: छोटे रहे होंगे।
1: उस वक्त हम पैदा भी नहीं हुए थे
0: हाँ
1: जब
0: हाँ
1: ये
0: लेकिन ये
1: फिल्म आया था।
0: 1990 वो है कि जब थोड़ा सा हम लोग रेडियो में आने लगे थे, और हमारे
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: ग्रेजुएशन का समय था ये।
1: हाँ, तो अभी भी गाना वो मुझे अच्छा लगता है।
0: जी जी बिल्कुल, आपको गाना अच्छा लगना ही चाहिए इसी तरह का। तभी तो आपका नाम
1: जी,
0: मोहसिन अंसारी है।
1: मैं अपने आवाज में अपना तारुफ करा देता हूँ।
0: जी बिल्कुल।
1: कोटवा बनारस से मोहसिन अंसारी बोल रहा हूँ।
0: और
1: कार्यक्रम सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है।
0: जी, और कार्यक्रम तो अच्छा लगना चाहिए। दोस्तों से यारी दोस्ती कैसी चल रही है आपकी, और कहाँ तो आप जाने वाले थे?
1: हाँ, अभी तो जाने वाले थे हैं।
0: अभी लेकिन बारिश के चलते मुलतवी कर दिए हैं। वहां पर तो मुंबई में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है आजकल।
1: हाँ, मुंबई में तो रोजाना लग रहा है बारिश हो रही है, क्योंकि
0: हाँ, और देखिए वो
1: वहां
0: जो
1: के लोगों
0: इलाका
1: से कुछ
0: है थोड़ा
1: लोगों
0: सा, मुंबई में बारिश इसलिए जरूरी है और ज्यादा होनी भी चाहिए, क्योंकि जो साल भर वहाँ का जो पीने का पानी है शहरी इलाकों में, नगरीय इलाकों में, वो बारिश के पानी से भरने वाली झीलों से ही चलता है, क्योंकि वहाँ ग्राउंड वाटर तो खारा है समुद्र के कारण।
1: अभी 1 महीने पहले काफी लोगों को बहुत झेलना पड़ा था पानी को लेकर,
0: वो तो वहां की बारिश पे फिल्में तक बन चुकी हैं। जैसे एक
1: वहां
0: बार
1: की
0: ऐसी
1: फिल्में पर।
0: ऐतिहासिक बारिश हुई थी कि

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतांजलि मेरे यानी पूजा के साथ। बारिश का वो नगमा जो दिल के तारों को चुपके से छेड़ जाता है। दोस्तों, बारिश के मौसम में एक अजीब सा जादू होता है। जब बाहर रिमझिम बूंदे गिरती हैं,

तो अंदर दिल में इंतजार का वो मीठा मीठा दर्द जाग उठता है, वो इंतजार जो कभी कभी अधूरा होता है पर फिर भी कितना खूबसूरत होता है ना। किसी का छत पर जाकर रास्तों को तकना, बारिश की बूंदों में किसी के कदमों की आहट ढूंढना, और जब हवा का कोई झोंका चेहरे को छुए तो ऐसा लगना जैसे वही पास आकर कुछ कह गया हो। यह बारिश का मौसम और तुम्हारी यादों का साया, भीगता दिल है मेरा पर सूखा है साया, हर बूंद में गूंजती है बस तुम्हारी ही बातें, हर बूंद में गूंजती है बस तुम्हारी ही बातें, इस इंतजार के दर्द में भी क्या खूब मजा आया। अगर आज आप भी खिड़की के पास बैठकर किसी का इंतजार कर रहे हैं या बारिश की हर बूंद में किसी की सूरत ढूंढ रहे हैं तो ये अगला गीत सिर्फ आपके लिए है जो सीधे आपके दिल के तार से जुड़ने वाला है।

क्या बात है, क्या नगमा था। सुन रहे हैं आप कार्यक्रम गीतांजलि। वैसे दोस्तों, एक बात तो माननी पड़ेगी, हमारी भारतीय संगीत और सिनेमा ने बारिश को जिस तरह से गीतों के रूप में उतारा है, उसकी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। एक पुराना छाता और उसमें दो प्रेमियों का छुपना, कागज की नाव और बचपन की गलियां, या फिर भींगते हुए रास्ते पर हाथ थाम कर चलना। बारिश के गीतों का अपना ही एक अलग मजा है। ये वो नगमे हैं जो बूढ़े से बूढ़े इंसान को भी दोबारा जवान कर देते हैं और पत्थर दिल इंसान के अंदर भी मोहब्बत का दरिया बहा देते हैं। जब हम इन गानों को सुनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हर गीत हमारी ही कहानी बयां कर रहा हो। हर सुर में एक एहसास है, हर ताल में एक धड़कन है। आइए इसी मिठास को थोड़ा और बढ़ाते हैं और सुनते हैं एक ऐसा सॉन्ग जो मानसून की इस रूहानी शाम को यादगार बना देगा।

दोस्तों, घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि नगमों और एहसासों के इस खूबसूरत कारवां यानी गीतांजलि के आज के इस सफर को यहीं पर ठहराव देना होगा। लेकिन याद रखिएगा, बारिश चाहे थम जाए पर प्यार और यादों की फुहारें कभी कम नहीं होनी चाहिए। अगर आज आपकी भी किसी से अनबन हुई है तो इस बारिश के बहाने से ही सही, एक कॉल कर लीजिए, क्योंकि मौसम बदलने में देर नहीं लगती और अपनों को मनाने में कभी देर नहीं करनी चाहिए। चलते चलते बस यही दुआ है, बरसती रहे यह बारिश आपके जीवन में खुशियां बनकर, हर बूंद लाए आपके लिए मोहब्बत का नया सवेरा। ख्याल रखिए अपना, अपनों का, और इस खूबसूरत मौसम का मजा लेते रहिए। फिर होगी मुलाकात कार्यक्रम गीतांजलि के किसी अगले अंक में, कुछ नए नगमों और कुछ अनदेखे एहसासों के साथ। तब तक के लिए अपनी रेडियो दोस्त पूजा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतांजलि। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स, TRM 1233 किलोहर्ट्स, DTH और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अब संपन्न होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा। शाम 5 बजे अपनी सायंकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्स, DRM, DTH और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय शाम के 5 बज रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सायंकालीन सभा। सभा के प्रारंभ में आइए सुनते हैं नन्हे मुन्ने बच्चों का कार्यक्रम नन्ही दुनिया।

0: नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे साथियों, जय हिंद। जय हिंद सुधा दीदी।
1: जय हिंद सुरेखा दीदी। जय हिंद नन्हे मुन्ने बच्चों।
0: दीदी, हमारे जीवन में ना

0: बहुत सी छोटी छोटी आदतें ऐसी होती हैं जिन्हें अगर हम बचपन से ही अपना लें तो आगे जाकर के बहुत फायदा होता है, और बचपन में भी उसका बहुत फायदा होता है। पूछे कैसे?
1: कैसे?
0: पता है, जब बच्चों आप कहीं जाते हैं ना, तो आपको जरूर, चाहे नानी के यहाँ जाइए, दादी के यहाँ जाइए, या कहीं भी जाइए, या आपका बर्थडे हो या कोई स्पेशल ओकेजन हो, तो हर जो रिलेशन रिश्तेदार होते हैं ना, बड़े लोग, वो आपको कुछ ना कुछ पैसे जरूर देते हैं गिफ्ट के तौर पे।
1: समझ रही हूं
0: हाँ, समझ
1: मैं
0: गई ना। तो अगर उन्हें बचा कर रखा जाए तो कितना अच्छा रहेगा।
1: बिल्कुल, क्योंकि यही जो छोटे छोटे बचत की आदतें होती है ना बच्चों, ये आगे चलकर बहुत फायदा होता है इसका, है ना। और आप कभी अपने पसंद की चीजें खरीद सकते हैं या फिर उन्हें बैंक में जमा कर सकते हैं,
0: बिल्कुल सही है।
1: है ना।
0: और कई बार ऐसा भी होता होगा बच्चों आपके साथ, जैसे आपका जितना भी कुछ फंक्शन या ओकेजन होते हैं, तो आपके बड़े लोग जो पैसा देते हैं, तो वो ये भी कहते होंगे ना कि ठीक है, हम तुम्हारे लिए बैंक में एक अकाउंट खोल दे रहे हैं, तुम्हारा जो पैसा है तुम उसी में जमा करो। तो जब आप 8 साल, 10 साल, 12 साल के हो जाएंगे, तो वो एक अच्छी खासी रकम दिखती है, तो कितना अच्छा लगता है। लेकिन ये आदत जो है ना, वो बचपन से ही होनी चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि पैसा मिलता है तो मन कुलबुलाने लगता है। बच्चों, पता है, ऐसा हमारे साथ भी होता है। पैसा जब हाथ में आता है तो लगता है ये भी खरीद लो, वो भी खरीद लो, और जब पैसा खत्म हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता फिर।
1: तब तो मांगना पड़ता है।
0: तो
1: अगर
0: इसीलिए
1: अगर कोई मतलब कोई पेन ही अच्छी लग रही हो, या फिर कोई नोटबुक है, या फिर जब हमारे बच्चे बहुत छोटे दीदी, तो चॉकलेट का तो लालच हमेशा लगा रहता है कि मैं चॉकलेट तो जरूर खाऊंगा, है ना। तो यही जो छोटी छोटी चीजें होती हैं बच्चों, इसी में पैसा चला जाता है और हमारी बचत भी नहीं हो पाती। तो बहुत जरूरी है कि आप बचत करें,
0: और बचत के फायदे भी बहुत होते हैं,
1: बहुत होते
0: इसीलिए
1: हैं।
0: तो हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि छोटी छोटी बचत बहुत ही अनिवार्य है और आवश्यक है। अच्छा दीदी, बात जब बचत की हो रही हो, तो गीत की भी तो बात होनी चाहिए ना।
1: हमारे बच्चे इसी इंतजार में बैठे हैं कि दीदी गीत कब सुनाएंगी।
0: क्योंकि अच्छी बातों के साथ कुछ एंटरटेनमेंट भी होना बहुत आवश्यक है। तो चलिए बच्चों, आपको सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत।
2: अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बम बम बम ब्लाडी।

0: गीत तो बहुत ही प्यारा था और आनंद भी बहुत आ गया,
1: मैं देख रही थी आप बहुत आनंदित हो रही है, बहुत झूम रही थी आप। मुझे लगता है कि ये गीत आपको भी बहुत पसंद है।
0: बहुत पसंद है दीदी। और दीदी, लेकिन यहाँ हमारे साथ रोचक दीदी भी है जो कि सोच रही है कि मेरा नंबर कब आएगा। मैं अपने पिटारे से कब ज्ञान की बातें निकालूंगी।
1: तो चलिए भाई, हम रोड़ा नहीं बनेंगे रोचक दीदी और अपने नन्हे साथियों के बीच में। तो चलिए आज देखते हैं रोचक दीदी अपने पिटारे में क्या लेकर आई हैं।
2: बच्चों नमस्ते, आ गई है रोचक दीदी लेकर फिर एक बार जानकारियों से भरा अपना पिटारा। तो आज क्या है इस पिटारे में बताइए। अरे आप कैसे बताएंगे, वो तो मैं बताऊंगी। वैसे बच्चों, जब हम बैक्टीरिया की बात करते हैं तो मन में सबसे पहला ख्याल यही आता है कि ओ बैक्टीरिया तो खराब होते हैं, हमें बीमार करते हैं, है ना? लेकिन मजेदार बात बताऊं, बैक्टीरिया सिर्फ बैड नहीं होते, गुड भी होते हैं। बिल्कुल ठीक सुना आपने। जैसे हमारा इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा प्रणाली हमें बीमारियों से बचाती है, उसी तरह हमारे शरीर में गुड और बैड बैक्टीरिया पाए जाते हैं। बैड बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमें बीमार कर सकते हैं, लेकिन बच्चों गुड बैक्टीरियाज हमें कई बीमारियों से बचाने का काम करते हैं। गुड बैक्टीरिया, जिन्हें हम प्रोबायोटिक्स भी कहते हैं, आपने बिल्कुल सुना होगा इसे। और ये हमारे पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम में पाए जाते हैं। पता है बच्चों, इन गुड बैक्टीरियाज के कारण

0: कारण हमारा जो पाचन तंत्र है वो अच्छे से काम करता है और हम जो भी खाते हैं वो सही तरीके से पचता है और हमारे शरीर को मिलती है ताकत। साथ ही एक बात और बताऊं, ये जो गुड बैक्टीरिया हैं, वो हमारे इम्यून सिस्टम को बनाते हैं मजबूत, जिससे हम बीमारियों से बचे रहें। और साथ ही गुड बैक्टीरिया जो होते हैं वो शरीर में बैड बैक्टीरिया को बढ़ने से भी रोकते हैं। तो बच्चों, हम अपने शरीर में गुड बैक्टीरिया को बढ़ा सकते हैं। कैसे, मैं बताती हूँ। भाई, पेट को स्वस्थ रखना है तो हमें कुछ चीजों का सेवन नियमित रूप से करना होगा, जैसे दही, पनीर, छाछ, मट्ठा या फिर कांजी। और हाँ, इडली या डोसा, ये फर्मेंटेड चीजें हैं ना, तो ये हमारे पेट को रखती हैं हेल्दी। तो अब मम्मी जब भी आपको ये चीजें खाने या पीने के लिए दे, तो भाई मुंह मत बनाइएगा, चुपचाप खाइएगा, ये सोचकर कि गुड बैक्टीरियाज बढ़ेंगे और हमें रखेंगे स्ट्रांग। फिलहाल बच्चों, मेरे पेट में बड़ा दर्द हो रहा है तो मैं जा रही हूँ दही खाने। साथ ही चलते चलते जल्दी से एक बात और बता दूं आपको कि ज्यादा शक्कर, मीठा और फास्ट फूड खाने से बचें। रोचक दीदी अगले सप्ताह फिर आएगी अपनी जानकारियों से भरा पिटारा लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।
1: रोचक दीदी ने तो बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। देखिए दीदी, बरसात का समय है और ऐसे में घर के आसपास या छतों पर पानी इकट्ठा हो जा रहा है, जिसकी वजह से मच्छर वगैरह होते हैं, तो बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं। हाँ, तो बहुत जरूरी है कि साफ सफाई करना
2: बहुत आवश्यक है।
1: बहुत आवश्यक,
2: बिल्कुल आवश्यक है, क्योंकि इस समय समझ में नहीं आता, मौसम थोड़ा ठंडा सा होता है तो लगता है कि चलो, कई बार ऐसा होता है कि एक आधे दिन बच्चे नहाते भी नहीं है, और कई बार ऐसा भी होता है कि पसीना तो इस समय बेइंतहा होता है, और कपड़ा भी अगर एक से दो दिन पहन लिया जाए तो स्मेल आने लगती है, और उसमें ना कई बार इन्फेक्शन सा हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन सा हो जाता है। तो इन सब चीजों से अगर इस समय बचना है, क्योंकि इस समय ये सारी चीजें बहुत तेज फैलती हैं, मौसम बदल रहा है, चेंज हो रहा है, अगर इन सारी परेशानियों से बचना है कि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, किसी भी प्रकार का स्किन इन्फेक्शन ना हो, किसी भी प्रकार का आईज में कोई इन्फेक्शन ना हो। इस समय मैंने देखा है, देखिए बहुत से लोगों को आईज में इन्फेक्शन हो जाएगा, कुछ लोगों को स्किन में इन्फेक्शन हो जाता है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए बच्चों साफ सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखें, और अपने ही साथ साथ अपने आस पड़ोस की भी साफ सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखें।
1: भाई दीदी, देखिए ध्यान तो हमें बहुत सारी चीजों का रखना है, और अभी देखिए आप ध्यान रखिए कि घड़ी क्या कह रही है। घड़ी कह रही है कि अब बस कीजिए, टाइम तो हो गया है।
2: तो चलिए, आपके आदेश का बिल्कुल सुखता दीदी पालन होगा, इसलिए बच्चों अब हम आपसे लेते हैं विदा, क्योंकि हमें फिर तो आना है ना आपसे बहुत सारी बातें करने के लिए। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।
1: जय हिंद बच्चों।

0: अभी आप सुन रहे थे बच्चों का कार्यक्रम नन्ही दुनिया। प्रसारण आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से हो रहा था। शाम के 5:15 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम युवाणी, लेकिन उससे पहले ये जरूरी संदेश।
1: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में, अरे वाह।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: सुनो ना।
5: हाँ?
4: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
5: तो रोका किसने है? हाँ?
4: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
5: मुझसे?
4: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
5: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
4: पर उससे मेरा क्या फायदा?
5: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
4: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
5: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो,
6: 054-222

0: 2 7 6 5 8
1: 0542227658
2: लो अभी फोन लगाता हूँ
1: 0542227658
3: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम

0: ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए।
1: कबीरदास जी कहते हैं कि मधुर, विनम्र और सम्मानपूर्ण वाणी से प्रेम, सद्भाव और आपसी विश्वास बढ़ता है। यही अच्छे समाज और सशक्त राष्ट्र के निर्माण का आधार है।
0: और देखिए ना, आपसी विश्वास और प्रेम से घड़ी में 5:15 होते ही कैसे हम सब हाजिर हो जाते हैं और एक कहने और सुनने का सफर शुरू भी हो जाता है।
1: बिल्कुल, स्वागत है आप सभी दोस्तों का आज के युवानी कार्यक्रम में, जहां आज आपके साथ हैं ये दो रेडियो साथी
0: मैं अभिषेक,
1: और मैं शिवांगी। आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, प्रखर राष्ट्रवादी, समाज सेवी और हिंदी भाषा के सशक्त समर्थक राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन की। राजर्षि जी की जयंती प्रत्येक वर्ष 1 अगस्त को मनाई जाती है। उनका जन्म 1 अगस्त 1882 को प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में हुआ था।
1: दोस्तों, उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र की सेवा, भारतीय संस्कृति के संरक्षण और हिंदी भाषा के सम्मान के लिए समर्पित कर दिया था। और टंडन जी का सबसे बड़ा योगदान हिंदी भाषा के प्रति उनका समर्पण ही था। वे चाहते थे कि हिंदी भाषा भारत की राजभाषा बने और देश के विभिन्न क्षेत्रों के बीच संपर्क का प्रभावी माध्यम बने।
0: संविधान निर्माण के समय उन्होंने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिलाने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए। उनके इसी योगदान के कारण उन्हें हिंदी का महान संरक्षण माना जाता है।
1: और उनकी सादगी, ईमानदारी, त्याग और राष्ट्र प्रेम के कारण उन्हें राजाश्री की उपाधि से सम्मानित भी किया गया है। वर्ष 1961 में भारत सरकार ने उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया। उनका जीवन सत्य, सेवा और राष्ट्रीय एकता का उत्कृष्ट उदाहरण है।
0: पुरुषोत्तम दास टंडन जयंती हमें उनके आदर्शों को अपनाने, राष्ट्रभाषा हिंदी के सम्मान को बढ़ाने तथा देश की एकता और अखंडता के लिए कार्य करने की प्रेरणा देती है। राष्ट्र उनके अमूल्य योगदान को सदैव सम्मान के साथ स्मरण करता रहेगा।
1: और दोस्तों, बात करते हैं देश के महान स्वतंत्रता सेनानी की, तो उनमें से एक नाम लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी का भी है, जिनकी आज पुण्यतिथि है।
0: बिल्कुल शिवांगी, लोकमान्य तिलक का निधन 1 अगस्त 1920 को हुआ था। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी और जन जन में राष्ट्र प्रेम की भावना का संचार किया। उनका प्रसिद्ध उद्घोष था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, आज भी देशवासियों को प्रेरित करता रहता है।
1: बिल्कुल, तिलक ने शिक्षा के प्रसार, सामाजिक जागरूकता और राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उन्होंने सार्वजनिक गणेश उत्सव और शिवाजी जयंती के आयोजन को प्रभावी माध्यम बनाया था।
0: लोकमान्य तिलक के विचार और आदर्श आज भी राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा बने हुए हैं। और जानती हो शिवांगी, उनकी पुण्यतिथि पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है।
1: वाह अभिषेक, ये बात तो बिल्कुल सही कहा तुमने। तिलक जी का जीवन हमें सिखाता भी है कि दृढ़ संकल्प, साहस और निरंतर प्रयास से हर कठिन लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। और साहस की बात हो ही रही है, तो आज एक और महत्वपूर्ण अवसर भी याद आ गया।
0: राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस। बिल्कुल, राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस हर वर्ष साहस, मेहनत और आत्मविश्वास का संदेश देने के लिए मनाया जाता है। पर्वतारोहण यानी ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ना एक रोमांचक और चुनौतीपूर्ण गतिविधि है, जो न केवल शरीर को मजबूत बनाती है, बल्कि मन में आत्मविश्वास और हिम्मत भी बढ़ाती है।
1: और दोस्तों, भारत में हिमालय जैसे कई ऊंचे पर्वत हैं जो दुनिया भर के पर्वतारोहियों को आकर्षित करते हैं।

0: कई भारतीय पर्वतारोहियों ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों पर पहुंचकर देश का नाम भी रोशन किया है। और जानते हो अभिषेक, पर्वतों की सुंदरता और स्वच्छता बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी भी है। पर्वतारोहण करते समय पर्यावरण की रक्षा करना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल शिवांगी, सही कह रही हो। राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस हमें सिखाता है कि मेहनत, लगन और साहस से हर कठिन लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। आइए इसी अवसर पर हम प्रकृति से प्रेम करें और अपने जीवन में साहस और आत्मविश्वास को अपनाएं।
0: दोस्तों, हमारा ये सेगमेंट आगे बढ़ता है और हम आ जाते हैं आज के खास सेगमेंट यूथ जंक्शन में, जहाँ पे हमने किससे क्या बातें की वो जानने के लिए आइए सुनते हैं।
1: दोस्तों, आपको पता है आपने डायल किया है 05-42-222-1052, और मैं हूँ आपका रेडियो साथी अभिषेक, और हमारे साथ हैं
0: शिवांगी।
2: क्या हुआ,
1: इंतजार खत्म हुआ।
3: सलाम सलाम,
0: और शुरू हो गया है आपका पसंदीदा सेगमेंट यूथ जंक्शन।
4: नमस्कार, यूथ जंक्शन में आपका स्वागत है। आपका शुभ नाम?
5: जी मैं महिमा श्रीवास्तव हूँ। कहाँ से आया? वाराणसी, बनारस।
4: जी, बारिश सबका एक बहुत पसंदीदा समय होता है, तो बारिश से जुड़ी आपके लिए क्या सबसे ज़्यादा पसंद है?
5: इफ़ आई एम सेइंग ट्रूली, सो बारिश मुझे बहुत पसंद है, ठीक है, क्योंकि बारिश का वेट ऐसा नहीं है कि वो जो क्या बोलते हैं बूंद बूंद जो बारिश होती है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं झीसी, ठीक है, वो तो नहीं पसंद है, लेकिन हाँ वो जो तेज़ बारिश होती है, तो मैं जैसे जब मैं सड़कों पे जा रही होती चाहे किसी भी पर्पज़ से, तो मैं मेरी इच्छा रहती है कि बारिश हो जाए। हाँ, तो मुझे अच्छा लगता है काफ़ी ज़्यादा भीगना है। इवन मेरा सबसे अच्छा काम है क्या है कि जब भी बारिश होती है और अगर मैं घर पर हूँ, तो एक गाना है गुरु मूवी का, नारे नारे, तो मैं उस पर ज़रूर नाचती हूँ, नन्न नारे नारे।
4: बारिश के समय में स्कूल का सबसे बहुत पसंदीदा समय रहता है और वो लोग बहुत याद करते, तो आपकी कुछ यादें स्कूल से और बारिश की?
5: ऑफ कोर्स बहुत हैं, बचपन से ही जो है कि क्योंकि मोस्टली जुलाई में न्यू सेशन होता था, तो हमेशा स्कूल वगैरह खुल जाते थे। बट हाँ, सबसे फेवरेट समय मेरा आर्य महिला टाइम का है। जब मैं 11th 12th में थी, तो मैं आर्य महिला में थी, तो आर्य महिला हमारे घर से थोड़ा दूर था, तो वो जो रास्ते की दूरी थी वो इतनी अधिक थी, और पहले हमारे रोड ऐसे भर जाते थे कहीं कहीं पे, तो मज़ा आता था उसमें। कभी कभी तो हम लोग उसमें नाव भी तैराते हुए आते थे बना बना करके, कि मज़ा आ रहा है ऐसे टाइप।
4: जी बिल्कुल। इसी के साथ बारिश के साथ जुड़ी कोई ऐसी शरारत जिसे आज भी याद करके आपको हंसी आ जाती है?
5: हाँ, मैंने अभी बताया ना आपको कि हम लोग जो है कि उसमें नाव तैराते थे। इवन जब हम लोग घर पे होते थे, तो हमारे घर में भी एक ऐसे छोटा सा स्पेस है नल के पास में, वहाँ पानी भर जाता था, तो हम उसमें छोटा छोटा नाव बना करके तैराते थे। इवन जो छत पे हमारे पानी भर जाता था, तो हम लोग पाइप के पास कपड़ा लगा करके रुक देते थे, ताकि वो टैंक जैसा पूरा छत भर पे पानी जम जाता था, तो हम लोग उसमें तैरते थे छोटे छोटे में।
4: जी बिल्कुल। क्या आपने कभी बारिश के पानी में कागज की नाव चलाई, उससे जुड़ी कोई, जैसे कि आपने अभी बताया कि आप स्कूल के समय में आते वक्त वो कर चुके हैं, क्या बचपन में बारिश में भीगने की इजाज़त थी या डांट ज़्यादा मिलती थी?
5: आप दोनों कह सकते हैं, इजाज़त कौन देता है? पेरेंट्स तो कभी भी आपको वो नहीं कहेंगे कि नहीं आप जाइए, क्योंकि उनका तो सबसे बड़ा कंसर्न यही रहता था कि तबीयत खराब हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी, पहली बारिश में ना भीगो, लेकिन किसको ज़्यादा फर्क पड़ता था। हाँ, ऐसा कई बार हुआ भी है कि बारिश जैसे हमें लग रहा है कि तेज़ हो रही है, लेकिन हम जैसे भीगने गए बारिश बंद हो जाती थी, तो तबीयत खराब भी हुई है, लेकिन उस डांट का कोई खासा फर्क नहीं पड़ता था, हम लोग भीगने जाते ही जाते थे। और जब कॉलेजेस में हो गए, एडमिशन ले लिया, तो कॉलेज से तो आते टाइम में बहुत सारे बार भीग जाते थे, तो उसमें अब डांट क्या करेंगे लोग।
4: जी, तो कभी आप स्कूल से आ रही होंगी या फिर अपने यूनिवर्सिटी से आती होंगी, तो बारिश में भीगने के बाद जो चाय और पकौड़े के साथ सर्दी की जो छींके आती थी, वो कैसा रहता था?
5: एक शब्द में कहेंगे शानदार। इवन कॉलेज से आते वक्त हम लोग जब जैसे रास्ते में रहते थे, तो हाँ ठीक है, हम लोग ब्रेड पकौड़े हो गए या पकौड़ी ले लेते थे, ठीक है, और अगर जैसे घर आए तो तुरंत होता था मम्मी पहले चाय बना के दे दो। चाय बनाने के साथ साथ मम्मी को हम लोग एक फरमान ज़रूर जारी करते थे कि प्लीज़ जो है कि पकौड़ी बना दो। और वो छीक क्या, वो बिना छीक के मज़ा कैसे आएगा कि अच्छा हाँ हमारे बाल गीले हैं, अच्छा हमें सर्दी हो गई है, तो अच्छी बात है यार।
4: बहुत बहुत धन्यवाद महिमा जी।
1: नमस्कार, आपका स्वागत है यूथ जंक्शन में, और मैं हूं अभिषेक। आपका शुभ नाम?
6: नमस्कार अभिषेक जी, मेरा नाम अमित यादव है, हम चंदौली जिला के सिसौना के निवासी हैं।
1: जी तो अमित जी, जैसे कि बारिश के दिन चल रहे हैं, ये बताइए कि आप बचपन में ऐसी कौन सी यादें हैं आपकी, जो जैसे ये मौसम शुरू होता है तो आप उन यादों में खो जाते हैं?

0: सबसे पहले तो बचपन की बातें ही एक अलग थी। बचपन में सबसे पहले कि ये बारिश की जब मौसम आती थी तो हम लोग सोचते थे कि उस समय जब हम लोग का स्कूल था तो बारिश तेज हो जाए जिससे कि हम लोग स्कूल ना जाएं। अजी एक दिन बारिश तेज हो जाती थी तो समय स्कूल जाना नहीं होता था। एक अलग प्रकार की खुशियां थी, खेलना कूदना, जैसे कि साइकिल लेके हम लोग निकल जाते थे, हल्की हल्की बारिश होती थी, इतना अच्छा लगता था। वो सुकून भरा पल एक अलग ही मतलब अलग लेवल का था। आज
1: बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं अमित जी आप।
0: आज आज वो चीजें नहीं हो पाती है अभिषेक जी, क्योंकि आज के चीजें जैसे कि आपको जिम्मेदारी हो गई, बाकी भी अलग अलग चीजें, पढ़ाई की टेंशन, पारिवारिक टेंशन और अलग अलग प्रकार की चीजें हो गई है। उस समय बचपना था, ना कोई टेंशन था, ना कोई जिम्मेवारी थी, बस खेलना कूदना, खाना और पीना, सो जाना, बस यही जिंदगी थी उस समय। अभिषेक जी बातें अलग थी। आप भी बचपन में खेले कूदे होंगे, जैसे हम लोग कंची खेलते थे, लट्टू नचाना खेलते थे,
1: बिल्कुल सही बोल रहे हैं अमित जी।
0: हाँ, गिल्ली डंडा खेलते थे, तो अलग एक अलग तरह का मजा था। और लट्टू वट्टू भी नचाना होता था हम लोग के गांव में। अपने अपने जगह का अपना अपना खेल कूद होता था, गांव का मजा ही अलग होता था। और सबसे बड़ी बात यह कि सावन के मौसम में हमारे यहाँ,
1: जी बताइए।
0: हाँ हमारे यहाँ पचैया में,
1: हाँ, पचैया में
0: गांव के सारे लोग, वो अलग बात थी, सारे लोग मिलके जैसे खो खो खेलते थे, कबड्डी खेलते थे,
1: कुश्ती खेलते थे। जी बिल्कुल
0: एक अलग प्रकार का, एक सुबह से उठना, खेलना कूदना, फिर दोपहर में आ घर पे अच्छा अच्छा मतलब एक अच्छी प्रकार का भोजन बनना, पूरी सब्जी सेवई इत्यादि, ऐसे चीजें अच्छा लगता था वो त्योहार। अब वो चीजें नहीं रह गई, चीजें धीरे धीरे वो चीजें खत्म हो रही है।
1: तब अमित जी, अब आपका मन नहीं होता है उन चीजों को दोबारा से करने का?
0: मन तो बहुत होता है, लेकिन एक जिम्मेवारी ऐसी चीज है ना कि उस बोझ में लोग दब जाते हैं। आप तो समझ रहे हैं, एक जिम्मेवारी ऐसा हो गया कि घर से दूर जाना पड़ता है, चाहे वो पढ़ाई को लेकर, चाहे कमाई को लेकर, लेकिन अब वो वाली चीजें, वो बातें नहीं रह गई। अब घर आना जाना होता है, लेकिन बहुत कम हो गया है।
1: और अगर आपको मौका मिले वापस से उसी बचपन के दिनों में जाने का, तो आप क्या करेंगे?
0: जरूर जाने की कोशिश करेंगे, वो मौका मिले जरूर जाएंगे। अगर वो ऐसा मौका मिल जाए तो समझ लीजिए कि जिंदगी दोबारा मिल गई ऐसा चीज रहेगा, और जो जीने की इच्छा है और दुगुना बढ़ जाता है, क्योंकि वो हंसी वो खुशी से समझ ही रहे हैं।
1: आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद अमित जी।
0: धन्यवाद।
2: नमस्कार, यूथ जंक्शन में आपका स्वागत। और हमारे साथ है आपका शुभ नाम?
3: पद्मा श्रीवास्तव।
2: पद्मा जी आप कहाँ से हैं?
3: जी मैं वाराणसी से।
2: बारिश सबकी एक बहुत पसंदीदा आती है, तो बारिश से जुड़ी आपकी सबसे अच्छी यादें कौन सी हैं? चलिए इसी के साथ आगे आपसे सवाल करते हैं कि बारिश की पहली बूंद पड़ते ही आपको बचपन की कौन सी याद सबसे पहले आती है?
3: बारिश की पहली बूंद पड़ते ही जो बचपन की सबसे पहली याद आती है वो ये कि जब बच्चे छोटे होते हैं, या फिर हम सब में से किसी की भी बात करें, तो जब बारिश होती है तो इतना ध्यान नहीं रहता है कि बारिश की बूंद पड़ेगी तो फिर हमें एलर्जी हो सकती है या कोई प्रॉब्लम हो सकती है। उस समय बस इतना रहता है जितने तेज़ बारिश होगी हम उतना ज़्यादा खेलेंगे, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं।
2: जी बिल्कुल सही। कि बारिश के साथ जुड़ी कोई ऐसी शरारत जिसे आज भी याद करके हंसी आ जाती है?
3: हाँ है, और शरारत ये है कि जब हम सब बहुत छोटे छोटे थे और बारिश होती थी, जब हम लोग बस हम लोग वेट करते थे कब बारिश होगी, और बारिश होते जैसे हम लोग छत पे भागते थे, तुरंत नीचे वालों से नीचे वालों का कहना रहता था नीचे आओ बहुत दिक्कत हो जाएगी, और हम सब बस वेट करते थे कितना जल्दी ये लोग शांत हों और बारिश हो, बहुत तेज़ बारिश हो, हम लोग भींगे। हम लोग चारों तरफ के जितने भी होल रहते थे सबको कवर कर दिया करते थे, कभी ईंट से कभी अपने कपड़ों से, वो जितने ज़्यादा कवर होंगे उसमें पानी भरेगा, पानी भरेगा तो हम सबका तालाब बन जाएगा और उसमें हम लोग तैरेंगे और नहाएंगे।
2: और बचपन में बारिश होती थी तो हम कागज़ की नाव भी बनाते
3: जी,
2: थे।
3: बिल्कुल, ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ होती थी कि जब जो कागज़ की नाव रहती थी हम सब में कॉम्पिटिशन चलता था, देखिए किसकी नाव कितनी आगे तक जाती है, और सबसे बड़ी बात डूबनी नहीं चाहिए, उसमें कितनों की नाव डूब जाती थी और कितनों की बहुत आगे तक चली जाती थी।
2: एक शब्द में बताइए बारिश आपके लिए बचपन की कौन सी भावना वापस ले आती है?
3: बारिश एक शब्द में तो इसको डिस्क्राइब करना बहुत पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इतना कहूँगी बारिश वो अनोखा समय होता है जो कि हमें सीधा अपने बचपन के टाइम से कनेक्ट करता है, इस तौर पे कि उस समय हमें कोई धुन नहीं रहता है, सिर्फ इतना रहता है आसमान की तरफ देखते हुए बारिश होगी, हम जाके भी उसमें भींगेंगे, नहाएंगे, अपने दोस्तों को कलेक्ट करेंगे और सब के सब तैराकी करेंगे, फिर जितनी ज़्यादा बारिश होगी उतना ज़्यादा उसमें खेलेंगे।
2: स्कूल के समय में जब आप आती होंगी तो बारिश होती होगी, तो उस समय आपको कैसा लगता था, वो सोचकर अभी के समय में आपको क्या महसूस होता है?
3: हाँ, वो लाइफ का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम था, क्योंकि उस टाइम कोई फैमिली मेम्बर तो आसपास होते नहीं थे, सिर्फ आसपास हमारे दोस्त होते।

0: चाहते थे, और हम लोग ऐसा चाहते थे कि अभी स्कूल की छुट्टी ना ही हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर स्कूल की छुट्टी थोड़ी देर से होगी तो और ज़्यादा बारिश होगी, तो हम सबको और समय तक साथ रहने का मौका मिलेगा, और फिर उसमें खेलने का, घूमने का, भींगने का, क्योंकि घर वाले तो तब भींगने देते नहीं थे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद पद्मा जी।
2: नमस्कार, आपका स्वागत है यूथ जंक्शन में। मैं हूं अभिषेक। और आपका नाम?
3: मेरा नाम गरिमा दुबे।
2: और बताइए अपने बारे में।
3: और मैं तो एक अभी MSc पास आउट की हूं, वाराणसी से बोल रही हूं। आप बताइए।
2: तब गरिमा जी, आज का हमारा विषय है बारिश भरी बचपन की यादें। तो गरिमा जी, ऐसी कौन यादें हैं जिनको आप याद करके अपने उन्हीं बचपन के दिनों में खो जाती हैं?
3: ऐसे तो बहुत सारी, पर मतलब ऐसे तो जैसे हम जब जाते थे स्कूल जाते थे तो उस टाइम के यादें बहुत

0: जैसे हम जब जाते थे, वे स्कूल जाते थे, तो उस टाइम के यादें बहुत अच्छी रही है। जैसे हम स्कूल से आते थे तो हमारे स्कूल में एक नहर होता था, और जब
1: जी
0: बारिश बारिश होता था तो नहर भर जाता था, क्योंकि बारिश के टाइम में नहर का पानी का जो होता है, तो उसमें हम लोग खेलते हुए आते, तो वो सबसे अच्छा हमारी याद है, क्योंकि हम लोग इतने भी भाई बहन रहते थे, उस नहर से खेलते हुए कूदते हुए, उसमें हमारा ड्रेस भी गंदा हो जाता था, तो वो होता था। और खेत में हमारे यहाँ धान, जैसे धान की रोपाई होती है,
1: जी
0: तो
1: जी
0: उस टाइम में मतलब हमारा जो भाई दादा था, हमको उस टाइम से होता है ना, चिढ़ाने के लिए धक्का दे देते थे, तो वो सब यादें बहुत अच्छा है ऐसे बोला जाए तो। बारिश के में 12th के टाइम में हम कोचिंग करते थे, तो उस टाइम में भी हमने जो रोड पे, अब मैं ऐसे पांडेपुर साइड में कोचिंग की हूँ, तो वहाँ पे
1: जी
0: ऐसे पानी जो गड्ढे में पानी भर जाते थे, तो हम लोग मतलब ये होता था कि अब वो बचपना तो मिलेगा नहीं, तो जो मिल रहा है उसमें कूदते हुए आते थे, मस्ती करते हुए, तो वो सब यादें बहुत अच्छा है। और बारिश में भीगना पसंद है, और बाहर की चीजें खाने, मतलब गर्म गर्म चीजें बारिश में भीग के, जो भी समोसे मिल रहे हैं, खाना पीना, ये सब यादें बहुत।
1: और पकौड़ी नहीं खाती थी बारिश में?
0: पकौड़ी तो मान लीजिए कि घर पे खाते हैं, पर जो होता है समोसा, वो बाहर का घर में थोड़ी बन पाएगा, तो वो सब चीजें, जो बाहर की चाट हो गई, समोसे हो गए, पकौड़ी तो हम घर पे बना के खा सकते हैं। बारिश होता है तो हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि बनाया करिए, तो वो तो एक यादें हैं। पर जैसे कि बाहर कोचिंग जा रहे हैं, तो पैसे स्कूल के टाइम में तो हमें उतना स्कूल में पैसे मिलते नहीं थे, तो हम दोस्त मिल के पैसे ऐसे कलेक्ट करते थे, फिर कुछ खरीदते, खाते पीते भीगते हुए। और हम लोग साइकिल से आते थे तो भीगते हुए आते थे डेली। मम्मी हम लोग बोलती नहीं थी कि क्यों स्कूल से, मतलब मेरे कोचिंग से आ रहे हो तो क्यों भीग रहे हो, रुक जाना चाहिए था। मतलब कि मजा आता है ऐसे, वो सब
1: बिल्कुल
0: है। अब तो ऐसा नहीं मिल सकता ना, अब वो दोस्त भी नहीं है।
1: बिल्कुल सही बोल रही हैं गरिमा जी। और ऐसे कौन से गेम्स थे जो आप बहुत खेलना पसंद करती हैं बारिश के दिनों में?
0: बारिश के दिनों में एक हम लोग के टाइम में जैसे कि एक कपड़े का ऐसे बॉल बनाया था, क्योंकि पहले के टाइम में उतना हम लोग के पास बॉल नहीं रहता, तो हम लोग कपड़े का बॉल बनाते थे, और उसी बारिश में मतलब गीले मिट्टी में ऐसे घिस घिस के मारना, और कबड्डी खेलना, क्योंकि उसमें बारिश में ये सब बहुत मतलब मजा वाला रहता था।
1: और बचपन में गांव पे क्या कहता है, इसी सावन के समय पे
0: हाँ
1: झूल लगते हैं नीम के पेड़ पे।
0: हाँ ये तो मेरा मतलब, मैं आपको इससे रिलेटेड बताती हूँ। एक बार मतलब हमारे यहाँ एक कुआं होता था, मतलब कुआं गांव में तो सबके यहाँ कुआं रहता था पहले के टाइम
1: जी
0: में,
1: जी बिल्कुल
0: उसी कुएं के ऊपर हम लोग का नीम का पेड़ था, और ऐसे जो वो पटरी वाला होता है ना, झूला बनता था,
1: टायर
0: दो
1: का।
0: दो हाँ टायर नहीं, वो एक पटरी जैसा होता था, लकड़ी का पटरी बनता था, उसपे दो लोग दो साइड से ऐसे करेंगे तो ऐसे मारते थे कैसे बैठ के, तो उसपे बीच वाला ऐसे फेंका मतलब आगे बढ़ता था, तो वो वाला हम लोग झूला, एक बार मेरे भैया इतना तेज मुझे ऐसे मतलब पीछे से ऐसे धक्का दिया कि मैं जाके खेत में फेंका गई। मतलब सही है, इतना मुझे वो सब याद आता। अब तो मतलब पहले मुझे झूले से बहुत डर लगता था, तो पर भैया उस टाइम जबरदस्ती नहीं बैठो, और मैं वो बारिश का ही टाइम था, वो कैसे पता नहीं कैसे धक्का दिया, वो इतना तेज में तो कुएं से गए, और मैं जाके एकदम पूरा खेत में फेंका गई, तो वो एक सब अच्छा ही यादें हैं झूला।
1: ठीक है गरिमा जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपका दिन शुभ
0: धन्यवाद।
1: हो। धन्यवाद। नमस्कार, आपका स्वागत है यूथ जंक्शन में। आपकी बात हो रही है अभिषेक से, और आपका शुभ नाम
2: मेरा शुभ नाम सागर वर्मा है,
1: जी, और थोड़ा अपने बारे में बताइए।
2: मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अभी शोध छात्र हूँ, पादप प्रजनन और अनुवांशिकी विभाग में।
1: जी। तब सागर जी, आज का हमारा विषय है कि बारिश भरी बचपन की यादें। तो ऐसी कौन सी यादें हैं जिनको आप याद करके वापस से उन्हीं बचपन के दिनों में खो जाते हैं?
2: तो जैसा कि बारिश हम सबको लुभाती है,
1: बिल्कुल
2: और बचपन में हम लोगों का सबसे कॉमन चीज होती है जो बचपन में बच्चे करते हैं, सबसे पहले तो वो नाव बनाते हैं, और कहीं भी हम देखते हैं कि जहां भी पानी लग जाता है हमारे आसपास या छत पे या सड़कों पे, तो हम उन सड़कों पे क्या करते हैं, वो अपनी जो हम कागज की नाव बनाते हैं उसको चलाते हैं, तो वो हम सबने किया होता है। और उसके साथ साथ हम जब छोटे रहते हैं तो हम जैसे शाम में अगर बारिश हो रही है तो हम क्रिकेट खेलते रहते हैं, तो बारिश होने लगती है तो हम क्रिकेट खेलना बंद नहीं करते हैं, हम उसको जारी रखते हैं। और साथ ही साथ सबसे अच्छा जो गेम होता है हम खेल सकते हैं बारिश के मौसम में, वो है फुटबॉल का, तो फुटबॉल को भी हमने बचपन के दिनों में बहुत इंजॉय किया है। और मेरा तो घर जो हमारी गंगा माता है उसके एकदम जस्ट पीछे है, तो वहां पे हम लोग क्या करते थे कि बारिश के दिनों में बहुत, जब बारिश होने लगती थी तो गंगा स्नान भी करते थे साथ साथ, और बहुत मजा आता था उसमें हम लोगों को।
1: तब तो सागर जी आपको तैरने भी आता होगा।
2: बिल्कुल बिल्कुल, मुझे पूरी तरह से तैरना आता है, और अभी भी मैं यहाँ

0: नारस में रहता हूँ, और हर रविवार को, जब अभी तो बाढ़ आ गई है नहीं तो, हर रविवार को हम लोग क्या करते हैं, जाते हैं वहां पे गंगा स्नान करते हैं और बहुत लुत्फ लेते हैं उसका।
1: ये तो बहुत अच्छी बात।
0: और इस समय भी हम लोग जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में होते हैं तो यहाँ जब बारिश होती है तो यहाँ का माहौल कुछ और ही होता है, और हम लोग उसको खूब पसंद करते हैं, एंजॉय करते हैं।
1: तो आप अपने बचपन के उन दिनों को याद करते हैं तो आपका ये मन नहीं होता है कि वापस से उन्हीं दिनों में चला जाए?
0: बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं मन करता है,
1: तो अगर आपको
0: वो तो
1: मौका,
0: हमारे जीवन की सुनहरी यादें हैं, तो हम बिल्कुल वापस जाना चाहेंगे वहां।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत
0: हाँ,
1: धन्यवाद सागर जी आपका।
0: बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी।
1: तो श्रोताओं, ये थी हमारी और आपकी बात।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक है।

0: तो शुरुआत करते हैं अपनी यूथ डायरी से, और आज का हिंदी शब्द है अभ्युदय। अभ्युदय का अर्थ है उन्नति, प्रगति, उत्कर्ष, विकास, समृद्धि या उत्थान। और इसके उदाहरण हैं, देश का अभ्युदय सभी नागरिकों के सहयोग से संभव है, और शिक्षा व्यक्ति के अभ्युदय का सबसे बड़ा साधन है।
1: साथ ही आज का हमारा अंग्रेजी का शब्द है एब्स्ट्रूज, जिसके स्पेलिंग है ABSTRUSE, जिसका अर्थ होता है दुर्बोध, जटिल या समझने में कठिनाई। द प्रोफेसर्स लेक्चर वॉज एब्स्ट्रूज, या फिर द बुक कंटेन्स एब्स्ट्रूज फिलोसफिकल आइडियाज। दोस्तों, आप भी उतावले होंगे अपने नाम को रेडियो पे सुनने के लिए, और हमने क्या सवाल पूछा था आपसे वो जानने के लिए और उसके विनर्स का नाम जानने के लिए। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं अभिषेक, कि हमने कल सवाल क्या किया था।
0: बिल्कुल शिवांगी। और दोस्तों, कल का हमारा आपसे सवाल था कि प्रेमचंद द्वारा चलाए गए प्रेस का नाम क्या था, जिसका सही जवाब है सरस्वती। और जिन्होंने इसका सही जवाब दिया है उनका नाम है चंदा चंदौली से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा, पीपर लोट सरगांव छत्तीसगढ़ से, ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से, दुर्गेश नागनपुरे, राधे श्याम नागनपुरे, वंदना बिंदु गोलू कुसुमबाई और बाबू दिव्यांश नागनपुरे, रिंग रोड नर्मदा नगर से सूरज वर्मा, ऋषभ, कनक और भावना वर्मा, ग्राम खैगांव तहसील महेश्वर से प्रेमलाल वर्मा, निकेश, नंदनी, हर्षिता और ममताबाई वर्मा, नेपा नगर से प्रभु दयाल शिवदे, जाहवी बसंती बाई और गणेश शिवदे, खंडवा से श्यामाबाई रायकवार।
1: आप सभी विजेताओं को बहुत बहुत बधाई, और साथ ही और जो बाकी हमारे साथी हैं वो अपना नाम सुनना चाहते हैं रेडियो पे, तो जान ले कि हमारा आज का सवाल क्या है और बन जाए विनर्स। और हमारा आज का सवाल है, मिशन वंदे मातरम के तहत बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF की पहली ऑल वुमेन पर्वतारोहण टीम ने किस चोटी की सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। इसका सही जवाब आप हमारे इंस्टाग्राम ID youth_air_varanasi या फिर हमारे ईमेल ID youth_air_vns@gmail.com पर भेज सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो।
0: तो दोस्तों, अब बारी है इतिहास के पन्नों को पलटकर ये जानने की आखिर आज के दिन क्या हुआ था।
1: आज ही के दिन 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। यह ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत के सबसे बड़े जन आंदोलन में से एक था।
0: और शिवांगी, जानती हो 1916 को एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की, जिसने भारत में स्वशासन की मांग की नई गति दी।
1: और अभिषेक, 1957 में नेशनल बुक ट्रस्ट यानी NBT की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य अच्छी पुस्तकों का प्रकाशन और पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देना था।
0: और जानती हो शिवांगी, आज विश्व फेफड़ा कैंसर दिवस है, यानी वर्ल्ड लंग कैंसर डे। फेफड़ों के कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाने और समय पर जांच के महत्व को बढ़ाने के लिए हर वर्ष 1 अगस्त को मनाया जाता है।
1: और दोस्तों, 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की, जिससे युद्ध और व्यापक हो गया था।
0: और 1981 में दुनिया का पहला लोकप्रिय MTV न्यूज़

0: तो दोस्तों ये थी हमारे इतिहास के कुछ खास अपडेट्स जो कि आपके तैयारी में बहुत काम आने वाले हैं। और इन तैयारियों का उपयोग आप कहाँ करेंगे, चलिए आपको बता देते हैं कि कौन कौन सी भर्तियाँ निकली हुई हैं। तो दोस्तों रेलवे भर्ती बोर्ड यानी RRB ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर सेक्शन कंट्रोलर भर्ती 2026 के लिए अधिसूचना जारी की है। यह भर्ती 119 रिक्तियों के लिए आयोजित की जा रही है। RRB आवेदन की प्रक्रिया 15 जुलाई 2026 से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 14 अगस्त 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। और इसकी अधिक जानकारी के लिए आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट RRB.gov.in पर विजिट कर सकते हैं।
1: और हाल ही में इसरो ने भी 400

0: 10 पदों के लिए आवेदन शुरू किए हैं जिनकी अंतिम तिथि 28 अगस्त है। इसकी अधिक जानकारी के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यानी इसरो urssc.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: दोस्तों, घड़ी की सुइयां हमें जाने का तो इशारा कर रही हैं, लेकिन उससे जाते जाते बहुत ज़रूरी बात बताना है हमें आपको, यानी कि प्लास्टिक। प्लास्टिक हमें कैसे, कब यूज़ करना चाहिए और कितना कम यूज़ करना चाहिए, उस पे हमें ध्यान देना चाहिए। तो अभिषेक, बताइए ज़रा।
0: बिल्कुल शिवांगी। तो दोस्तों, प्लास्टिक हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। बाज़ार से सामान लाना हो, पानी की बोतल खरीदनी हो या खाने का पैकेट लेना हो, हर जगह प्लास्टिक दिखाई ही देता है। लेकिन क्या आप कभी सोचा है कि कुछ मिनटों के इस्तेमाल के बाद यही प्लास्टिक वर्षों तक धरती पर पड़ा रहता है?
1: वही बात है ना अभिषेक, लेकिन तुम्हें पता है ना, प्लास्टिक की थैलियाँ, कप, प्लेट्स, स्ट्रॉ, चम्मच, ये सब पर्यावरण को कितना ज़्यादा नुकसान करती हैं। लेकिन दोस्तों, हमें बाज़ार जाते समय ध्यान रखना चाहिए कि हम प्लास्टिक का कम उपयोग करें, कपड़े या जूट के बैग को लेकर के जाएं, प्लास्टिक की बोतल की जगह स्टील या तांबे का उपयोग करें।
0: बिल्कुल शिवांगी, सही कह रही हो। तो आइए सोचते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। बाजार जाएं तो अपने साथ कपड़े का, जूट का थैला लेकर जाएं। और हमारे देश तभी स्वच्छ और सुंदर बनेगा जब हम सभी पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ हवा, साफ पानी और हरियाली देना, यही हमारी जिम्मेदारी है।
1: तो इन्हीं बातों से दीजिए हमें इजाजत। मैं यानी शिवांगी,
0: और मैं अभिषेक।
1: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी। मीडियम वेव के मीटर पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं भोजपुरी में समाचार हमारे गोरखपुर केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

स्वरपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ हम वैष्णवी त्रिपाठी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसानन आ खेतिहर मजूरन के मेधावी लयकन खातिर चलावल जा रहल मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना के विस्तार कैले के निर्देश दे रहा हमें। एक तहत उजीफा राशि के 3,000 रूपया हर महीना से बढ़ा के अब 5,000 रूपया हर महीना कई जाई। मुख्यमंत्री इन निर्देश कार्य लखनऊ में उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के संचालक मंडल के बैठक में दिले। वहाँ के कहने की उजीफा की राशि बढ़ौले के साथ ही योजना से ढेरी पात्र विद्यार्थियों के लाभ दिले की रूपरेखा तैयार की जाए। इस दौरान मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना और मुख्यमंत्री खेत खलिहान अग्निकांड दुर्घटना सहायता योजना के समय 1 जुलाई 2025 से 30 जून 2030 ले बढ़ौले के प्रस्ताव के मंजूरी दिहल गई। सतनी वित्तीय वर्ष 2026-27 बदे करीब 3,025 करोड़ रुपया के बजट के साथ ही किसान कल्याण, किसान विपणन और मंडी व्यवस्था से जुड़े प्रस्तावों के मंजूरी दिहल गई। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहले हवे कि अभद्र भाषा और नफरत से कौन समस्या के समाधान नहीं होला। उन्हों के भटकल नौजवानन के प्रति सहानुभूति दिखावे की अपील कैली और कहली कि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय हित के ध्यान में रखत उन्हें दंड देले के जगह पर सही राह दिखावल जाए के चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर पोस्ट कर गई एक वीडियो संदेशा में प्रधानमंत्री राजधानी के जंतर मंतर पर भयल हालिया की घटना के जिक्र कैले जहाँ उनके और उनके दिवंगत माता बदे अपशब्द के प्रयोग कई गये रहा। वहाँ के कहने की घटना के देश और दुनिया के लोग

0: रहे हमें समाज में एक तरह के व्यवहार पर आक्रोश और निराशा स्वाभाविक है। बाकी बचपन सीखले गलती कैले और के सुधर लहो के एक दौर होवे।
1: बचपन में गलतियां होती है और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम, उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम स्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता, समाज भी मेरी बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूँ, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े।
0: केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी आज सिद्धार्थनगर जिला के कपिलवस्तु में बुद्ध थीम पार्क अ लाइट एंड शो का उद्घाटन कैले। इस शो के जरिए भगवान बुद्ध की प्रारंभिक जिंदगी आ कपिलवस्तु से मानवता के दिहल गई करुणा और शांति के संदेशा के आकर्षक ढंग से प्रस्तुत कई जाये। ईगो रिपोर्ट।
1: केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बुद्ध थीम पार्क नई पीढ़ी को भगवान बुद्ध के विचारों से जोड़ने के साथ सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण संवर्धन और उसे विकास का आधार बनाने के संकल्प के साथ निरंतर आगे बढ़ रही है। यह पहल क्षेत्र के पर्यटन, स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार के नए अवसरों को भी गति प्रदान करेगी। समाचार कैसे अरुण।
0: संसद परिसर में संत के रूपरेखा बना के कई गये विरोध प्रदर्शन के मामला में वाराणसी में संत लोगों की ओर से दिहल गई तहरीर के आधार पर आज पुलिस लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव और अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गयी। महंत बालकनाथ आरोप लगौले के संसद परिसर में संत लोगों के रूप बना के राम मंदिर से जुड़े मुद्दा पर कई गये प्रदर्शन से सनातन समाज के धार्मिक भावना आहत भयल हवे। प्रदेश भर में श्रद्धा और भक्ति के माहौल में कांवड़ जतरा निकाल जा रहा है। प्रशासन की ओर से ढेर संख्या में श्रद्धालुओं के देखत उनके सुरक्षा सहूलियत बदे पुरहर इंतजाम कई गई बा। सावन के पहला सोमवार के जल चढ़ावे बदे आज जौनपुर के मड़ियाहू से कांवड़ियन के बढ़न जत्था मिर्जापुर खातिर रवाना भई। उन्नाव में गंगा घाट पर पहुंच के श्रद्धालु गंगा में जल भर के बाबा बलखंडेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव के जलाभिषेक कर ले। उन्हीं वाराणसी में दशाश्वमेध घाट पर शिव भक्ति के सतही राष्ट्रभक्ति और जल संरक्षण के अनूठा संगम देखे के मिलल। कान्ही पर गंगा जल से भरल कावड़ अहाते में तिरंगा लेके कावड़िया हर हर महादेव के सतही भारत माता के जय के नारा लगौले। प्रदेश के पूर्वी इलाकन के कई जिलों में आज दोपहरिया बाद मौसम के मिजाज बदल गयी और हल्लुकाहे बरखा भई। मौसम विभाग आवे वाला 5 दिन में प्रदेश के पूर्वी या पश्चिमी इलाकन के कई जिलों में गरज चमक के साथ हल्लुकाहे बरखा भयले के संभावना जतौले हवे। उन्हीं पहाड़ों पर हो रहा लगातारे बरखा से गंगा नदी के जलस्तर उफान पर बा। फरुखाबाद में नरौरा बंधा से ढेर मात्रा में पानी छुड़ौले के नाते नदी के जलस्तर खतरा की चीना से ऊपर पहुँच गयी बा। समाचार पूरा भयल, नमस्कार।
2: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ डीआरएम डीटीएच और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आइए सुनते हैं हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

सबसे पहले आज के शेष कार्यक्रम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 10 बजे और अखिल भारतीय साहित्यिक पत्रिका रात 9:30 पर। ये दोनों कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। इस सप्ताह संसद में आप सुनेंगे रात 8 बजे जिसे हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे गजल, कलाकार होंगे रूमी दत्ता, रात 8 बजे। फिल्म संगीत आप सुन सकेंगे कार्यक्रम रसरंग में शाम 7:45 पर, शाम 7 बजे और शाम 6:10 पर। शाम 7:31 पर आप सुनेंगे हिंदी वार्ता भारतेंदुकालीन कविता। किसान भाइयों का कार्यक्रम किसानवाड़ी आप सुनेंगे शाम 6:30 पर, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे खरीफ में हरे चारे खेती की विषय पर डॉक्टर निखिल कुमार सिंह और सुधीर श्रीवास्तव की बातचीत।

0: जानकारी आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की, आइए सुनते कल के प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण। अखिल भारतीय रविवासरी संगीत सभा आप सुन सकेंगे रात 10 बजे, और रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम स्वाधीनता की प्रतिध्वनियां आप सुनेंगे रात 9:30 पर। ये दोनों कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत में पंडित भीमसेन जोशी का गायन आप सुन सकेंगे सुबह 7:31 पर। कार्यक्रम सुगम संगीत का प्रसारण समय होगा रात 8 बजे, जिसमें आप सुनेंगे गजल, कलाकार होंगे जगजीत सिंह और ए हरिहरन। कार्यक्रम लोक संगीत में आप सुनेंगे राम जियावन और साथी के गाए लोक गीत सुबह 9:50 पर। इन्हीं के गाए लोक गीत आप सुनेंगे कार्यक्रम कृषि जगत के अंतर्गत शाम 6:30 पर। कार्यक्रम कृषि जगत का प्रसारण समय होगा शाम 6:30 पर, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे मृदा में हरी खाद का प्रभाव विषय पर डॉक्टर शिवम सिंह से सुधीर कुमार श्रीवास्तव की बातचीत। युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी का प्रसारण समय होगा शाम 5:15 पर, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे आज की बात, यूथ डायरी, विश्व घटना चक्र और रोजगार सूचना। छोटे बच्चों का कार्यक्रम बाल गोपाल आप सुन सकेंगे शाम 5 बजे, जिसमें चर्चा का विषय होगा मित्रता दिवस, साथ ही साथ होगी वार्ता, आओ जाने ओलंपिक खेलों के बारे में, वार्ताकार होंगे अशोक कुमार यादव। पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 7:31 पर, प्रस्तुति होगी सना सलीम और अरुण पांडे की। व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी लोकगीत का कार्यक्रम लोकरंग आप सुन सकेंगे दोपहर 1:30 पर, और हेलो फोन इन फरमाइश दोपहर 12 बजे। स्वास्थ्य संबंधी फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम आप सुनेंगे सुबह 11:30 पर, जिसमें आप सुनेंगे नेत्र रोग और निकट दृष्टि दोष की समस्या, डॉक्टर अरुण कुमार गुप्ता और शिखा श्रीवास्तव की बातचीत। कार्यक्रम बाल संघ आप सुनेंगे सुबह 11 बजे। श्रोता फिल्मी गीतों का आनंद उठा सकते हैं कार्यक्रम रस माधुरी में रात 8:15 पर, कार्यक्रम रसरंग में शाम 7:50 पर, शाम 7 बजे, शाम 6:10 पर, सुबह 10:30 पर, और कार्यक्रम मधुरिमा के अंतर्गत सुबह 8:45 पर। आज इतवार है, झलकी आप सुनेंगे दोपहर 1:15 पर, और कार्यक्रम एक ही फिल्म से आप सुन सकेंगे दोपहर 2:30 पर। सामुदायिक गान शिक्षा पाठ यह कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 10:10 पर, और कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस सुबह 7 बजे। सुबह 6:40 पर हम आपको सुनवाएंगे श्री रामचरित मानस से संगीतमय पाठ, कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा सुबह 6:35 पर, कार्यक्रम विचार बिंदु सुबह 6:30 पर, भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना सुबह 6:10 पर, और कार्यक्रम खेती की बातें सुबह 6:05 पर। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत, लेकिन उससे पहले ये जरूरी संदेश।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: फिल्म क्रिएशन का ये गाना कार्यक्रम फिल्म संगीत में, जिसे गाया है अरिजीत सिंह, गीतकार और संगीतकार टोनी कक्कड़।

कार्यक्रम का दूसरा गीत हम आपको सुनवा रहे हैं हाफ गर्लफ्रेंड से, जिसे गाया है अशकिंग और शाशा तिरुपति ने, गीतकार और संगीतकार तनिष्क बागची।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत, प्रसारण आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से हो रहा था। आइए सुनते हैं संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेशस्य भोगापुरम स्थले अल्लूरी सीताराम राजू अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तनस्य उद्घाटनम् अकरोत्। अथ च आधारभूत संरचना ऊर्जा क्षेत्रयोः 18,000 कोटि रूप्यकाणां प्रकल्पाः अपि शुभारंभिताः। नाथुलाद्वारस्य माध्यमेन भारत चीनयोः मध्ये सीमापार व्यापारः पुनः समारब्धः। राष्ट्रीय सुरक्षा परामर्शकः अजीत डोवालः लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कारेण सभाजितः। ग्लास्गो नगरे आयोजिते राष्ट्रमंडल क्रीडोत्सवे महिलानां 45-57 किलोग्राम वर्गयोः जैस्मिन लंबोरिया प्रीति पवार इत्येताभ्यां स्वर्ण पदकं विजितम्। अपि च ताइपे ओपन बैडमिंटन प्रतियोगितायाः चरम स्पर्धायां प्रविष्टा भारतस्य 17 वर्षीया क्रीडिका तन्वी शर्मा। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य प्रावोचत् यत् आंध्रप्रदेशः द्रुतगत्या अग्रे सरति। सहैव केंद्र सर्वकारः विशालस्तरीय आधारभूत संरचनायाः औद्योगिक विकासस्य च माध्यमेन स्वर्ण आंध्रस्य अथ विकसित भारतस्य संकल्पं पूरयितुं पूर्णतः कटिबद्ध।

0: वर्तते। विजयनगरम जनपदस्य भोगपुरम स्थले अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनस्य उद्घाटनोत्तरम् जनसभां संबोधयन् प्रधानमंत्री न्यगादीत् यत् विमानपत्तन मार्गोर्जा क्षेत्राणि समेत्य 18,000 कोटि रूप्यकाणां विकास परियोजनाः केन्द्र राज्ययोः एनडीए सर्वकारस्य नेतृत्वे राज्यस्य द्रुतगत्या जायमानां प्रगतिं प्रदर्शयति।
1: आज यहाँ करीब 18,000 करोड़ रूपीज की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। एयरपोर्ट के साथ साथ ये प्रोजेक्ट आंध्र की रोड कनेक्टिविटी से भी जुड़े हैं। इनमें एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े प्रोजेक्ट भी हैं। ये विकास कार्य इस बात के प्रतीक है कि इस समय आंध्र किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है।
0: प्रधानमन्त्रिणा एतत् नवीन विमानपत्तनम् आन्ध्रप्रदेशस्य विशेषतः उत्तरान्ध्रक्षेत्रस्य प्रगतेः धावनमार्गः सहैव राज्यस्य यूनाम् आकांक्षाणां क्षेपणमञ्चः इति प्रतिपादितम्। सः अघोषयत् यत् अस्य विमानपत्तनस्य नामकरणं स्वतन्त्रतासेनानिनः अल्लूरी सीतारामराजुवर्यस्य नाम्ना कृतम्, यत् आगामिवंशाय देशभक्तेः समाजसेवायाः च प्रेरणां प्रदास्यति।
1: एनडीए सरकार में आज छोटे शहर के साधारण लोग भी फ्लाइट से आ जा रहे हैं। 12 इयर्स में सिर्फ एयरपोर्ट की संख्या ही नहीं बढ़ी है, हमारी उड़ान योजना के कारण आज गरीब परिवार के लोगों को भी जहाज में बैठने का अवसर मिल रहा है। इस योजना ने गरीब से गरीब को अपना सपना पूरा करने में मदद की। कुछ दिन पहले ही सरकार ने उड़ान योजना के दूसरे फेज की शुरुआत की, इस पर भी 29,000 करोड़ रूपीज खर्च किए जाएंगे।
0: अत्रावसरे केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री के मोहन नायडू एतस्य विमानपत्तनस्य उद्घाटनम् ऐतिहासिक कीर्तिमानत्वेन व्यपादिशत्। सहैव तेनोक्तं यत् विमानपत्तनमिदं उत्तरान्ध्रक्षेत्रं विकासस्य, निवेशस्य, उद्यमस्य च मुख्यद्वारत्वेन परिवर्तयिष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य सायं मैसूरुनगरे स्वामी विवेकानन्द सांस्कृतिक युवकेन्द्रस्य विवेक स्मारकस्य उद्घाटनम् अकरोत्। एतत् स्मारकं 92-18 शततमस्य स्वामी विवेकानन्दस्य मैसूरुनगरीय ऐतिहासिक प्रवासस्य स्मृतिं संजीवयति। तस्मिन् काले सः मैसूरुराज्यस्य दीवान पदभूषितं सर् के शेषाद्रि अय्यर इत्यमुना सह अमिलत्। सहैव शिकागोनगरे आयोजितायां विश्वधर्मसंसदि भागग्रहणाय अमेरिका यात्रायै मैसूरुमहाराज्ञः श्री चामराजेन्द्र वोडियारवर्यात् वित्तीय साहाय्याम् अलभत। अवसरेऽस्मिन् जनसभां सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री मोदी अवदत् यत् स्वामी विवेकानन्दः वस्तुतः भारतस्य भावनायाः प्रतीकभूतम् आसीत्। सः सबलं प्रोदीरितवान् यत् देशस्य युवानः वैश्विक विकासम् अग्रे वर्धयन्ति।
1: मैसूरु भारत की अनादि सांस्कृतिक चेतना का केंद्र रहा है। यहाँ के मंदिर, यहाँ की परंपराएं और उत्सव, मैसूरु का दशहरा, यहाँ के भव्य महल, इसका संगीत और साहित्य, भारत की विरासत इस शहर के कण कण में रची बसी है।
0: उद्घाटनावसरे प्रधानमन्त्रिणे विवेक स्मारकस्य भ्रमणं कारितम्, यत्र सः स्वामी विवेकानन्दस्य प्रतिमनि पुष्पाञ्जलिं समर्पयत्। अनेनैव सः प्रधानमन्त्री स्मारक प्रांगणे पादपारोपणमपि अकरोत्। सिक्किम राज्ये स्थितेन नाथुलापास इति माध्यमेन भारत चीनयोः मध्ये सीमापार व्यापारः अद्य प्रातः पुनः प्रारब्धः, येन 6 वर्षाधिकस्य स्थगनस्य अन्तोऽभवत्। अस्य व्यापारस्य पुनः प्रारम्भः भारत चीनयोः द्विपक्षीय सम्बन्धेषु कश्चन सकारात्मकः संकेतः वर्तते। अस्माकं संवाददात्रा विज्ञापितं यत् अद्य प्रातः उभयोः देशयोः अधिकारिणः नो मेन्स लैंड इति क्षेत्रे परस्परं अमिलन्। चीनपक्षस्य नेतृत्वं तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रस्य प्रशासनिक प्रमुखैः सहैव तस्य वाणिज्य सीमा व्यापार विभागयोः प्रतिनिधिभिः कृतम्। संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते।

0: भैया बोला
1: जय जवान जय किसान।
0: और हो सत्तू भैया।
1: हाँ लाली बहन बोला का कुल हालचाल है अपने खेती किसानी के।
0: खेती किसानी का हालचाल तो बहुत नीक है। देखा बोआई तो सबकर हो चुकल होई आ हमनों का बोआई हो गई ला खरीफ के फसलन का। अब आगे का तैयारी है। अब पूछा कि आगे का तैयारी का।
1: हाँ का है तनी बताओ हमारे किसान।
0: बोआई भइले के बाद ओमन निराई करे के होला, ओकर साफ सफाई करे के होला और उ फसल का ध्यान देवे के।
1: बिल्कुल भाई ध्यान देवे वाली बात कर लू है। ध्यान अपने पैदावार का जोन खेती है ना, जोन खेती में पैदावार है ई जान ला कि जब हमने लोग खेती बारी करे जब करे नहीं जा कोनो भी फसल का जब शुरुआत होला तो शुरुआत में जंगने अपनी घर के गदेला लोगन का ध्यान देवे के होला ना, वही गने भाई अपने पेड़ पौधा का भी ध्यान देवे के होला, अपनी फसल का भी ध्यान देवे के होला।

0: ऐसे कि ओहू माओ के उतने खुराक शुरू में दिहल जाला कि भाई जोना से ओकर पैदावार धीरे धीरे बढ़े, ऐसा नहीं कि ले जाके एक ही हाली खाद उठैला झोंक दियला। तो भाई ओहू के बड़ा समय से कहल जाओ कि ओके थोड़ा थोड़ा जितनी ओकर मांग है पौधा का वो हिसाब से भाई ओमे खाद डाले के चाही। और ओकरी संगे संगे जो निराई के बात कैलू है ना, तो भाई देखा वो तो बहुत जरूरी है कि उस समय पे हो, ताकि भाई बहुत से ऐसा खर पतवार हो जवन उस छोट पौधा के भाई दबा देना, और ओके जब समय से अगर वो निकल जाए ना, तो जवन भी खुराक अपने खाद पानी का या अपनी मिट्टी का भी जवन खुराक रही वो हमने की पौधा के लगी।
1: बिल्कुल सही बात हो। एकरे साथे साथे ई जो मौसम चला था ना, ई मौसम में इहो ध्यान देवे के है कि बरखा बुन्नी जब होत है तो उ पानी खेते में ना रुके पाए, जैसे फसल सुरक्षित रहे।
0: बिल्कुल
1: भाई निकासी का तो व्यवस्था बढ़िया होए के चाहिए ना।
0: एकदम होके के चाहे, जोनी फसल में कम पानी का जरूरत है उनमें से पानी का निकास का व्यवस्था रहे के चाहे, और जोना में पानी का जरूरत है अपने खरीफ में, तो भाई उनमें पानी रोकहूं के व्यवस्था होके के चाहे। कहें से कि अपने भाई धान के देख ला कितना पानी का जरूरत लगेला, हाँ अपनी गन्ना की फसल के देख ला ओहू में भाई पानी का जरूरत रहेला। लेकिन यही में जोन कह लो कि सब्जी का की जोन खेती होत है भाई, ओमे कम पानी का जरूरत रहेला, ना के बराबर रहेला कि भाई जोन बारिश का पानी हो तो किनारे से हाँ मेढ़ी पकड़ के या ऐसा नारी बना दे कि किनारे से पानी दूसरी ओर चल जा, चाहे आप रहर का फसल भइल, चाहे तमाम जवन भी फसल है जोना में कम पानी का जरूरत है भाई, ओकर किनारे से नाली बना के ओमे पानी का निकले का व्यवस्था कर देवे के चाहिए।
1: ई घड़ी त मक्का और सोयाबीन जौन बढ़िया से तैयार हो था न खेते में, तो जान ला कि खाली विज्ञानी भैया लोगन से जानकारी दिवाई दिवाई के हमन किसान भैया लोगन कितना मजबूत कैले है जा, आ ई आपन तारीफ नहीं करत है। ई किसान भैया लोगन का भी तारीफ ही हो कि उ लोगन इतना ध्यान से हम लोगन के सुनेलन और जागरूक रहेलन। एकरे साथे साथे जौन तू व्यवस्था का बात करत रहला ना सत्तू भैया, तब व्यवस्था में इहो जरूरी है कि कीट जौन होलन रोग होलन ई कुल न लगे पावे, ओकरे बाद ई नहीं है कि झोंक दे दवाई ढेर भाई, ओहू का संतुलन बनावल बहुत
0: और
1: जरूरी
0: लाली
1: है।
0: बहन ई जान ल ना कि अपने पुरनिया लोग कहले हम कि भाई रबी की फसल से कई गुना ज्यादा ध्यान देवे के भोला खरीफ की फसल में अपने क्षेत्र में। काहे से कि भाई एमे मौसम असमान स्थिति में भी रहेला, कबो कम बेसी बारिश हो जाई, कबो ज्यादा हो जाई। हाँ अगर कम होत हो तो भाई ओहू के व्यवस्था करे के है, हाँ और ज्यादा मेहनत भी लगेला। मेहनत से ही है कि भाई कई को पानी चाहिए और बराबर पानी भी चाहिए कई सारी फसल में, तो भाई एमे बहुत ज्यादा मेहनत रहेला। और वो मेहनत के अगर हमनी का सही तरीका से प्रबंधन करके खरीफ की फसल में अगर चलल जाए तो देखा हमनी के बढ़िया से बढ़िया उत्पादन अपनी फसल से ले सकेनी जा।
1: बिल्कुल सही बात कहत हुआ। देखा जब आगे कभी सोचे का बात कहो तो प्रबंधन कैला है ना, तो आगे कभी सोचे के पड़ी ओकर भंडारण कभी व्यवस्था बहिये से बनावे के पड़ी योजना, एकरे संगे संगे कटाई कब करे के है, कब नीमन से फसल पाक गई है, कब हमके करे के है, ई कुल चीज का ध्यान देवल भी यही प्रबंधन में
0: बिल्कुल जरूरी है। ए लाली बहन
1: हाँ हो
0: देखा आज से भाई अपन ई कार्यक्रम किसान वाड़ी शुरू भइल है, आज जीवन की हर मंगलवार बृहस्पतिवार और शनिवार के हुई, तो भाई देखा एमे हमनी लोग ना जितना अपने किसान भैया लोगन से जुड़ल जानकारी के बात है वही बात के प्रसारित कैल जाए सुनवावल जाए, और भैया लोग एक कार्यक्रम के जरूर सुने और ही अपने जो आकाशवाणी का कार्यक्रम है वो कुल ही सुने। लेकिन हमनी का जो किसान लोगन बदे ये किसान वाड़ी कार्यक्रम आयल है ना, देखा यहू के लोग सुने और एमें ज्यादा से ज्यादा हमनी लोग जानकारी दिहल जाए, और आज का मौसम का जानकारी तीन दे दे भैया लोगन के।
1: जब जानकारी का बात कहला है मन काहे के पीछे रही भाई, आज का अपने बनारस का जोन मौसम है ओकर हाल ई है कि 34 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान है और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस है। एकरे साथे साथे जोन गाजीपुर जिला है वहाँ का 36 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान है और न्यूनतम 25 डिग्री है। अब आगे का तू जौनपुर का तनी बता दे।
0: एकदम जौनपुर का बता देते हैं कि वहाँ अधिकतम जोन तापमान है वो 34 डिग्री सेल्सियस है और न्यूनतम जोन है वो 27 डिग्री सेल्सियस है। यही यानी मिर्जापुर जिला का 36 डिग्री सेल्सियस अधिकतम है और न्यूनतम अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस है, यही मैंने चंदौली जिला का ना अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस है और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस है। तो भाई देख अपने कह जाओ कि तापमान में उतार चढ़ाव होत भी रहेला और यही उतार चढ़ाव की वजह से

0: कहल जाओ कि ये मौसम में या कोनो मौसम हो देखा मौसम में बदलाव आवेला वही ये मौसम में तो जान लगे अगर ये तापमान घटत बढ़त है कम बेसी होत है तो ये बारिश का भी बड़ा संकेत देला।
1: बिल्कुल सही बात है, यह बहुत जरूरी चीज है।
0: बिल्कुल जरूरी है। ए लाली बहन देखा आगे बात बत कही कही जाए लेकिन है कुछ सनेस सुनवा लिया जाए फिर बत कही कही जाए।
1: बिल्कुल।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
2: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
3: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
4: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी।
3: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
4: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
3: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: लाली बहन,
7: हाँ हो?
6: देखा अपने किसान वाड़ी कार्यक्रम में इस संदेश सुनवा देनी जा, और का आज का बात बत कही सुनावत हो?
7: बिल्कुल जानकारी का बात सुनवाई। जब खरीफ के फसल का बात करत रही ना, तो एमन और जरूरी चीज है हरा चारा का खेती। तो यही खरीफ के फसल में हरा चारा का खेती कैसे कइल जाला, यही विषय पर डॉक्टर निखिल कुमार सिंह से सुधीर कुमार श्रीवास्तव का बत कही है, नीमन का बत कही है, तहू सुना और किसान भैया लोगन।
6: बिल्कुल,
8: डॉक्टर निखिल कुमार सिंह, आप सहायक प्राध्यापक हो सस्य विज्ञान विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में। आज हम ये जानना चाहब कि जौन हमरे पशु चौवा हुआ अपने खेती किसानी के बड़ा अभिन्न अंग होना
6: जी।
8: तो अपने साथ साथ हमान के जौन हो उनका भी ध्यान विशेष रूप से रखे के होला।
6: बिल्कुल,
8: खास करके ये जौन खरीफ का मौसम चलत हो
6: जी,
8: एमन उनके चारा में जौन हो अगर हरा चारा देवल जाए तो का एक महत्व हो और का मतलब उकर प्रभाव पड़ी, तो जानकारी दें कि हरा चारा अगर उन्हें देवल जात हो
6: जी
8: तो का उकर प्रभाव पड़ी।
9: बिल्कुल, असल में हरे चारे का बहुत ज्यादा महत्व है
8: जी,
9: क्योंकि अगर हम बात करें पशुओं की और पशुओं से जुड़े व्यवसाय की, तो ये ऐसा सेक्टर है जो सबसे ज्यादा मतलब व्यवसाय देता है। साथ ही पशुओं की दुग्ध उत्पादन क्षमता बिल्कुल उनके खान पान पर डिपेंड करती है, और हरा चारा बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसमें, क्योंकि वो सकुलेंट होता है, बहुत मुलायम होता है, पशु उसको चाव से खाते हैं और उसमें प्रोटीन मिनरल की भी मात्रा अच्छी होती है।
8: अच्छा,
9: जिससे दूध का बढ़वार बहुत अच्छा होता है।
8: तो दूध की गुणवत्ता भी का कुछ उसे बढ़िया हो जाए?
9: बिल्कुल अच्छी होती है। हमें बस बरसात में एक बात का ध्यान रखना है कि कभी भी चारा आवश्यकता से ज्यादा ना दें, जैसे कि

0: मतलब उनको गैस या अफारा जैसी समस्याएं ना हो।
1: तो का अनुपात होवे के चाहिए हरा चारा का उनके बाकी चारा के साथ?
0: असल में इसमें अनुपात अगर हम ये देखें तो 1:3 का हम कर सकते हैं, और ये पशु दर पशु थोड़ा बदलता है। जैसे अगर हम गाय की बात करें
1: जी
0: तो थोड़ा कम होगा, भैंस की बात करें तो, क्योंकि ये जो भी चारे हैं ये पशु के बॉडी वेट के हिसाब से दिए जाते हैं।
1: अच्छा,
0: जी, तो इन बातों का ध्यान रखना है।
1: माने खाली हरा चारा न दे,
0: जी
1: ओके साथ जोन हो बाकी
0: हाँ,
1: जोन भूसा
0: कॉन्सेंट्रेट
1: वगैरह
0: भी दे,
1: मिला के।
0: भूसा भी दे, बिल्कुल।
1: तो अगर ये हरा चारा का उत्पादन करे चाहत हुआ तो ये खरीफ में कौने कौने चारा कर लगा सकन अपने खेत में?
0: देखिए, हरे चारे की जब भी हम बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण स्थान ज्वार का है।
1: अच्छा
0: ज्वार के अलावा मक्का भी कर सकते हैं, काउपी का भी कर सकते हैं, और किन्हीं क्षेत्रों में जहां वर्षा कम है वहां पे लोग बाजरा भी चारे के तौर पे लगाते हैं। अगर हम लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो
1: जी
0: यहाँ अमूमन इन चारों का मतलब प्रयोग किया जाता है।
1: अच्छा,
0: जी,
1: तो कोनो मन प्रजाति भी होले जोने के कि ज्यादा उत्पादन मिले? अच्छा
0: तीनों चारों में एक चीज बहुत कॉमन है, चेरी करके सभी में वैरायटीज जो प्रजातियां आती हैं, जैसे एमपी चेरी हो गई, पूसा चेरी हो गई। हमारे यहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश में पंत चेरी काफी ज्यादा पॉपुलर है, एमपी चेरी 4 भी काफी पॉपुलर है, और अभी कुछ साल 2 साल विगत वर्षों में एक और नया चारा काफी मतलब जिसे हम ज्यादा इम्पोर्टेंस इसलिए मानते हैं क्योंकि वो अगले 4-5 सालों तक वो चारा काफी ज्यादा मिलता रहता है।
1: अच्छा
0: नेपियर है उसका नाम,
1: एक
0: और
1: खेत से,
0: एक ही खेत
1: एक ही
0: से,
1: बुआई से?
0: एक ही बुआई से
1: अच्छा
0: आप उसकी बार बार कटाई कर सकते हैं। उसमें जो पंक्ति से पंक्ति की दूरी है वो लगभग 3 फिट, और पौधे से पौधे की दूरी है वो 2 फिट पे रखते हैं, और बहुत ही सही समय है बरसात उसको लगाने के लिए। और इसकी सबसे बढ़िया फायदा ये है कि इसका फोलियज और चारों के मुकाबले धीरे धीरे कड़ा नहीं होता, आपको
1: अच्छा
0: अच्छा मिलता रहेगा, और ये 4-5 साल तक मतलब चारे की पूरे साल भर ये चारा आपको दिला सकता है।
1: अच्छा, तो डॉक्टर साहब ये बतावे कि एक बदे खेत कैसन चाहिए और मिट्टी कैसन चाहिए?
0: आप हमारे पास दोमट मिट्टी है पूर्वी उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश या बिहार की भी बात करें तो दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मिट्टी है चारा उत्पादन के लिए।
1: अच्छा
0: इसमें किसी भी मिट्टी की तैयारी या मिट्टी का अगर जानना है कि क्या जरूरी है, हमेशा याद रखना चाहिए कि इसमें जल निकासी की सुविधा हो।
1: अच्छा
0: मिट्टी की तैयारी अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो किसी न किसी एक कोने से या साइड में आपकी एक नाली होनी चाहिए जहां पे अगर वर्षा का ज्यादा होती है तो पानी खेतों में ना लगे, वो नाली के द्वारा निकल जाए। जी,
1: अच्छा, तो ये खेत में कुछ उकरे पहले तैयारी के समय कुछ खाद उर्वरक देवे के
0: बिल्कुल
1: होला
0: बिल्कुल।
1: और एकरे पीएच मान वगैरह का कुछ जानकारी लेवे के होला?
0: अब सामान्य पीएच में काफी अच्छा, अगर ये 6.5 से 7.2 के बीच में है तो बहुत बढ़िया है। साथ में एक चीज का और ख्याल रख सकते हैं, जिन किसान बंधुओं के पास अगर पशु अच्छे हैं तो वो कम से कम 2 से 2.5 ट्रॉली आप प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गोबर की खाद पहले 15-20 दिन पहले अगर खेतों में डाल दे तो काफी अच्छा रहता है।
1: अच्छा
0: साथ में फिर अगर जैसे बुआई कर दी है तो उसके बाद एक हल्की सिंचाई देने से जर्मिनेशन जो उसका अंकुरण है बहुत अच्छा आता है।
1: अच्छा
0: तो
1: अच्छा
0: इन दो बातों का थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है।
1: सर डॉक्टर साहब बीज दर का रखे चाहिए?
0: बीज दर जैसे कि बाजरे की अगर हम बात करें तो ये 3 से 5 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से है, और इसकी सबसे बड़ी खूबी क्या है मतलब चारे की जब भी हम बात करते हैं तो ये फसलों से थोड़ा अलग है,
1: अच्छा
0: क्योंकि इनकी जो फोलियज है, इनका जो हरा भाग है, जो चारा है वो हमें चाहिए। तो जितना पौधों की संख्या अच्छी होगी उतना बेहतर है हमारे लिए। अच्छा, एक
1: जी
0: बात का और ध्यान देना चाहिए किसान बंधुओं को, अगर जैसे मान लीजिए कोई भी एक निश्चित खेत है जिसमें वो चारा लगाते हैं
1: जी
0: तो सारे खेत में एक साथ ही चारा नहीं बोना चाहिए कभी भी, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि समय के साथ वो चारा धीरे धीरे दूसरी तीसरी कटाई के बाद कड़ा होने लगता है। तो अगर मान लीजिए अगर कोई खेत है उसे 3 भागों में बांट लें और 15 से 20 दिन के अंतर पर उसकी बुआई शुरू कर दें, जून 20-25 से शुरू करके लेके अगस्त के पहले सप्ताह तक कर देंगे, तो उनके पशुओं को लगातार

0: कायम चारा मिलता रहेगा, साथ में उस चारे की जो प्रचुरता है वो आपको इस तरीके की है कि आपको एक ही समान चारा मिलेगा, मतलब एक ही ऊंचाई का और एक ही पौष्टिकता का। इसे हम लोग मतलब अंग्रेजी में स्टैगर्ड प्लांटिंग कहते हैं। हाँ, तो रुक रुक के 10-15 दिन पे अगर हम बुआई करते हैं तो बहुत अच्छा है।
1: जी जी डॉक्टर साहब, बुआई का कुछ विशेष विधि प्रयोग करने की चाहिए कि मैंने छिटकवा विधि से बोए दें तो फायदा ज्यादा मिले?
0: किसान के लिए आसान छिटकवा विधि है, चूंकि इसमें उपज फोलियज की है तो छिटकवा विधि का प्रयोग कर सकते हैं। नेपियर के केस में या बाजरे के केस में कई बार लोग लाइन सोइंग करते हैं, पर फिर वही बात आ जाती है कि हम दाने के लिए नहीं जा रहे हैं, हम चारा के लिए जा रहे हैं, तो जितना ज्यादा पौधे होंगे उतना बेहतर है।
1: तो डॉक्टर साहब, इमन कुछ समस्या भी आवेल है, कोनो कीट वगैरह लगत हो जैसे फसल के नुकसान पहुंचत हो या कोनो रोग लगत हो?
0: असल में इसमें शुरुआत में तो ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि आप पहली कटाई 50 से 60 दिन पे करते हैं। कई बार ज्वार या बाजरा के केस में, कई बार मक्का में काइलो पार्टिलस करके एक कीट आता है, तो वो क्या है, वो एकदम गोप में बैठ जाता है, एकदम बीच में बैठ के तने को कुतर देता है, तो उससे पौधों की बढ़वार नहीं होती है।
1: अच्छा,
0: तो उसके लिए आपको मतलब कीटनाशक का प्रयोग करना आवश्यक है।
1: अच्छा अच्छा,
0: पर अमूमन ज्वार के केस में और बाजरा के केस में कम है, मक्के के केस में इसकी मतलब कई बार प्रकोप आता है।
1: अच्छा, जो नेपियर आप बताना है,
0: नेपियर में इस तरीके की कोई समस्या नहीं है। अच्छा, अच्छी बात यह है कि ये थोड़ा हाइब्रिड प्रकार का है, तो इसका फूलियज भी अच्छा है और इसकी कीटों से और मौसम से लड़ने की ताकत भी अन्य के मुकाबले काफी है।
1: जी जी, तो एमन का कोनो रोग रोधी किस्म या ये तरह का जिसे शोधित कर दिया जाए अगर बीज बुआई से पहले, तो क्या एक नियंत्रित किया जा सकला?
0: असल में जब भी चारा की बात करते हैं, चारा आपको पूरे ड्यूरेशन में नहीं मिलता। आप क्या करते हैं, एक बढ़वार पे आप उसकी कटाई कर देते हैं।
1: हाँ।
0: तो वो जो प्रकोप है वो उस तरीके से आ नहीं पाता जैसे सामान्य फसलों में आता।
1: हाँ, हाँ, जी, जी।
0: तो मैं इस बारे में बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, पर ये इतना काफी है, मतलब अगर आप शुरुआती दौर पर अगर उसका ख्याल रख सकें तो ये बहुत अच्छा है।
1: अच्छा
0: जी,
1: तो फसल की कटाई मतलब करत समय का सावधानी रखे चाहिए, कितना जमीन से छोड़ करके काटे की चाहिए?
0: बिल्कुल, करीबन 15 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर, ताकि इस बात का ध्यान रहे कि वो वापस से फैल सके, अच्छे से उसका फैलाव हो सके चारों तरफ। तो हमेशा थोड़ा सा 20 से 25 सेंटीमीटर बहुत ही अच्छी ऊंचाई है, इतने पर ही रुक जाना चाहिए।
1: अच्छा,
0: और जैसे ज्वार के केस में है, इसके केस में क्या करते हैं, जैसे कटाई आप करते हैं तो फिर आप हल्का पानी देते हैं, अगर वर्षा हो गई तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो हल्की पानी के साथ आप थोड़ा सा खाद फेंकते हैं, यूरिया फेंकते हैं। ज्वार में एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे में कभी भी तुरंत अगर कोई पशु चरने निकल गया तो अवॉइड करना चाहिए, ज्वार के खेत में नहीं आना चाहिए।
1: अच्छा,
0: क्योंकि उसमें एसिन करके एक केमिकल बनता है, वो तुरंत बनता है, पर जैसे ही वो 15-20 दिन का होगा उसकी मात्रा नामात्र रह जाती है।
1: अच्छा, तो माने सीधे खेते से
0: ना खा पाए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए।
1: अच्छा, तो कैसे
0: कटाई के तुरंत बाद?
1: अच्छा,
0: कटाई के तुरंत बाद नहीं करना चाहिए, आप उसको फिर अगली कटाई तक वो सही हो जाता है।
1: अच्छा अच्छा, तो एक कटाई करने के बाद कितने दिन बाद फिर दूसरी कटाई करे चाहिए डॉक्टर साहब?
0: लगभग 25 दिन मिनिमम, 25 से 30 दिन, जैसी बढ़वार हो।
1: अच्छा अच्छा,
0: हाँ, जैसे कई जगह ये इसलिए कहा जाता है, कई बार वर्षा आधारित खेती भी है, तो जिसे रेनफेड एग्रीकल्चर कहते हैं, तो उसमें अगर पानी की बारिश नहीं हुई और किसी के पास सिंचाई के साधन नहीं है तो थोड़ा टाइम, 5 दिन ज्यादा लग सकता है।
1: अच्छा जी, का सावधानी रखे चाहिए विशेषकर एक खेती में पूरे फसल?
0: असल में सही बताएं तो हरे चारे को उस तरीके से महत्व नहीं मिल पाता, और आज के परिवेश में किसान भी बहुत ज्यादा जानवर नहीं रखते हैं। तो सबसे आवश्यक चीजें हैं कि सबसे गुणवत्तापूर्ण बीज का प्रयोग करें, खेत की तैयारी अच्छी होनी चाहिए, और साथ में इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि आप किस पशु के लिए चीजें कर रहे हैं। अगर आपके पास ज्वार है तो उससे संबंधित, जैसे मैंने बताया, एसिन के लिए सीधा चराने से बचना चाहिए। बाजरा है तो बाजरा थोड़ा सा रफ होता है, पर उसकी उपलब्धता अगर

0: है तो वो कंसंट्रेट और भूसा के साथ बड़ा अच्छा पौष्टिक रहता है। आजकल मक्का बहुत ज्यादा प्रचलित है क्योंकि ये बहुत मुलायम होता है, खाने में स्वादिष्ट है,
1: जी
0: तो
1: जी
0: पशु बहुत चाव से खाते हैं।
1: तो ऐसे इनका दूध का गुणवत्ता भी बढ़िया रही
0: बढ़ेगी
1: और
0: जी,
1: दूध का मात्रा भी बढ़ी।
0: मात्रा भी बढ़ेगी, बिल्कुल।
1: तो डॉक्टर निखिल कुमार सिंह, आप हमारे पंचायती में है ना, और इतनी अच्छी जानकारी देना हमारे किसान भैया लोगन के कि खरीफ में जौन हो हरा चारा की खेती करके कैसे जौन हो अधिक दूध का उत्पादन कर सकन,
0: जी
1: ये जानकारी दे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद जी।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: लाली बहन,
3: हाँ हो
2: देखा खरीफ में हरा चारा का खेती करके, आ देखा भैया दूध उत्पादन या अपने गोरु चुवा बदे कह जाओ कि खान खोराक के कैसे व्यवस्था कल जाए। डॉक्टर निखिल कुमार सिंह और सुधीर कुमार श्रीवास्तव के देखो बत कही रहल है, अब कुछ का कहल चाहत रहलू है।
3: कहली चाहत रही है कि देखा मंडी तो है भेजले रही है तो गईला तो कुछ जानकारी लेके अईला कि
2: अरे
3: नहीं।
2: गई नहीं हो कि आज का भाव ताव के कुछ लेके आई, भैया लोन के बताई, लेकिन आज अपने यहाँ का जो अगल बगल का मंडी है वो 1 तारीख हुखला की वजह से बंद रही है, तो भाई अब हम आज का भाव कैसे बताई का बताई, तो भाई आज तो भाई भैया लोन से क्षमे चाह।
3: तो चला जाए दा, जब नहीं भाई मंडी खुलल ते मन तुहार कौन गलती है, मंडी जब खुली तब फिर भाव तो बता दिहल जाए।
2: बिल्कुल बतावल जाई।
3: आ बहिन तू सुनवाए दा गीत गवने कुछ देखा हमरो मन झुराई लो ओही में अ किसान भैया लोगन भी जोते हूँ।
2: बिल्कुल, तो राम नारायण मौर्य और उनका साथी लोग का ना ये विकास गीत है, ओके सुनल जा भैया उनके सुनवावल जा।

0: गीत सुनमौला है राम नारायण मौर्य और साथी भैया लोगन की आवाज में। और कहीं ना कि एकदम सही बात है कि देश का सपना अपन किसान भैया लोगन ही पुरावेलन।
1: बिल्कुल
0: माटी उनके बदे सोना से कम नहीं है और एकर हमन के सम्मान करे के चाहिए। साथ ही आगे के कार्यक्रम के बारे में भी जानकारी देवल जरूरी है। समय भागत हो।
1: बिल्कुल बता द तो हम ही बताओ थे जोन अपन ये कार्यक्रम चलल है ना किसान वाड़ी जो ना के शुरू में ही बतैनी है जाए कि मंगलवार बृहस्पतिवार और शनिवार होता। तो भाई देखा आज तो शनिवार है अब अगला कार्यक्रम हमनी के मंगलवार 4 तारीख के हुई हाँ। आज जोना में भाई हमनी के बतकही सुनवावल जाए कि अगेती गोभी का खेती कैसे कल जा। डॉक्टर श्री प्रकाश सिंह से बतियले हैं शिखा श्रीवास्तव बहिन भैया लोग ओके जरूर सुनिह। दिनांक 4 तारीख के और दिन रही मंगलवार।
0: अब रखें अपने खेती खलिहानी का ध्यान, साथे रखें अपने पशुअन का ध्यान। अब चले का बेरा हो गए, घड़ी कहता कि चलल
1: बिल्कुल
0: जाओ।
1: चलल जाए लेकिन हम कहम ना कि भैया लोन के एक हली और ही बोलल जाए कि जय जवान जय
0: जय किसान।
1: किसान।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि मंत्रालय भारत सरकार।
1: अभी आप सुन रहे थे किसान वाणी, ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आइए अब सुनते हैं हिंदी फिल्में गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत।

फिल्म संगीत में हम आपके लिए सबसे पहला गीत लेके आए हैं फिल्म गुरु से, जिसे गाया है श्रेया घोषाल ने, शब्द संरचना गुलजार की और संगीत ए आर रहमान का।

फिल्म गुरु से अभी आपने सुना इस गीत को। इस गीत को गाया था श्रेया घोषाल ने। शब्द संरचना गुलजार की और संगीत AR रहमान का था। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म सूर्यवंशम से, जिस गीत को आवाजें दी हैं पवन धारिया और निकिता गाधी ने। गीतकार और संगीतकार तनिष्क बागची।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म सूर्यवंशी से ये गीत। इस गीत में आवाजें थीं पवन धारिया और निकिता गांधी की, गीतकार और संगीतकार तनिष बागची। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत फिल्म जब वी मेट से, जिसे गाया है मोहित चौहान ने, गीतकार इरशाद कामिल, संगीत प्रीतम का।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। मीडियम वेव के मीटर पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:15 और 35 सेकंड हो रहे हैं। आइए सुनते हैं सूचना खोए हुए व्यक्तियों के बारे में।

खोए हुए व्यक्ति के बारे में पहली सूचना हमें थाना सकलडीहा जनपद चंदौली से प्राप्त हुई है। पूजा देवी, पत्नी रमेश कुमार, जिनकी उम्र 26 वर्ष, इनका रंग सांवला, लंबाई लगभग 150 सेंटीमीटर, कदकाठी सामान्य, आंखों व बालों का रंग सामान्य है। ये अपने निवास स्थान सलेमपुर थाना सकलडीहा जनपद चंदौली से लापता हैं। इनके साथ इनका 3 वर्षीय पुत्र भी है। इनके बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी ओम प्रकाश पुत्र रामधनी निवास सलेमपुर थाना सकलडीहा चंदौली अथवा स्थानीय पुलिस को दे। खोए हुए व्यक्ति की अगली सूचना हमें पुलिस अधीक्षक रेलवे अनुभाग प्रयागराज से प्राप्त हुई है। अंजलि कुमारी पुत्री मनोज सिंह निवासिनी ग्राम दामोदरपुर पोस्ट रामपुर थाना गौरा बाजार जनपद छपरा बिहार, जिनकी उम्र 19 वर्ष, रंग गोरा, चेहरा लंबा, लंबाई लगभग 5 फीट, शारीरिक बनावट औसत है। ये दिनांक 23 जून 2026 को अपनी माँ के साथ रात्रि 8 बजे कैंट रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर रुकी हुई थी और वहीं से लापता है। उस समय इनका पहनावा पीले रंग का सूट, सलवार और दुपट्टा था। इनकी जानकारी मिलने पर रेलवे पुलिस अथवा स्थानीय पुलिस को सूचित करें।

गुमशुदा व्यक्ति की आखिरी सूचना हमें पुलिस अधीक्षक कार्यालय थाना कछवा जनपद मिर्जापुर से प्राप्त हुई है। विलुप्त व्यक्ति दिनेश पटेल पुत्र हरिहर पटेल, जिनकी उम्र 25 वर्ष, लंबाई लगभग 5 फीट 4 इंच, रंग सांवला, चेहरा लंबा, आंखों व बालों का रंग औसत है। ये मानसिक रूप से अस्वस्थ भी हैं। ये दिनांक 1 जून 2026 सुबह 7 बजे से अपने निवास स्थान से लापता है। इनकी जानकारी मिलने पर विद्याधर पटेल पुत्र हरिहर पटेल पसियाही कछवा जनपद मिर्जापुर अथवा स्थानीय पुलिस को संपर्क करें। खोए हुए व्यक्ति के बारे में सूचना समाप्त हुई। हमारा अगला प्रसारण लखनऊ केंद्र से किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूं कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है। प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है, और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का करेंगे शुभारंभ। उत्तर प्रदेश सहित देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा होंगे कार्यक्रम में शामिल। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज सिद्धार्थनगर के कपिलवस्तु में बुद्ध थीम पार्क का किया लोकार्पण। कहा, भगवान बुद्ध के संदेश को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम बनेगा थीम पार्क। हर घर तिरंगा अभियान के तहत इस वर्ष राज्य में 5 करोड़ घरों पर फहराया जाएगा राष्ट्रध्वज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों से अभियान में भाग लेने का किया आह्वान। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर अस्मिता डे ने जूडो में 48 किलोग्राम वर्ग में भारत के लिए पहली बार स्वर्ण पदक जीतकर रचा इतिहास। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मुक्ता शर्मा, समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही नशे के खिलाफ 100 सप्ताह का देशव्यापी जन भागीदारी अभियान शुरू हो जाएगा। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सहित देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा शामिल होंगे। माई भारत राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों, युवा क्लबों, स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, गैर सरकारी संगठनों, उद्योग संगठनों के युवा प्रकोष्ठों और 125 से अधिक आध्यात्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधि भी वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। इस अभियान के अंतर्गत हर रविवार देश भर में जागरूकता और जन भागीदारी बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना और उन्हें समाज में सकारात्मक बदलाव का वाहक बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। उन्होंने भटके हुए युवाओं के प्रति सहानुभूति दिखाने की अपील की और कहा कि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए उन्हें दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखाया जाना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने राजधानी के जंतर मंतर पर हुई

0: हाल की घटना का जिक्र किया जहां उनके उनकी दिवंगत मां के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया था।
1: बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूँ, समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूँ, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े।
0: केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज सिद्धार्थनगर के कपिलवस्तु में सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में बुद्धा थीम पार्क का लोकार्पण किया। उन्होंने कपिलवस्तु बुद्ध स्तूप में लाइट एंड साउंड शो का शुभारंभ किया। श्री पुरी ने कहा कि यह थीम पार्क भगवान बुद्ध के शांति, करुणा और मानव कल्याण के कालजयी संदेश को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम बनेगा। कार्यक्रम में स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल ने केंद्रीय मंत्री का स्वागत किया। मीडिया से बातचीत में श्री पुरी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कल स्वीकृत की गई पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना को क्रांतिकारी बताया।
2: एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन सेक्टर के लिए मंत्रिमंडल ने 84,000 करोड़ का एक योजना अप्रूव की है। इसके तहत 4 साल में डेटा कलेक्शन, डीप वाटर ड्रिलिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में होगा। इस योजना के साथ आने वाले समय में हम 1,00,000 करोड़ तो प्रतिवर्ष बचा पाएंगे।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हर घर तिरंगा केवल एक अभियान नहीं बल्कि राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान और देश के गौरवशाली इतिहास से जन जन को जोड़ने का राष्ट्रीय अभियान है। इसे व्यापक जन भागीदारी के साथ जन आंदोलन का स्वरूप दिया जाना चाहिए। कल लखनऊ में मुख्यमंत्री ने हर घर तिरंगा अभियान, स्वतंत्रता दिवस तथा विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के आयोजनों की तैयारियों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि 14 और 15 अगस्त को प्रदेश के सभी सिनेमाघरों में राष्ट्रगीत एवं राष्ट्रगान का अनिवार्य रूप से प्रसारण निश्चित किया जाए। पेश है एक रिपोर्ट।
3: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान में सहभागिता का आह्वान करते हुए इस वर्ष 5 करोड़ घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अभियान के तहत प्रदेश भर में तिरंगा रैली, तिरंगा संगीत समारोह, तिरंगा प्रदर्शनी और सेल्फी विद तिरंगा जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रमुख सरकारी भवनों, रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों, हवाई अड्डों, सार्वजनिक स्थलों, प्रमुख बाजारों और चौराहों को तिरंगा थीम पर सजाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि 9 अगस्त को काकोरी ट्रेन एक्शन दिवस और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के सभी कार्यक्रम पूरे सम्मान, गरिमा और राष्ट्रभक्त के भाव के साथ आयोजित किए जाएं। 9 से 15 अगस्त तक प्रदेश भर में स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े सभी स्मारकों, स्मृति स्थलों और शहीद स्थलों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। समाचार कच्छ से ओम अवस्थी।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों के बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। और अब शेष समाचार। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर से जुड़े कथित चढ़ावा मामले को लेकर संसद परिसर में नाटक करने पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सांसद पप्पू यादव और अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद के खिलाफ वाराणसी में आज मुकदमा दर्ज किया गया। काशी जोन के पुलिस उपायुक्त गौरव बंसवाल ने बताया कि संतों की तहरीर पर सनातन धर्म का अपमान करने के आरोप में यह मुकदमा दर्ज किया गया है।
4: संतों के द्वारा जो है कोतवाली थाने में एक तहरीर दी गई है। मैं उनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि राजेश रंजन और पप्पू यादव जी, राहुल गांधी जी और अवधेश जी जो ये हैं, इनके द्वारा सदन में, संसद में कुछ ऐसे कृत्य किए गए हैं जिसके द्वारा जो सनातन धर्म है उसका अपमान हुआ है। उसी में अभियोग पंजीकृत करके आगे की कार्रवाई की जाए।
0: उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने आज अयोध्या में श्री रामलला का दर्शन पूजन किया। दर्शन के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने श्री राम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा मामले पर कहा कि इस पूरे प्रकरण की जांच एसआईटी कर रही है। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
5: जो तथ्य सामने आए हैं उन तथ्यों के आधार के ऊपर जो लोग प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए थे उनको सजा हुई है, वो जेल में। बाकी जो एसआईटी की रिपोर्ट आएगी, एसआईटी की रिपोर्ट माननीय मंत्री जी स्वयं, उसके हम सब लोग चिंतित हैं कि जो भी रिपोर्ट आएगी, जो भी उसमें दोषी हुए उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।
0: नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार लाहिड़ी ने आज वाराणसी में विंध्य आर्थिक क्षेत्र के 7 जनपदों के सुनियोजित विकास की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को वर्ष 2030 के लक्ष्यों की समयबद्ध प्राप्ति के लिए समन्वित प्रयास करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विकास योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना चाहिए और इसके लिए तकनीक आधारित निगरानी तथा डेटा आधारित निर्णय प्रणाली को और मजबूत बनाया जाए। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना

0: के अंतर्गत रूफटॉप सोलर संयंत्रों की स्थापना में उत्तर प्रदेश ने देश के शीर्ष 100 जनपदों की सूची में अपने 17 जनपदों को शामिल कराया है। सूची में लखनऊ ने पहला स्थान हासिल किया है। एक रिपोर्ट।
1: यूपी नेडा डायरेक्टर रविंदर सिंह ने बताया कि इस सूची में राजधानी लखनऊ ने 1,24,167 रूफटॉप सोलर संयंत्रों की स्थापना के साथ देश का नंबर एक जनपद बनने का गौरव बरकरार रखा है। वहीं वाराणसी ने भी देश में 10वां स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा कानपुर नगर 14वें स्थान पर है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा जन जागरूकता अभियान, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने, समयबद्ध स्वीकृति, डिस्कॉम और संबंधित एजेंसियों के बेहतर समन्वय तथा सब्सिडी वितरण की प्रभावी व्यवस्था ने इस अभियान को नई गति दी है। समाचार कक्ष से सुशील चंद्र तिवारी।
0: ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने कल जूडो में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण पदक जीते। उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर स्मिता डे ने महिलाओं के 48 किलोग्राम वर्ग में जूडो में भारत के लिए पहली बार स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अस्मिता को इस जीत के लिए बधाई दी है। अस्मिता डे ने बताया कि देश के लिए स्वर्ण पदक जीतने पर बहुत खुशी हो रही है।
2: मैं अपने भारत के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स में पहला गोल्ड मेडल जीतकर मुझे बहुत खुशी हो रही है और गर्व हो रही है। ये मेडल सिर्फ मेरा नहीं है बल्कि 140 करोड़ भारतवासियों का है, जिन्होंने मुझे अपना प्यार और आशीर्वाद और शुभकामना दी है। मुझे ये जानकर भी बहुत खुशी हुई है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने खेलो इंडिया को 2030 से 31 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
0: मौसम विभाग ने प्रदेश में आगामी सप्ताह के दौरान मानसूनी सक्रियता में वृद्धि का अनुमान जताया है। विभाग ने कल से 5 अगस्त तक राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। इस बीच प्रदेश में कई नदियों के जलस्तर में वृद्धि हुई है। बदायूं में गंगा खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जबकि फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ में गंगा खतरे के निशान के पास बह रही है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का करेंगे शुभारंभ। उत्तर प्रदेश सहित देशभर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा होंगे कार्यक्रम में शामिल। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज सिद्धार्थनगर के कपिलवस्तु में बुद्ध थीम पार्क का किया लोकार्पण। कहा, भगवान बुद्ध के संदेश को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम बनेगा थीम पार्क। हर घर तिरंगा अभियान के तहत इस वर्ष राज्य में 5 करोड़ घरों पर फहराया जाएगा राष्ट्रध्वज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों से अभियान में भाग लेने का किया आह्वान। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर स्मिता डे ने जूडो में 48 किलोग्राम वर्ग में भारत के लिए पहली बार स्वर्ण पदक जीतकर रचा इतिहास। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्ज DRM, DTH और न्यूज ऑन AIR ऐप पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र। आइए सुनते हैं कार्यक्रम हिंदी वार्ता, जिसका विषय है भारतेंदुकालीन कविता।

भारतेंदु जिस समय साहित्य में आए थे और उनकी मित्र मंडली ने मिलकर जिस तरह के साहित्यिक जगत का निर्माण किया था, उससे पहले की जो साहित्यिक प्रवृत्तियां थी वो दस्तक दे रही थी लगातार। होता यह है कि कोई भी समय, कोई भी युग, कोई भी काव्य प्रवृत्ति, कोई काव्य धारा अचानक नहीं शुरू होती है, उसकी

परंपरा होती है और लंबे समय तक परंपरा की जो प्रवृत्तियां होती हैं वो सक्रिय होती हैं और जो युगीन मांग होती है वह उठ खड़ी होती है और उसके हिसाब से नई धारा की रचनाएं होने लगती हैं। तो जो पारंपरिक धारा होती है उसमें नई प्रवृत्तियां उससे टकराती हैं, कुछ दूर तक साथ भी चलती हैं और फिर धीरे धीरे उसको अपदस्थ कर देती हैं, उसको रास्ते से हटा देती हैं, तो पुरानी प्रवृत्तियां मंद पड़ने लगती हैं। भारतेंदु के समय में भी यही हो रहा था। भारतेंदु जी जिस समय साहित्य की दुनिया में आए थे उस समय कविता में रीतिकालीन प्रवृत्तियां सक्रिय थी और जो रीतिकाल की मुख्य प्रवृत्तियां थी उनमें जो सबसे बड़ी प्रवृत्ति थी जो श्रृंगारिकता की प्रवृत्ति थी वह प्रवृत्ति एक तरह से केंद्रीय प्रवृत्ति थी और उस समय ज्यादातर रचनाकार उसी श्रृंगारिक भावभूमि की कविताएं लिख रहे थे। भारतेंदु ने भी वहीं से शुरुआत की थी। उस श्रृंगारिकता की एक बड़ी प्रवृत्ति थी समस्या पूर्ति की, अधिकांश कवि समस्या पूर्ति की कविताएं लिखा करते थे। भारतेंदु के यहां जो कविताएं लिखी जा रही थी उनमें उनकी एक बड़ी चर्चित कविता है जिस पर उन्होंने कई कविताएं लिखी, कई छंद लिखे, सवैये लिखे, यह संग में लागी ये डोले सदा बिन देखे न धीरज आनती है छिन्हू जो वियोग परे हरिचंद तो चाल प्रलय की सुतानती है बरुनी में थिरे न झपे उजपे पलमेन समाई को जानती है पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियां दुखिया नहीं मानती है। तो यह पंक्ति जो अंत वाली पंक्ति है कि ये प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियां दुखिया नहीं मानती हैं, इस पर भारतेंदु ने कई छंद लिखे थे और लोगों ने भी लिखा था। इसी तरह से एक समस्या पूर्ति उस समय दी गई थी, बसिए ते त्याग तपाइए ना, इस पर बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन की कविता बड़ी चर्चित हुई थी। बगियान बसंत बसेरो की ओ बसिए ते त्याग तपाइए ना बिन काम कुतूहल के जो चले ते बीच वियोग बुलाइए ना, तो यह जो है उसमें आता है अंत में कि चित चैत की चांदनी चाह भरी चर्चा चरिवे को चलाइए ना। तो ये इस तरह की जो समस्या पूर्ति वाली प्रवृत्ति थी जो रीतिकालीन कविता को संस्कृत कविता से मिली थी, संस्कृत में यह परंपरा बड़ी समृद्ध रही है, तो वहां से यह परंपरा चली आ रही थी जो भारतेंदु के समय में भी खूब दिखाई पड़ती है। तो एक तो पुरानी परंपरा छोड़ नहीं रही थी जिससे टकराना था और नई प्रवृत्तियां बनने के क्रम में थी। तो भारतेंदु ने यह किया कि अपने समय को समाज को देखते हुए अपने मित्रों को उस समय के साहित्यकारों को संस्कृति कर्मियों को संगठित किया, इकट्ठा किया और उनके बीच विचार विमर्श वो करते रहे और उन सभी को नई धारा से जोड़ने के लिए प्रेरित किया। इस क्रम में हम यह भी जानते हैं कि वह जो समय था एक तरह से मध्यकालीन प्रवृत्तियां समाप्त हो रही थी और जो अंग्रेजों का राज्य था वह तेजी के साथ बढ़ रहा था और बहुत सारी चीजों को रास्ते से हटा रहा था। हमारी जो शिक्षा व्यवस्था थी उस शिक्षा व्यवस्था में भी अंग्रेजी शिक्षा का हस्तक्षेप हो रहा था और यहाँ अंग्रेजी को केंद्र में लाने की कोशिश हो रही थी। उसके पहले जो मध्यकालीन शिक्षा थी उसमें संस्कृत के स्थान पर फारसी को महत्व मिला था लेकिन फारसी को हटाकर अंग्रेजी शिक्षा अनिवार्य की जा रही थी और ये था कि जो अब एक नीति बन गई थी कि आने वाले समय में जो अंग्रेजी जानता होगा उसी को सरकारी नौकरियां दी जाएंगी और अंग्रेजों को अपना राज काज चलाने के लिए ऐसे नौजवानों की आवश्यकता भी थी जो अंग्रेजी जानते हो। तो यह भी चल रहा था। दूसरी तरफ जो हमारा समाज जो सामंती मूल्य थे इनके प्रति लोग धीरे धीरे जागरूक हो रहे थे और भारतीय समाज में बहुत सारी संस्थाएं सक्रिय हो रही थी जिनमें थियोसॉफिकल सोसाइटी, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन वगैरह जो भारतीय समाज को जागृत कर रहे थे और जो

रूढ़ियां थी, उन रूढ़ियों के प्रति सचेत करके उनको छोड़ने के लिए प्रेरित कर रहे थे। तो इन सामाजिक संस्थाओं की भी बड़ी भूमिका थी। तो ये हुआ ये कि इसके कारण जो एक तरह का नवजागरण का वातावरण पैदा हुआ, जिसको नवजागरण या पुनर्जागरण कहा गया। कविता जो पहले रीतकाल के समाज में दरबारों की रंगीनी और चमक दमक में तथा विलासिता और मनोरंजन के माहौल में पली ढली थी, आश्रय दाताओं की झूठी प्रशस्तियां की जा रही थी, उनसे कविता बाहर आने के लिए एक तरह से छटपटा रही थी, अपने पंख खोल रही थी। और जो उभरती हुई नवीन चेतना थी उसके साथ कविता मुला

भी नवीन चेतना थी उसके साथ कविता मुलाकात करे उससे एक तरह से नई जन चेतना से भेंट कर रही थी। तो यह सब भारतीय युग में हो रहा था। उसी समय वही समय था जब बालकृष्ण भट्ट ने साहित्य को जन समूह के हृदय का विकास कहा था। यह एक नई परिभाषा दी, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास होता है। तो यह आधुनिक काल में संभव था जब दृष्टि तर्क प्रधान और वैज्ञानिक हो रही थी और कविता के केंद्र में ईश्वरीय सत्ता की जगह मनुष्य की सत्ता आ रही थी, मनुष्य साहित्य के केंद्र में आ रहा था। ऐसे में भारतेंदु ने इन विचारों को तेज करने के लिए कुछ पत्रिकाएं प्रकाशित की। कवि वचन सुधा का प्रकाशन हुआ उस समय और भारत वर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है इस पर उन्होंने व्याख्यान दिया था जो बड़ा चर्चित हुआ था। और उन्होंने स्त्री जागरण के लिए एक पत्रिका निकाली थी बाला बोधिनी नाम से, जो 15 जून 1874 को प्रकाशित हुई थी। तो 1874 में जो उसका प्रथम अंक आया उसमें उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बातें कही थी। उसका जो उद्घोष था उसमें ये कहा कि जो हरि सोई राधिका, जो शिव सोई शक्ति, जो नारी सोई पुरुष, या में कछु न विभक्ति। तो स्त्री पुरुष को बराबर का महत्व देना ये बहुत आवश्यक था और ये यह न होता तो देश के आजाद होने में बड़ी समस्याएं आती। आधी शक्ति अगर अलग थलग पड़ी रहती, उपेक्षित होती तो ये ठीक नहीं था। भारतेंदु ने इस बात को महसूस किया था। ये कहा था कि जो हरि है वही राधिका है, जो शिव है वही शक्ति है, और जो स्त्री है वही पुरुष में भी वही है, तो इसमें कोई विभेद नहीं है। तो यह कहकर उन्होंने एक तरह से एक नई दृष्टि और एक नया विचार समाज के सामने रखा। इसी तरह से उन्होंने एक और बात कही थी, नारी नर समूह, और दूसरी बात यह कही कि स्वत्व निज भारत गहे, हमारा जो भारत है वह अपने स्वत्व को, अपनी पहचान को, अपनी अस्मिता को, अपने अस्तित्व को प्राप्त करे। हम अपनी अस्मिता को भूल चुके हैं, हम कौन हैं, बाद में चलकर जो मैत्री शरणगुप्त ने कहा था हम कौन थे क्या हो गए हैं, तो भारतेंदु ने कहा था कि मतलब हम स्वयं को भूल गए हैं, ये बड़ी हमारी समस्या है। तो भारत अपने स्वत्व को प्राप्त करे यह आवश्यक है। तो इस आवश्यकता को भारतेंदु ने रेखांकित किया। तो एक तरफ अपने को पहचानना, अपनी शक्ति को पहचानना, जो बिखरी हुई शक्ति है उसको सहेजना समेटना और एकजुट होकर समस्याओं का मुकाबला करना यह आवश्यकता। तो एक तरफ समस्या पूर्ति वाली प्रवृत्तियां आ रही थी, श्रृंगारिकता की प्रवृत्तियां आ रही थी, कई कवि उस तरह की कविताएं लिख रहे थे और जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि स्वयं भारतेंदु भी लिख रहे थे। दूसरी तरफ वहां भक्ति की कविताएं भी पर्याप्त लिखी जा रही थी, अधिकांश कवि भक्ति प्रधान कविताएं लिख रहे थे, जैसे भारतेंदु जी स्वयं लिख रहे थे सांच सवेरे पंछी सब क्या कहते हैं कुछ तेरा है, हम सब एक दिन उड़ जाएंगे यह दिन चार बसेरा है, या प्रताप नारायण मिश्र कह रहे थे साधु मनवा अजब दीवाना, माया मोह जन्म के ठगिया तिनके रूप भुलाना। राधा कृष्ण दास इसी तरह की कविता लिख रहे थे, प्रभु हो पुनि भूतल पर अवतरिए, अपने या प्यारे भारत के पुनि दुख दारिद हरिए। पारंपरिक विषयों में एक विषय यह भी था कि कवि श्रृंगारिकता और भक्ति के साथ साथ प्रकृति चित्रण कर रहे थे, वह ऋतु वर्णन कर रहे थे जिसमें वसंत होली पावस और षड ऋतु इत्यादि जो से जुड़ी हुई जो कविताएं थी वो सब लिखी जा रही थी। प्रकृति का बहुत सुंदर चित्रण उस समय हुआ था। श्रीधर पाठक की जो कश्मीर सुषमा वाली कविता है बड़ी प्रसिद्ध है, जहां पर वो जो गंगा वर्णन करते हैं, विमल अम्बुसर मुकुरन महम मुखबिंब निहारत, अपनी छत पे मोह आप ही तन मन वारत, यही स्वर्ग सुख लोक यही सुरकानंद सुंदर, यही अमरन को लोक यही बहु कहीं बसत पुरंदर। तो यह कविता या भारतेंदु की कविता बरसा सिर पर आ गई,
भरी हुई।

0: सब भूमि, बागों में झूले पड़े रहे भ्रमर गण भूमि। तो यह प्रवृत्तियां भी थी। दूसरे एक द्वंद्व का वो समय था, कुछ पुराना छोड़ना था, कुछ नए को जोड़ना था, ये समय था वो। तो ये दबाव था सत्ता का, शासन का बड़ा जबरदस्त दबाव था, उसमें सीधे सीधे बात कह पाना बड़ा कठिन था। वो आज का समय नहीं था कि हम कुछ भी कर सकते हैं। उस समय शासन का बड़ा कठोर दमन था, सत्ता के खिलाफ बोल नहीं सकते थे। इसमें राजभक्ति और देशभक्ति का द्वंद्व मचा हुआ था। रचनाकार एक तरफ राजा की तारीफ कर रहे थे, सत्ता की तारीफ कर रहे थे, दूसरी तरफ देशभक्ति की भावना भीतर से उनको बेचैन कर रही थी। तो देशभक्ति की बातें सीधे सीधे कहना संभव नहीं था, इसलिए कई बार राजभक्ति की आड़ लेकर, उसकी ओट लेकर एक तरह से देशभक्त की बातें की जा रही थी। भारतेंदु जी ने एक बार लिखा था, पूरी यमी की कटोरिया सी, चिरजीवो सदा विक्टोरिया रानी। विक्टोरिया की तारीफ में एक पंक्तियां आई थी इस तरह की, ये समस्या पूर्ति इस पर हुई थी उनके यहाँ, उनके दरबार में, भारतेंदु के यहाँ। तो ऐसी भी चीजें थी जो परिवेश के दबाव के कारण हो रही थी। और दूसरी तरफ जैसे अंबिकानंद दत्त व्यास ने भी लिखा था उस समय, जयतिराज राजेश्वरी जय जय जय परमेश, तो ईश्वर के साथ साथ राज राजेश्वरी की भी प्रार्थना हो रही थी। इसी प्रकार प्रिंस ऑफ वेल्स के आने पर जो कविताएं लिखी गई थी, उन कविताओं में भी ये द्वंद्व दिखाई पड़ता है। हालांकि वहां ये था कि हमारे देश में ऐसी व्यवस्था कायम कीजिए जिससे हमारे देश में जो लूट मची हुई है और जो दुख है, जो उपद्रव है, वो शांत हो जाए। उस समय भारतेंदु ने लिखा था कि पारू नहीं कहीं लख पर है, होए अदालत बंद, ऐसो निरुपद्रव करो राजकुंवर सुकंद। या उसी समय कविता और बड़ी चर्चित हुई जिसकी एक पंक्ति में तारीफ होती है, दूसरे में शिकायत की जाती है। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पैधन विदेश चली जा यह है अतिक्वारी। अंग्रेजों के राज में सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे देश का धन विदेश चला जा रहा है, यह दुख की बात है। उस समय बहुत सारी कविताएं ऐसी थीं जिनमें भारत की दुर्दशा का वर्णन हो रहा था। भारत की दुर्दशा, हाय वह भारत भू भारी, सवय गीत सो भई दुखारी, हाय पंचनद हा पानीपत, अजो रहे तुम धरण विराजत। तो इस तरह की कविताएं लिखी जा रही थी, देश के लोगों को जागृत करने के लिए अतीत का गौरवगान किया जा रहा था। हमारे देश के जो महापुरुष थे, जो नायक थे, जो जन नायक थे, राम कृष्ण राणा प्रताप और शिवाजी अर्जुन भीम इत्यादि को याद किया जा रहा था कि हम एक ऐसे भारत का निर्माण करें जिसमें हमारे नौजवान अपने अतीत के जो महापुरुष हैं उनको याद करें और उनके जैसा बनने की कोशिश करें। तो भारतेंदु और उनके समय के रचनाकारों ने अपने समय की विकृतियों का, विद्रूपताओं का चित्रण किया और एक नए भारत के निर्माण की परिकल्पना की और उसके लिए लोगों को जागृत किया।
1: अभी आप सुन रहे थे भारतेंदु कालीन कविता विषय पर हिंदी वार्ता, प्रस्तुति थी वशिष्ठ द्विवेदी की। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है हिंदी गानों का कार्यक्रम रसरंग।

आकाशवाणी है। अब आप जया भारती से संसद में इस सप्ताह हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अविनाश। संसद के मॉनसून सत्र का यह दूसरा सप्ताह था। यह सप्ताह कामकाज के लिहाज से मिला जुला रहा। इस दौरान दोनों सदनों में विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर भारी हंगामा किया। इस वजह से पूरे सप्ताह दोनों सदनों में गतिरोध बना रहा। हालांकि दोनों सदनों ने लंबी चर्चा के बाद लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी प्रदान कर दी। सप्ताह के पहले दिन यानी सोमवार को पूर्वाह्न 11 बजे लोकसभा की बैठक शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में मीराबाई चानू समेत अन्य भारतीय खिलाड़ियों की उपलब्धियों का उल्लेख किया। सदन ने सभी विजयी खिलाड़ियों, उनके प्रशिक्षकों और टीम इंडिया को बधाई और शुभकामनाएं दी। इसके बाद प्रश्नकाल शुरू होते ही कांग्रेस समेत कई विपक्षी सदस्यों ने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर हंगामा किया। इस कारण सदन की कार्यवाही शुरू होने के कुछ मिनट बाद ही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे आरंभ हुई तो विपक्षी सदस्यों ने फिर नारेबाजी शुरू कर दी। इस हंगामे के बीच प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने सदन में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया, लेकिन सदन में हंगामा जारी रहने पर अध्यक्ष ने दोपहर 12:08 पर सदन की बैठक 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन से संबंधित इस विधेयक में परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक करने या अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वाले व्यक्तियों को कम से कम 5 साल और अधिकतम 10 साल तक के कारावास और 50,00,000 रुपए तक के जुर्माने की सजा का प्रावधान है। सदन की बैठक 2 बजे शुरू होने पर भी सदन में हंगामा जारी रहा और कार्यवाही शाम 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। शाम 5 बजे बैठक पुनः शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सारे सदस्य तैयारी के साथ आए हैं, लेकिन कांग्रेस और उसके कुछ साथी इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा नहीं होने दे रहे। सदन में हंगामा जारी रहने के कारण कार्यवाही कुछ मिनट बाद ही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी विपक्षी सदस्यों ने राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर हंगामा किया। हंगामे के कारण राज्यसभा की बैठक बार बार बाधित हुई और 4 बार के स्थगन के बाद शाम करीब 5:15 की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। सुबह 11 बजे बैठक शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई को लेकर सदन में हंगामा जारी रखा और बैठक दोपहर 12 बजे

तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 12 बजे जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्षी सांसदों ने फिर यही मुद्दा उठाया और मांग की कि गृह मंत्री अमित शाह इस मुद्दे पर सदन में बयान दें। हंगामे के कारण सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू कराने का प्रयास किया। सदन में हंगामे को देखते हुए उपसभापति ने बैठक अपराह्न 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 3 बजे बैठक शुरू होने पर भी सदन में हंगामा जारी रहा और विपक्ष के कई सदस्य आसन के समीप आ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। हंगामे को देखते हुए उपसभापति ने बैठक शाम 5:15 बजे तक और पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी। मंगलवार को लोकसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध समाप्त होने के बाद लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू हुई। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ कड़े प्रावधान वाले इस विधेयक को पेश करते हुए कहा कि यह विधेयक सरकार के विद्यार्थियों के कल्याण के प्रति गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि परीक्षाओं में गड़बड़ियों और प्रश्न पत्र लीक आदि की घटनाएं पहले भी होती रही हैं और विभिन्न राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारों के दौरान भी ऐसे मामले सामने आते रहे हैं। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने परीक्षा प्रश्न पत्र निरोधक कानून को मोदी सरकार की विफलता का स्मारक करार दिया। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह को सदन में इसका जवाब देना चाहिए कि प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पैलेट गन के इस्तेमाल का आदेश किसने दिया। भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज ने चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि इस संशोधन विधेयक को लाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संवेदनशीलता और उनकी सरकार की जिम्मेदारी का प्रमाण है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि जो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी नहीं रोक पाए वो पेपर लीक भला कैसे रोक पाएंगे। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि सरकार जेन जी का भरोसा वापस जीतना चाहती है तो प्रधानमंत्री को कैमरे का एंगल नहीं बल्कि दिल का एंगल भी बदलना पड़ेगा। विधेयक पर देर रात तक चर्चा हुई जिसमें विभिन्न दलों के कई सदस्यों ने हिस्सा लिया, चर्चा अधूरी रही। उधर राज्यसभा में भी विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। वे विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री के बयान की मांग कर रहे थे। हंगामे के कारण बैठक एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। सुबह 11 बजे बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और फिर शून्यकाल शुरू करवाया। इसी दौरान विपक्षी सांसद अपनी सीटों से खड़े हो गए और विद्यार्थियों पर पुलिस द्वारा कथित बल प्रयोग का मुद्दा उठाया। सभापति ने हंगामा जारी रहने पर करीब 11:07 पर ही सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। बैठक दोबारा शुरू होने पर सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इसी दौरान विपक्षी सदस्यों ने फिर से गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। मांझी ने कहा कि मूल विधेयक 2006 में बना था और इसमें समय तथा बदलती परिस्थितियों के अनुरूप सुधार करने की जरूरत है। उपसभापति ने सदस्यों से कार्यवाही चलने देने की अपील की लेकिन सदन में व्यवस्था न बनते देख उन्होंने बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। बुधवार को लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी। नीट पेपर लीक के पृष्ठभूमि में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में सख्त प्रावधान शामिल करने के लिए लाए गए इस संशोधन विधेयक पर हुई चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की कुछ टिप्पणियों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इस कारण सदन की कार्यवाही पहले एक बार करीब 40 मिनट के लिए अपराह्न 2:30 बजे तक और फिर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच ही प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब दिया और उनके जवाब के बाद सदन ने ध्वनि मत से विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी। विधेयक पारित होने के बाद कांग्रेस सांसदों की नारेबाजी के बीच ही अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी।
चर्चा का जवाब दे

देते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा कि नीट पेपर लीक के मामले में सरकार ने फौरन कार्रवाई की और 12 जुलाई को जांच सीबीआई को सौंप दी गई। उन्होंने कहा कि कल इस मामले में आरोप पत्र दायर किया गया है और सुनवाई शुरू हो गई है। श्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नए संशोधन विधेयक के प्रभाव में आने के बाद फास्ट ट्रैक अदालत में सुनवाई के साथ इस मामले में 5 महीने में फैसला आ जाएगा। इससे पहले विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक के खिलाफ विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाए। इसका सत्ता पक्ष ने तीखा विरोध किया और उनसे माफी की मांग की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि या तो नेता प्रतिपक्ष बताएं कि किस आधार पर उन्होंने देश के एक जिम्मेदार व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगाया है या फिर वह माफी मांगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष बिना किसी तथ्य, जांच और साक्ष्य के किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते। उसी दिन गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जन्म और मृत्यु के पंजीकरण संबंधी कानून में संशोधन करने के प्रावधान वाला विधेयक भी सदन में पेश किया। उधर राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के कारण भोजनावकाश से पहले सदन की कार्यवाही बाधित रही। भोजनावकाश के बाद सदन ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को संक्षिप्त चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके प्रावधानों के तहत राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन के दौरान किसी भी तरह का व्यवधान या उसका अपमान आपराधिक कृत्य माना जाएगा और इसके लिए 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है। उच्च सदन में विधेयक पारित किए जाने के समय कांग्रेस सहित विपक्ष के सदस्य सदन में मौजूद नहीं थे, क्योंकि वे गृह मंत्री अमित शाह की गैर मौजूदगी सहित विभिन्न मुद्दों पर विरोध जताते हुए सदन से वॉकआउट यानी बहिर्गमन कर गए थे। हालांकि आम आदमी पार्टी, बीजू जनता दल, भारत राष्ट्र समिति और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने चर्चा में हिस्सा लिया। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपनी तुष्टिकरण की नीति के कारण वंदे मातरम को आजादी के बाद वह सम्मान नहीं प्राप्त होने दिया जो उसे प्राप्त होना चाहिए। विधेयक पारित होने के बाद कुछ सदस्यों ने आसन की अनुमति से विशेष उल्लेख के जरिए लोक महत्व से जुड़े मुद्दे उठाए। विशेष उल्लेख के बाद 3:15 पर बैठक पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। बृहस्पतिवार को लोकसभा में विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेस समेत विपक्षी सदस्यों के शोरगोल के कारण सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित की गई। हंगामे के कारण कार्यवाही पहले दोपहर 2 बजे तक और उसके बाद 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। उसके बाद बैठक शुरू होने पर सदन ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक को पारित कर दिया। उच्च सदन ने एक दिन पहले ही विधेयक को मंजूरी प्रदान की थी। प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई और राम मंदिर में चढ़ावा चोरी जैसे मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक पर सदन में हुई संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि यह विधेयक राष्ट्र गौरव का विधेयक है जो किसी राज्य, व्यक्ति या विचारधारा के खिलाफ नहीं है। इससे पहले द्रमुक सांसदों ने विधेयक का विरोध किया। उधर राज्यसभा में भी हंगामा जारी रहा। शून्यकाल के दौरान विपक्षी सदस्यों ने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस के बल प्रयोग को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग करते हुए हंगामा किया। इसके बाद विपक्षी सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया। विपक्ष के बहिर्गमन के बाद सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि 20 जुलाई से शुरू हुए मानसून सत्र के दौरान विपक्ष का रवैया नकारात्मक रहा है। विपक्ष के बहिर्गमन के बाद सदस्यों ने शून्यकाल के तहत लोक महत्व से जुड़े अपने अपने मुद्दे उठाए। इसके बाद सदन में प्रश्नकाल भी सामान्य रूप से चला। भोजनावकाश के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा तथा पारित करवाने के लिए रखा। उन्होंने कहा कि सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है। चर्चा में भाग लेते हुए नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक समयबद्ध वार्षिक परीक्षा कैलेंडर बनाए जाने का सुझाव दिया तथा हाल ही में हुए छात्र आंदोलन में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हुई ज्यादतियों की न्यायिक जांच कराने की मांग की।
विधेयक के समर्थन में भाजपा के बृजलाल ने कहा कि विधेयक यह प्रावधान करता है कि केंद्र एक विशेष एसआईटी का गठन कर सकता है और जांच एजेंसी को मात्र 2 माह के अंदर पूरी प्रक्रिया समाप्त करनी है तथा त्वरित अदालत को 3 महीने के भीतर अपना फैसला देना है। जदयू के संजय झा ने कहा कि विकास

0: पथ पर भारत आज जिस तरह से बढ़ रहा है उसका एक अहम कारण यह है कि बीते करीब 12 साल में शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव हुए हैं। समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव ने कहा कि पहले परीक्षाओं की जिम्मेदारी राज्य सरकारों के पास थी, तब इस तरह प्रश्न पत्र लीक के मामले नहीं होते थे। विधेयक पर हुई लंबी चर्चा के बाद विभिन्न दलों के कई सदस्यों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री श्री सिंह ने चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यह विधेयक सिर्फ एनटीए ही नहीं बल्कि यूपीएससी रैंकिंग और रेलवे और बैंकिंग सेवाओं से जुड़ी परीक्षाओं को भी कवर करता है। उनके जवाब के बाद सदन ने ध्वनिमत से विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी। शुक्रवार को लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दलों के सदस्यों ने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई और राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मामले को लेकर हंगामा किया, जिसके कारण सदन की बैठक एक बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की बैठक शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने आसन के निकट पहुंचकर गृहमंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग करते हुए नारे लगाए। अध्यक्ष ओम बिरला ने शोर शराबा को देखते हुए कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। बैठक 12 बजे फिर शुरू हुई तो हंगामे की स्थिति जस की तस थी। विपक्ष के हंगामे के बीच गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जन्म और मृत्यु का पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। सदन ने बिना चर्चा के ध्वनिमत से विधेयक को पारित कर दिया। इसके बाद सदन को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। अभी आप संसद में इस सप्ताह हुई कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्ज, DRM, DTH और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में रात के 8:15 हो रहे हैं। प्रस्तुत है हिंदी गीतों का कार्यक्रम रस माधुरी। प्रोग्राम के शुरुआत में आइए सुनते हैं फिल्म मन की आंखों का ये गीत। इस गीत को लिखा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गीत में आवाज दी है मोहम्मद रफी ने। गाने सुने।

उनकी आंखों से अभी आपने सुना ये गीत। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रस माधुरी। इस गीत को गाया था मोहम्मद रफ़ी ने, गीतकार और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का दूसरा गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने, संगीत एस डी बर्मन का, फिल्म है चुपके चुपके।

अभी आपने सुना फिल्म चुपके चुपके से ये गीत। इस गीत को गाया था लता मंगेशकर ने, संगीत एचडी बर्मन का और गाने की तर्ज बनाई थी आनंद बख्शी ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म श्री 420 से, जिसे गाया है मन्ना डे और लता मंगेशकर ने, और इस गीत को संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने, गीतकार शैलेंद्र।

कार्यक्रम रसमाधुरी में अभी आपने सुना श्री 420 का ये गीत। इस गीत को गाया था मन्ना डे और लता मंगेशकर ने, और संगीत शंकर जयकिशन, गीत को लिखा था शैलेंद्र ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, लता मंगेशकर की आवाज़ में, संगीत आर डी बर्मन का।

अभी आपने सुना फिल्म मंजिल से ये गीत। आवाज़ें लता मंगेशकर की थी। इस गीत के गीतकार थे योगेश और संगीत आरडी बर्मन का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में। संगीतकार बप्पी लहरी और गीत के बोल लिखे हैं अनजान ने।

किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में अभी आपने सुना नमक हलाल फिल्म का ये गीत। इस गीत के बोल लिखे थे अनजान ने और संगीत बप्पी लहरी का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत फिल्म चांदनी से। इस गीत को गाया है सुरेश वाडेकर और अनुपमा देशपांडे ने। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार शिवहरी।

फिल्म चांदनी से आपने सुना कार्यक्रम रसमाधुरी का ये आखिरी गीत। इस गीत को गाया था सुरेश वाडेकर और अनुपमा देशपांडे ने, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार शिवहरि। आइए अब सुनते हैं समाचार संध्या हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र का शुभारंभ किया। उन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल में हुई प्रगति का श्रेय युवाओं को दिया। प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश में 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। केंद्र ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता के लिए 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की अग्रिम राशि जारी की। भारत और चीन ने सिक्किम के नाथुला दर्रे से सीमा पार व्यापार फिर से शुरू किया। ओडिशा में बाढ़ का प्रकोप जारी। केरलम में लगातार बारिश से तबाही, 6 लोगों की मौत। और राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी में जैस्मिन लैम्बोरिया तथा प्रीति पवार ने और पैरा एथलीट सोमन राणा ने शॉट पुट में स्वर्ण पदक जीता। 7 भारतीय मुक्केबाज आज फाइनल में खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयां तक पहुंचाया है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के युवा विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कर्नाटक के मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
2: अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है, भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। हम सभी अपने आसपास देख रहे हैं, आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का सपना युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना था।
2: स्वामी विवेकानंद जी युवाओं की शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का मजबूत आधार मानते थे। उन्होंने स्वयं ये देखा था कि कैसे दुनिया के देश अपने युवाओं को शिक्षित बना रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से तब भारत गुलाम था। उस दौर से लेकर अब तक भारत के युवा ने एक लंबी यात्रा तय की है। आज युवा दुनिया के विकास को गति दे रहा है। आज भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है, भारत के युवाओं के सामर्थ्य से।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं।
2: पिछले 12 वर्षों में 650 से ज्यादा नई यूनिवर्सिटीज बनी है। पिछले 12 वर्षों में करीब 14,000 नए कॉलेज बने हैं। 4,000 से ज्यादा नई ITI बनाई गई, 9 नए IIM, 7 नई IIT और

0: कैंप भी स्थापित किए गए हैं। आज देश में एमबीबीएस की सीटें करीब 1,40,000 हो चुकी है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 823 हो गई है।
1: श्री मोदी ने कहा कि खेलो इंडिया, यूनिवर्सिटी गेम्स और यूथ गेम्स ने युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने का अवसर दिया है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के भोगपुरम में अल्लूरी सीतारामा राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा कि 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में एनडीए सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती हैं।
0: मुझे पूरा विश्वास है आज यहाँ जितने भी प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है, जिनकी नींव रखी गई है, वो सारे प्रोजेक्ट स्वर्ण आंध्रा और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में बहुत बड़ा योगदान देंगे। आंध्र प्रदेश विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ा ऊर्जा स्रोत बन रहा है। मैं एक बार फिर इन सभी परियोजनाओं के लिए आंध्र प्रदेश के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं।
1: प्रधानमंत्री कल नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही नशे के खिलाफ 100 सप्ताह का देशव्यापी जन भागीदारी अभियान शुरू हो जाएगा। इस कार्यक्रम में देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने दक्षिण पश्चिम मॉनसून के दौरान बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता देने के लिए राज्य आपदा मोचन कोष के केंद्रीय हिस्से की अग्रिम राशि के रूप में 2,117,85,00,000 रुपए जारी करने की मंजूरी दी है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बाढ़ प्रभावित 7 राज्यों में से हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और नागालैंड को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पहली किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है।
2: बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए स्वीकृत सहायता के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश को वित्त वर्ष 2026-27 की पहली किस्त की अग्रिम राशि के रूप में 44,55,00,000 रुपए जारी किए जाएंगे। वहीं असम के लिए पहली किस्त के रूप में 379,35,00,000 रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जबकि गुजरात को 500,00,000 रुपए जारी किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश, जिससे वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है, उसे दूसरी किस्त की अग्रिम राशि के रूप में 193,95,00,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। वहीं ओडिशा को दूसरी किस्त के रूप में 500,00,000 रुपए जारी किए गए हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र के लिए पहली किस्त की अग्रिम राशि के रूप में 500,00,000 रुपए स्वीकृत किए गए हैं। गृह मंत्रालय ने कहा कि इस मंजूरी का उद्देश्य बाढ़ प्रभावित राज्यों में जारी राहत और बचाव कार्यों को और सुदृढ़ करना है। प्रिया मंडल के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्र सरकार ने आज राज्यों को कर हस्तांतरण के रूप में 1,09,019 करोड़ रुपए की अतिरिक्त किस्त जारी की है। यह राशि राज्यों को हर महीने मिलने वाली किस्त के अतिरिक्त है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस अतिरिक्त किस्त का उद्देश्य राज्यों को पूंजी और विकास व्यय में तेजी लाने के लिए अधिक अवसर प्रदान करना है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातकोत्तर नीट पीजी 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा 30 अगस्त को आयोजित की जाएगी। श्री नड्डा ने कहा कि परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी और अभ्यर्थी हितैषी बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को आज महाराष्ट्र के पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 106वीं पुण्यतिथि के अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह ने यह पुरस्कार प्रदान किया। श्री शाह ने कहा कि श्री डोभाल ने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाने में उल्लेखनीय योगदान दिया है।
3: भारत की सेना को आधुनिक बनाना, समसामयिक परिवर्तन करना, सेना के अंदर टेक्नोलॉजी और वीरता दोनों का एक अद्भुत फाइन ट्यूनिंग करना, कई प्रकार के बड़े फैसले अजीत जी के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी जी ने लिए हैं।
1: दिल्ली भाजपा ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद और अन्य संबंधित लोगों के खिलाफ संसद परिसर में कल धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। नई दिल्ली से भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने आरोप लगाया कि संसद परिसर के मकर द्वार के पास हुए प्रदर्शन

0: शन के दौरान विपक्ष ने धार्मिक आस्था का मजाक उड़ाया, सनातन संस्कृति का अपमान किया और संत समाज का अनादर किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच व्यापार आज फिर से शुरू हो गया है। इसके साथ ही 6 साल से अधिक समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। व्यापार का फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। एक रिपोर्ट।
1: पूर्वी सिक्किम में 14,000 फुट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित नाथुला दर्रा सदियों से भारत को तिब्बत से जोड़ने वाले पुराने व्यापार मार्ग का एक प्रमुख हिस्सा रहा है। 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद बंद हुआ सीमा व्यापार 2006 में औपचारिक रूप से फिर से शुरू हुआ। 2020 में कोविड महामारी के कारण रोके जाने तक ये बिना किसी रुकावट के जारी रहा। इसका फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। सीमा व्यापार सोमवार से बृहस्पतिवार तक चलेगा। इसमें गेट सवेरे 7:30 बजे खुलेंगे और हर रजिस्टर्ड व्यापारी को हर दिन 2,00,000 रुपए तक का व्यापार करने की अनुमति होगी। गंगटोक से मैनाक चटर्जी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: बलूच यकजहती कमेटी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में चल रहे जन आंदोलन पर पाकिस्तानी अधिकारियों की क्रूर कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। समिति के अनुसार यह दमनकारी रवैया असहमति की आवाजों को कुचलने की व्यापक सरकारी नीति का हिस्सा है। पाकिस्तानी सेना की हिंसक कार्रवाई में 50 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। मौसम विभाग ने कल कर्नाटक, केरला, माहे, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। ओडिशा में महानदी का जलस्तर बढ़ने से कटकपुरी, जगत सिंहपुर, केन्द्रपाड़ा और खुर्दा जिलों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। हीराकुंड बांध से 22 फाटकों के माध्यम से बाढ़ का पानी छोड़ा जा रहा है। 10 निचले जिलों में हाई अलर्ट जारी है। 8,00,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि 2,59,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। केरलम में लगातार मूसलाधार बारिश के कारण भूस्खलन और जलभराव से जनजीवन अस्त व्यस्त है। मौसम विभाग ने आज 9 जिलों के लिए रेड अलर्ट और 5 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बारिश से 6 लोगों की मौत हो गई। प्रभावित जिलों में 65 राहत शिविरों में 1400 से अधिक लोगों को पहुंचाया गया है। और अब ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल की खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
2: राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने आज शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 स्वर्ण 3 रजत और 1 कांस्य पदक देश के नाम किए। मुक्केबाजी में भारत ने 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। प्रीति ने महिलाओं की 54 किलोग्राम प्रतियोगिता में कनाडा की स्कारलेट समाना डेल गाडो को 5-0 से हराया। वहीं जैस्मिन ने महिलाओं के 57 किलोग्राम भार वर्ग में माइकेला वॉल्श को 5-0 से शिकस्त देकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 55 किलोग्राम वर्ग में जादुमणि सिंह ने रजत पदक जीता।
3: काफी अच्छा लग रहा है, मेरा पहला कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल आया, तो काफी अगला कंपटीशन से और ज्यादा फोकस करूंगा और अच्छा आने वाला कंपटीशन में अच्छा मेडल लेऊं। मेडल मैं मेरे अंकल को दे दे करूंगा और BFI को, साई को और पूरा इंडिया जो हमारा टीम कोचेस है उन सबको दे दे करूंगा।
2: दिन का तीसरा स्वर्ण पदक आज एथलेटिक्स से जब सोनम राणा ने पुरुषों के शॉटपुट F57 वर्ग में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया। शुभम जुयाल ने रजत पदक जीता। पुरुषों के ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रावेल ने रजत पदक अपने नाम किया। सेल्वा प्रभु तिरुमरन ने कांस्य पदक हासिल किया।
0: इसके अतिरिक्त 7 भारतीय मुक्केबाज भी आज फाइनल में खेलेंगे। वॉल्ट फाइनल में देव कुमार मीणा और कुलदीप कुमार की चुनौती होगी। 5000 मीटर दौड़ के फाइनल में गुलवीर सिंह ट्रैक पर उतरेंगे। मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले फाइनल में भारतीय टीम खेलेगी। जम्मू और श्रीनगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 44 बंद होने के कारण रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए बडगाम और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह विशेष सेवा सड़क संपर्क बाधित होने से प्रभावित

0: यात्रियों को राहत देने और कश्मीर तथा जम्मू के बीच सुगम आवागमन सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र का शुभारंभ किया। उन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल में हुई प्रगति का श्रेय युवाओं को दिया। प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश में 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। केंद्र ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता के लिए 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की अग्रिम राशि जारी की। भारत और चीन ने सिक्किम के नाथुला दर्रे से सीमा पार व्यापार फिर से शुरू किया। ओडिशा में बाढ़ का प्रकोप जारी। केरलम में लगातार बारिश से तबाही, 6 लोगों की मौत। और राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी में जैस्मिन लैम्बोरिया तथा प्रीति पवार ने और पैरा एथलीट सोमन राणा ने शॉट पुट में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi inaugurates Swami Vivekanand Cultural Youth Centre in Mysuru, credits Indian youth for progress in science, technology and sports. Prime Minister launches development projects worth 18,000 crore rupees in Andhra Pradesh. Centre approves advance release of over 2,000 crore rupees as assistance to flood-affected states. India and China resume cross-border trade through Nathula Pass in Sikkim. Flood fury continues in Odisha, 6 people killed in Kerala as incessant rain causes widespread havoc. And in Commonwealth Games, boxers Jasmine Lamboria and Preeti Pawar win gold medals. Para-athlete Soman Rana bags gold in men's shot put F57. Prime Minister Narendra Modi has credited Indian youth for achieving progress in the areas of science, technology and sports and called upon them to contribute in the areas of cleanliness drive, conservation of water and natural resources, and gift Indian artifacts. He was speaking after inaugurating the Swami Vivekanand Cultural Youth Centre, Vivek Smarak, in Mysuru today. The Prime Minister emphasized that Swami Vivekanand's vision was to mentor our youth and empower them to work for nation building.
2: Swami Vivekanand ji युवाओं की शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का मजबूत आधार मानते थे। उन्होंने स्वयं ये देखा था कि कैसे दुनिया के देश अपने युवाओं को शिक्षित बना रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से तब भारत गुलाम था। भारत के युवा भी गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। उस दौर से लेकर अब तक भारत के युवा ने एक लंबी यात्रा तय की। भारत का जो युवा कभी जंजीरों में था, आज वो युवा दुनिया के विकास को गति दे रहा है। आज भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है। किसकी वजह से? भारत के युवाओं के सामर्थ्य से।
1: मिस्टर मोदी फर्दर सेड द कैपेबिलिटीज ऑफ आवर यूथ हैज ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया इनटू द सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल फोन मार्केट। New strides are being made in semiconductor manufacturing, innovations and in private sector space missions. Moreover, Mr. Modi underscored the progress achieved in the last 12 years in the field of education by establishing new universities and colleges, including ITIs, IIMs, IITs, AIMS, and increasing medical seats as well.
2: पिछले 12 वर्षों में 650 से ज्यादा नई यूनिवर्सिटीज बनी है। पिछले 12 वर्षों में करीब 14,000 नए कॉलेज बने हैं। 4,000 से ज्यादा नई ITI बनाई गई, 9 नए IIM, 7 नई IIT और 13 नए एम्स भी स्थापित किए गए हैं। आज देश में MBBS की सीटें करीब 1,40,000 हो चुकी है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 823 हो गई है।
1: Karnataka Chief Minister D.K. Shivakumar, Governor Thavarchand Gehlot and the President of Ramakrishna Math, Srimad Swami Gautamanandji Maharaj, were present on the occasion. Earlier in the day, Prime Minister Modi launched the

0: While Silva Prabhu earned bronze, President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Union Sports and Youth Affairs Minister Dr. Mansukh Mandviya congratulated the medal winners with Vikas Churagja from Sports Desk.
1: And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi inaugurates Swami Vivekanand Cultural Youth Centre in Mysuru, credits Indian youth for progress in science, technology and sports. Prime Minister launches development projects worth 18,000 crore rupees in Andhra Pradesh. Centre approves advance release of over 2,000 crore rupees as assistance to flood-affected states. India and China resume cross-border trade through Nathula Pass in Sikkim. Flood fury continues in Odisha, 6 people killed in Kerala as incessant rain causes widespread havoc. And in Commonwealth Games, boxers Jasmine Lamboria and Preeti Pawar win gold medals. Para-athlete Soman Rana bags gold in men's shot put F57. That is all in the news at 9. Good night.
2: Adab, ye Akashwani hai. Khabron ke saath main Shagufta Yasmeen. वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मैसूरू में स्वामी विवेकानंद कल्चरल यूथ सेंटर का इफ्तिताह किया और साइंस टेक्नोलॉजी और खेलों के शुबे में पेशरफ्त का सेहरा भारतीय नौजवानों को दिया। वजीर आजम ने आंध्र प्रदेश में 18,000 करोड़ रुपए मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया। मरकज ने सैलाब से मुतासर रियासतों के लिए इमदाद के तौर पर 2,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की पेशगी रकम जारी करने की मंजूरी दी है। सिक्किम में नाथुला पास के रास्ते भारत और चीन के दरमियान सरहदी तिजारत फिर शुरू हो गई है। उड़ीसा में सैलाब का जोर जारी है। केरलम में लगातार बारिश होने से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है और 6 अफराद की मौत हो गई है। और दौलत मुश्तरका खेलों में भारतीय मुक्केबाजों जैस्मीन लंबोरिया और प्रीति पवार ने सोने के तमगे जीते हैं, जबकि मर्दों के शॉटपुट F57 में पैरा एथलीट सोमन राणा ने भी सोने का तमगा हासिल किया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने साइंस टेक्नोलॉजी और खेलों के शोबे में पेशरफ्त में नुमाया रोल के लिए भारतीय नौजवानों की सताइश की है और उन पर जोर दिया है कि वो सफाई सुथराई की मुहिम, पानी की बचत और कुदरती वसाइल को महफूज रखने के शोबों में भी अपना रोल अदा करें और भारत में बनाई गई मसनूआत तोहफे में दें। जना मोदी आज मैसूरू में स्वामी विवेकानंद कल्चरल यूथ सेंटर विवेक स्मारक का इफ्तिताह करने के बाद इजहार ख्याल कर रहे थे। वजीर आजम ने जोर देकर कहा कि हमारे नौजवानों को राह दिखाना और मुल्क की तामीर के लिए काम करने की खातिर उन्हें बाइख्तियार बनाना स्वामी विवेकानंद का नजरिया था।
3: स्वामी विवेकानंद जी युवाओं की शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का मजबूत आधार मानते थे। उन्होंने स्वयं ये देखा था कि कैसे दुनिया के देश अपने युवाओं को शिक्षित बना रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से तब भारत गुलाम था। भारत के युवा भी गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। उस दौर से लेकर अब तक भारत के युवा ने एक लंबी यात्रा तय की। भारत का जो युवा कभी जंजीरों में था, आज वो युवा दुनिया के विकास को गति दे रहा है। आज भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है। किसकी वजह से? भारत के युवाओं के सामर्थ्य से।
2: जना मोदी ने कहा कि हमारे नौजवानों की सलाहियत की बदौलत भारत दूसरी सबसे बड़ी मोबाइल फोन मार्केट बन गया है। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, इख्तराआत और प्राइवेट सेक्टर के खलाई मिशन में नई नई पेशरफ्त हुई हैं। इसके अलावा जना मोदी ने आईटीआईज, आईआईएम्स, आईआईटीज और एम्स समेत नई यूनिवर्सिटियां और कॉलेज कायम करके नीज मेडिकल सीटों की तादाद में इजाफा करके तालीम के शोबे में गुज़श्ता 12 साल के दौरान की गई तरक्की को उजागर किया।
3: पिछले 12 वर्षों में 650 से ज्यादा नई यूनिवर्सिटीज बनी है। पिछले 12 वर्षों में करीब 14,000 नए कॉलेज बने हैं। 4,000 से ज्यादा नई आईटीआई बनाई गई, 9 नए आईआईएम, 7 नई आईआईटी और 13 नए एम्स भी स्थापित किए गए हैं। आज देश में एमबीबीएस की सीटें करीब 1,40,000 हो चुकी है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 800

0: 23 हो गई है।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आंध्र प्रदेश रियासत तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही है और मरकजी सरकार बड़े पैमाने के बुनियादी ढांचे और सनअती तरक्की के जरिए स्वर्ण आंध्रा और विकसित भारत के नजरिए को हकीकत की शक्ल देने के तई पूरी तरह अहदबंद है। भोगपुरम में अलूरी सीताराम राजू बैन अलावामी हवाई अड्डे का अफ्तताह करने के बाद एक जलसा आम से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि हवाई अड्डे सड़क और तवानाई से मुतालिक बुनियादी ढांचे समेत तकरीबन 18,000 करोड़ रुपए मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों से मरकज और रियासत में एनडीए सरकारों के तहत रियासत की तेज रफ्तार तरक्की की अक्कासी होती है। जना मोदी ने नए हवाई अड्डे को आंध्र प्रदेश खासतौर पर शिमाली आंध्र की तरक्की के रनवे और रियासत के नौजवानों की उमंगों के लिए एक लॉन्च पैड से ताबीर किया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने सैलाब से मुतासर रियासतों की मदद के लिए कुदरती आफात की सूरत में काम आने वाले रियासती फंड SDRF के लिए मरकज के हिस्से की 2,117 करोड़ रुपए से ज्यादा की पेशगी रकम जारी करने की मंजूरी दी है। सैलाब से मुतासर 7 रियासतों में से हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और नागालैंड को इससे कबल माली साल 2026-27 के लिए SDRF की पहली किस्त मौसूल हुई थी। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: मुतासर रियासतों के लिए जिस इमदाद की मंजूरी दी गई है उसमें माली साल 2026-27 के लिए पहली किस्त की पेशगी रकम के तौर पर अरुणाचल प्रदेश के वास्ते 44,55,00,000 रुपए शामिल हैं। आसाम के लिए पहली किस्त के तौर पर 79,35,00,000 रुपए मंजूर किए गए हैं, जबकि गुजरात के लिए 500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। हिमाचल प्रदेश को पहले ही इमदाद की पहली किस्त मिल चुकी है और अब दूसरी किस्त की पेशगी रकम के तौर पर 193,95,00,000 रुपए मंजूर किए गए हैं, जबकि उड़ीसा के लिए 500 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त मंजूर की गई है। इसके अलावा महाराष्ट्र के लिए पहली किस्त की पेशगी रकम के तौर पर 500 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। उम्र दाखिला की वजारत ने कहा है कि मानसून की बारिश का सिलसिला शुरू होने के बाद से हुकूमत रियासती सरकारों के साथ करीबी तालमेल कायम रखते हुए सैलाब की सूरत हाल पर लगातार नजर रखे हुए है। वजारत ने यह भी कहा है कि सरकार ने जहां कहीं भी जरूरत पेश आई हर मुमकिन इमदाद फराहम की है। इसमें कुदरती आफात की सूरत में काम करने वाली फोर्स NDRF की टीमों को पहले से तैनात करना और दिफा की वजारत की तरफ से लॉजिस्टिक्स मदद फराहम करना शामिल है। दिल्ली से प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
1: सिक्किम में नाथुला पास के रास्ते भारत और चीन के दरमियान सरहदी तिजारत आज सुबह से फिर शुरू हो गई है। गुजश्ता 6 साल से ज्यादा अरसे से ही मुअत्तल थी। इस तिजारत का दोबारा शुरू होना भारत और चीन के दरमियान बाहमी राब्तों में एक मुस्बत अलामत है। हमारे नामा निगार ने बताया कि भारत और चीन दोनों मुल्कों के अहदेदारों ने आज सुबह उस मुकाम पर मुलाकात की जो दोनों में से किसी के भी कब्जे में नहीं है। चीन की नुमाइंदगी कॉमर्स और सरहदी तिजारत के महकमों के नुमाइंदों समेत तिब्बत खुद मुख्तार खित्ते के इंतजामी सरबराह ने की। पेश है एक रिपोर्ट।
3: सरहद के दोनों तरफ तिजारत की बहाली भारत और चीन के दरमियान बाहमी राब्ते के सिलसिले में एक मुस्बत कदम है। 1962 में भारत चीन महाज आराई के पेशे नजर बंद रहने के बाद 2006 में सरहदी तिजारत बाजाब्ता तौर पर बहाल की गई थी और 2020 में कोविड-19 वबा के सबब मुअत्तल किए जाने से पहले बिला रुकावट जारी रही। ये सरहदी तिजारत पीर से जुमेरात तक अंजाम दी जा सकेगी और भारतीय वक्त के मुताबिक सुबह 7:30 बजे गेट खोले जाएंगे और हर इंदराज शुदा ताजिर को रोजाना की बुनियाद पर 2,00,000 रुपए की तिजारती सरगर्मियां अंजाम देने की इजाजत होगी। अहदेदारों ने इस बात की तस्दीक की है कि मंजूर शुदा दर आमदाती और बर आमदाती अशिया की मौजूदा फहरिस्त और कामकाज के मेयारी जाब्तों में कोई तब्दीली नहीं की गई है। गंगटोक से मैनाक चटर्जी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शोएबा।
1: सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर जगत प्रसाद नड्डा ने पोस्ट ग्रेजुएट 2026 के लिए कौमी एहलियत दाखिला इम्तिहान की तैयारियों का आज जायजा लिया ताकि बिला रुकावट महफूज शफाफ और टेक्नोलॉजी पर मबनी इम्तिहान को यकीनी बनाया जा सके। ये इम्तिहान इस माह की 30 तारीख को होगा। मीटिंग के दौरान वजीर मौसूफ ने तिब्बी साइंस से मुतालिक इम्तिहानात के कौमी बोर्ड टेक्नोलॉजी शराकतदारों और उन दीगर मुतालिका फरीकों की तैयारियों का जायजा लिया जो इम्तिहान के इनेकाद से मुंसलिक हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं।

ओडिशा में महानदी और उसकी मुआविन नदियों में तोगयानी के साथ सैलाब की सूरत हाल बदस्तूर संगीन बनी हुई है, जिससे कटक, पुरी, जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा और खोरदा अजला के नशेबी इलाकों को एक बार फिर खतरा लाहक हो गया है। 10 नशेबी अजला मुसलसल हाई अलर्ट पर हैं, क्योंकि हीराकुंड बांध से 22 गेट के जरिए सैलाब का पानी छोड़ा जा रहा है। 8 लाख से ज्यादा अफराद मुतासर हैं, जबकि 2,69,000 से ज्यादा लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाया गया है। केरलम में लगातार बारिश होने से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। चट्टानों के टुकड़े गिरने के वाकयात पेश आए हैं और कई इलाकों में पानी भर गया है। कुटायम, उडुकी और मलापुरम जिलों से आज बारिश से वाबस्ता 6 अमवात की इत्तला मिली है, जबकि 6 अफराद अब भी लापता हैं। जम्मू और श्रीनगर के दरमियान जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह NH 44 के बंद होने के पेश नजर रेलवे ने फंसे हुए मुसाफिरों को सहूलत फराहम करने और रेलवे स्टेशनों पर भीड़भाड़ से निमटने के लिए बडगाम और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के दरमियान एक खसूसी रेलगाड़ी चलाने का फैसला किया है। आकाशवाणी जम्मू के नामालीगढ़ ने खबर दी है कि शाहराह बंद होने के बाद श्रीनगर और श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशनों पर मुसाफिरों की बढ़ती तादाद के पेश नजर कमर्शियल कंट्रोल जम्मू तवी की दरखास्त के बाद यह फैसला किया गया है। मरकजी सरकार ने टैक्स मुंतकली की एक इजाफी किस्त के तौर पर रियासती सरकारों के लिए 1,09,019 करोड़ रुपए से ज्यादा जारी किए हैं, जो 10 अगस्त के लिए तयशुदा महाना मुंतकली के अलावा हैं। एक बयान में वजारत खजाना ने कहा है कि इस इजाफी किस्त का मकसद रियासतों को सरमाया अखराजात और तरक्याती अखराजात के अमल में तेजी लाने के लिए मजीद सहूलत फराहम करना है। वजारत की जानिब से मुख्तलिफ रियासतों के लिए जारी किए गए अलहदा अलहदा दादोशुमार के मुताबिक उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा 19,208 करोड़ रुपए मौसूल हुए हैं, जबकि बिहार को 10,845 करोड़ रुपए और मध्य प्रदेश को 8,010 करोड़ रुपए मिले हैं। उधर मगरबी बंगाल को 7,866 करोड़ रुपए मौसूल हुए हैं, जबकि महाराष्ट्र को 7,022 करोड़ रुपए मिले हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प के लिए नशा मुक्त युवा अभियान का आगाज करेंगे। मुनशियात के खिलाफ 100 हफ्तों की मुल्कगीर जन भागीदारी मुहिम शुरू होने के मौके पर इसका आगाज हो रहा है। इस प्रोग्राम में 10,000 से ज्यादा मकामात से मुल्क भर के नौजवान हिस्सा लेंगे। मजकूरा मुहिम के तहत पूरे मुल्क में हर इतवार को हफ्तेवार सरगर्मियों का अहतमाम किया जाएगा, ताकि बेदारी को फरोग देने और एक ऐसा मुआशरा बनाने में अवाम की शमूलियत की हौसला अफजाई की जा सके, जहां मुनशियात की लानत ना हो। एयर मार्शल तेजपाल सिंह ने आज फजाइया के नायब सरबराह की जिम्मेदारी संभाल ली है। इस मौके पर उन्होंने कौमी जंगी यादगार पर गुलदायरा नजर किया और मुल्क की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले बहादुर सूरमाओं को खिराज अकीदत पेश किया। 16 जून 1990 को एक फाइटर पायलट के तौर पर फजाइया में शामिल हुए एयर मार्शल तेजपाल सिंह को 3,500 से ज्यादा घंटों की परवाज का तजुर्बा है। वो कैट ए क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर और एक एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट हैं। एयर मार्शल तेजपाल सिंह भारतीय फजाइया में अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। आज दिल्ली बीजेपी ने लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी, आजाद रुकने पार्लियामेंट राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट अवधेश प्रसाद और दीगर मुतालिका लोगों के खिलाफ कल पार्लियामेंट के अहाते में मुबैना तौर पर मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने के सिलसिले में एक शिकायत दर्ज की है। नई दिल्ली की रुकने पार्लियामेंट बांसुरी स्वराज की क्यादत में बीजेपी के वफद ने अपोजिशन लीडरान के खिलाफ FIR दर्ज किए जाने का मुतालबा किया। ग्लासगो में दौलत मुश्तरका खेलों में तमगों की तादाद 30 होने के बाद भारत आज छठे मकाम पर पहुंच गया। भारत ने सोने के 8, चांदी के 15 और कांसे के 7 तमगे जीते हैं। भारतीय मुक्केबाजों जैस्मीन लंबोरिया और प्रीति पवार ने अपने अपने फाइनल मुकाबले में सोने के तमगे जीते। प्रीति ने खवातीन के 54 किलोग्राम के जुमरे में कैनेडा की स्कारलेट डेलगाडो को 5-0 से हराकर खिताब जीता। मौजूदा आलमी चैंपियन जैस्मीन ने खवातीन के 57 किलोग्राम के जुमरे में शिमाली आयरलैंड की मिशेला वाल्श को 5-0 से शिकस्त दी। पैरा एथलेटिक्स में मर्दों के शॉटपुट F50

सेवन मुकाबले में सुमन राणा ने सोने का और शुभम जोयाल ने चांदी का तमगा जीता। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मैसूरू में स्वामी विवेकानंद कल्चरल यूथ सेंटर का इफ्तिताह किया और साइंस, टेक्नोलॉजी और खेलों के शोबे में पेशरफ्त का सिहरा भारतीय नौजवानों को दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने आंध्र प्रदेश में 18,000 करोड़ रुपए मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया। मरकज ने सैलाब से मुतासर रियासतों के लिए इमदाद के तौर पर 2,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की पेशगी रकम जारी करने की मंजूरी दी है। सिक्किम में नाथुला पास के रास्ते भारत और चीन के दरमियान सरहदी तिजारत फिर शुरू हो गई है और दौलत मुश्तरका खेलों में भारतीय मुक्केबाजों जैस्मीन लंबोरिया और प्रीति पवार ने सोने के तमगे जीते हैं, जबकि मर्दों के शॉर्ट पुट F57 में पैरा एथलीट सुमन राणा ने भी सोने का तमगा हासिल किया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

आकाशवाणी की अखिल भारतीय साहित्य पत्रिका साहित्य भारती में आपका स्वागत है। ये पत्रिका शब्दों की उस यात्रा का हिस्सा है जो हमारी भाषाओं, हमारे साहित्यकारों और हमारी राष्ट्रीय चेतना को आपस में जोड़ती चलती है। आज के अंक में हम काव्य से लेकर गद्य तक, वीरता से लेकर भाषा एकता तक और वर्तमान से लेकर स्मृतियों तक एक संश्लिष्ट यात्रा करेंगे। करगिल की चोटियां आज भी उस अदम्य साहस की गवाह हैं, जब हमारे सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति देकर मातृभूमि की रक्षा की थी। करगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में आज के संपादकीय में हम प्रस्तुत कर रहे हैं एक काव्यांजलि, काव्य अनुगूंज उस विजय की। विजय केवल युद्ध भूमि में प्राप्त होने वाला एक परिणाम नहीं, बल्कि राष्ट्र के स्वाभिमान, साहस और त्याग का अमर घोष है। करगिल विजय दिवस हमें उन वीर सैनिकों की अदम्य वीरता का स्मरण कराता है जिन्होंने दुर्गम हिम शिखरों पर अपने प्राणों की आहुति देकर भारत की अस्मिता की रक्षा की। युद्ध के इतिहास में तलवारें और बंदूकें विजय का मार्ग प्रशस्त करती हैं, किंतु विजय को अमरत्व शब्द देते हैं। यही कारण है कि भारतीय काव्यधारा में वीर रस केवल उत्साह का संचार नहीं करता, बल्कि राष्ट्र चेतना को जागृत भी करता है। कवियों ने समय समय पर अपनी लेखनी से उन वीरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है जिनके बलिदान ने स्वतंत्रता और अखंडता की रक्षा की। ये सभी ज्ञात अज्ञात सैनिकों के प्रति राष्ट्र की सामूहिक कृतज्ञता का स्वर है जो हर मौसम, हर परिस्थिति और हर चुनौती के बीच हमारी सुरक्षा के प्रहरी बने खड़े हैं। देश के सैनिकों से कविता में कवि हरिवंश राय बच्चन कहते हैं, फतह तिरंग आज क्यों न फिर गड़े, जगत प्रसिद्ध शूर सिद्ध तुम सभी, जवान हिंद के अडिग रहो डटे, न जब तलक निशान शत्रु का हटे, हजार शीश एक थौर पर कटे, जमीन रक्त रुंड मुंड से पटे, तजो न सूचिकाग्र भूमि भाग भी। युद्धरत सीमाओं पर सैनिकों को विदा करने का भाव दर्ज करते हुए कवि आमिर हमजा ने लिखा है, चौतरफा गूंजते सायरन के बीच जंग में जाते एक हथियार बंद सिपाही को सरेराह गले लगाने वाली स्त्री, जो उसकी माँ हो सकती है या कि बहन, प्रेमिका हो सकती है या कि दोस्त या कि फिर पत्नी, उससे बेहतर भला कौन जान सकता है कि हर अलविदा एक यात्रा की समाप्ति है। इसी तरह एक और बेहद भावपूर्ण कविता की इन पंक्तियों में, जिनका अनुवाद किया है रमेश कौशिक ने, कवि अलेक्जेंडर प्रोकोफ्येव कहते हैं, किंतु

सैनिक क्रांतिकारी चीखता है, मर नहीं सकता कभी मैं नहीं अब तक मरा हूँ, मैं मरूंगा भी नहीं। तभी थर्राहट हुई, दीवार जो घेरे हुए थी उसमें दरारें पड़ गईं और सैनिक के हृदय से सेब तरु की शाख फूटी। फिर बड़ी हो वो खुशी से झूमती है मकबरे पर और गुलाबी श्वेत फल उस पर गिराती है। सैनिक के हृदय की शिरा अब तक धड़कती है। इसी क्रम में एक सशक्त भोजपुरी गीतकार और कवि राम जियावन दास बावला ने लिखा, करगिल न कुल कश्मीर छोड़ भागू, बापू का हमरे जगीर छोड़ भागू, भाई समझ के जुगवली बहुत हम, आगी लगवले मड़ैया में, छोड़त न बच्चू लड़ैया में, कसके कमरिया अखाड़े जवनवा, उमड़ल बा भीर जस बरसे सवनवा, के बावला मति मरले बा तोहरी, डाकेले ताती तलैया में, छोड़ब न बच्चू लड़ैया में। और हमारे समय के बहुत बड़े कवि रामधारी सिंह दिनकर ने वीर सैनिकों की प्रशस्ति में कहा, जाग रहे हम वीर जवान, जियो जियो जय हिंदुस्तान, हम प्रभात की नई किरण हैं, हम दिन के आलोक नवल, हम नवीन भारत के सैनिक, धीर वीर गंभीर अचल, हम प्रहरी ऊंचे हिमाद्र के, सुरभि स्वर्ग की लेते हैं, हम हैं शांति दूत धरनी के, छां सभी को देते हैं, वीर प्रसू माँ की आंखों के, हम नवीन उजियाले हैं, गंगा यमुना हिंद महासागर के हम रखवाले हैं, तन मन धन तुम पर कुर्बान, जियो जियो ए हिंदुस्तान।

0: वीरता की अनुगूंज हमें याद दिलाती है कि राष्ट्र केवल भूमि से नहीं बल्कि उसकी विविधता में एकता से बनता है, और इस एकता का सबसे सुंदर माध्यम है भाषा। भारत जैसे बहुभाषी देश में हर भाषा हर बोली एक सेतु का काम करती है, जो हमें एक दूसरे से और राष्ट्र की सामूहिक चेतना से जोड़ती है। इसी विचार पर केंद्रित है हमारी अगली प्रस्तुति, भाषाओं का सेतु, राष्ट्र का स्वर। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कोंकणी मराठी साहित्यकार श्री दामोदर मावजो इस विषय पर कहते हैं,
1: भाषा एवं साहित्य अपनी संस्कृति की महत्वपूर्ण पहचान होती है। कोई भी भाषा हो, हमारे विविधताओं से भरे भारत देश की ज्यादातर भाषाओं में वाचन लेखन संभाषण जारी रखकर भाषा वृद्धि तथा समाज समृद्धि को बढ़ावा देना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा भाषाओं का ज्ञान हमें प्राप्त होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा भाषाओं में वाचन लेखन संभाषण जारी रखना चाहिए। भाषा राष्ट्रीय एकात्मता सबल और संपन्न हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है।
0: स्वरांश सौजन्य, आकाशवाणी पणजी। इसी विचार बिंदु को आगे बढ़ा रहे हैं केंद्रीय हिंदी निदेशालय नई दिल्ली के निदेशक प्रोफेसर हितेंद्र मिश्र।
2: भाषाएं संवाद के लिए एक उपयोगी टूल्स के रूप में काम करती हैं, लेकिन केवल टूल्स ही नहीं होती, इनके साथ संस्कृति, समाज, लोगों के अपने जुड़ाव, लोगों की अपनी परंपराएं, लोगों के अपना अस्तित्व, सब कुछ का जुड़ा हुआ होता है। इसलिए भाषाएं जो जोड़ती हैं, जुड़िया काम करती हैं, वो केवल भाषाई आधार पर ही नहीं करती हैं, बल्कि वो सांस्कृतिक, सामाजिक सभी आधारों पर लोगों को जोड़ती हैं। और स्वतंत्रता आंदोलन में जो स्वतंत्रता आंदोलन की व्यापकता थी, जो उसे विस्तार मिला, जो उसे प्रचार प्रसार मिला, उस प्रचार प्रसार में भाषा की भूमिका सबसे अधिक केंद्रीय और अग्रणी भूमिका है। इस रूप में हम भाषा को देखते हैं और बस एक कह सकते हैं कि भारत में जो भाषाई वैविध्य है, इस भाषाई वैविध्य के साथ भी, लेकिन भारत में भाषाई वैविध्य जरूर है, लेकिन भारत में सांस्कृतिक एकता, जो जुड़ने के तार हैं आपस में लोगों की, वह एक है। हम सभी भारतीय हैं, इसलिए भाषाएं अलग होते होते भी हमारे भाव एक है, और इस भाव की जो एकता है वह हमें राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के समय में बड़े महत्व

मूल रूप से दिखाई देती है। इसलिए पहली बार जब अंग्रेजों का आगमन होता है और अंग्रेज भारत में अपनी सत्ता स्थापित करते हैं मुगलों की सत्ता को विस्थापित करते हुए, तब हम देखते हैं कि उस समय जो हम लेखन है उस लेखन का तरीका अलग है। लेकिन जब वो यहाँ के लोगों पर शासन करना और निरंकुशता और यहाँ के लोगों के साथ अत्याचार करना शुरू करते हैं, तब उनकी नीति और उनका कार्य पद्धति बदल जाती है। दोनों में जो पत्रकारिता है, जो भाषा है, जो हमारी भूमिकाएं हैं, वो अलग अलग ढंग से दिखाई देती हैं। इसकी ताकत भी है और विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वह हम हिंदी की बात करें, चाहे हम बंगला की बात करें, चाहे मराठी की बात करें, चाहे गुजराती की बात करें, तमिल की बात करें, इन सभी भाषाओं में स्वाधीनता आंदोलन के लिए स्वर उठे और मजबूती के साथ खड़े हुए और देश को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया।

कार्य पद्धति बदल जाती है। दोनों में जो पत्रकारिता है, जो भाषा है, जो हमारी भूमिकाएं हैं, वो अलग अलग ढंग से दिखाई देती हैं। इसकी ताकत भी है। और विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे हम हिंदी की बात करें, चाहे हम बंगला की बात करें, चाहे मराठी की बात करें, चाहे गुजराती की बात करें, तमिल की बात करें, इन सभी भाषाओं में स्वाधीनता आंदोलन के लिए स्वर उठे और मजबूती के साथ खड़े हुए और देश को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया। और भारत में पत्रकारिता की शुरुआत ही व्यवस्था के निरंकुश, व्यवस्था के व्यभिचारी, व्यवस्था के कदाचरण के विरुद्ध खड़ी हुई पत्रकारिता के रूप में भारत में पत्रकारिता विकसित हुई है। हम पहले ही पत्र से अगर देखें तो हम देखते हैं कि वह सत्ता के जो गलत मंशा है उसके खिलाफ पत्रकारिता खड़ी होती है। वह पत्रकारिता चाहे हिंदी की हो चाहे अन्य भाषाओं की हो, हिंदी उसमें एक प्रमुख भाषा थी, हिंदी एक बड़ी भाषा थी क्योंकि बोलने वाले समुदाय का व्यापकत्व ज्यादा था। तो देखें तो हिंदी में तमाम पत्र पत्रिकाएं थी, जिसमें प्रताप एक महत्वपूर्ण पत्र था जिसे गणेश शंकर विद्यार्थी निकालते थे, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा संपादित अभ्युदय, माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा संपादित हिंदी का कर्मवीर, बंगला में हम देखें तो अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष ने संपादित की, मराठी में तो पत्रकारों की और पत्रिकाओं की सीरीज है पूरी, अगर संक्षेप में चर्चा करें तो केसरी जो प्रतिनिधि पत्र है मराठी का, बाल गंगाधर तिलक ने उसको संपादित किया, स्वयं महात्मा गांधी ने गुजराती में नवजीवन नाम का पत्र निकाला, स्वदेश मित्रन तमिल में सुब्रमण्य अय्यर ने निकाला, उर्दू में मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ने अल हिलाल नाम का पत्र निकाला। और इन सभी पत्र पत्रिकाओं को आप लेकर के देखें तो इन पत्र पत्रिकाओं का एक ही मंशा थी, वह मंशा थी कि भारत में स्वाधीनता की स्थापना करना। और यह स्वाधीनता सिर्फ राजनीतिक नहीं थी, यह स्वाधीनता स्वदेशी, स्वदेश के प्रति एक प्रेम के जागरण की स्वाधीनता थी, जिसमें इन पत्रिकाओं ने अंग्रेजी नीतियों की आलोचना की, लोगों में जनमत तैयार किया, स्वदेशी के प्रति लोगों की में रुचि जागृत की, और इन सब के बाधक तत्व जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को खड़ा करने का काम किया। राष्ट्रीय आंदोलन विभिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार चल रहा है इसकी सूचना इन पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से लोगों तक पहुंचती थी। पत्र पत्रिकाएं वे साधन थे जिनके माध्यम से हम पूरे देश को एक साथ जोड़ पा रहे थे। आप देखेंगे कि यह समय था, यह दौर था जब अखबारों की एक आवाज पर लाखों लोग सड़क पे इकट्ठा हो जाते थे। यह अखबारों के प्रति, पत्र पत्रिकाओं के प्रति लोगों का विश्वास था। लोगों को यह लग रहा था कि पत्र पत्रिकाएं, ये अखबार हमारे लिए काम कर रहे हैं, हमारी स्वाधीनता के लिए काम कर रहे हैं, हमारे देश के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए लोगों का विश्वास जीतकर पत्र पत्रिकाएं इस देश को एकता के सूत्र में बांधने का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। हम भारतीय मेधा को, भारतीय जो हमारी इंटेलिजेंसिया है, इसको हम किस तरह से पीछे के समय से लेकर के बाहर आए हैं और हमारी क्या आवश्यकताएं हैं और हम पीछे किस प्रकार स्वाधीनता आंदोलन में हम इनके माध्यम से पूरे देश को एक सूत्र में बांध सके थे, इस सबकी पूरी मुकम्मल जानकारी अनेक आयामों, अनेक विषयों, अनेक संदर्भों के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर दिया जा रहा है। जो कॉलोनियल माइंडसेट है, जो अंग्रेजों का एक माइंडसेट था, उस तरह के जो माइंडसेट को लेकर के हम जब चर्चा करते हैं तो हम यह देखते हैं कि उसके पीछे उनकी मंशा क्या थी, उसके पीछे उनका उद्देश्य क्या था। वह उद्देश्य था भारत पे अधिकतम समय तक शासन करना, यहाँ की संपदा को लूटना, यहाँ के संसाधनों को लूटना, अपने यहां ले जाना, और हमारे संसाधनों का जितना दोहन इस समुदाय ने किया, जिसे हम ब्रिटिश नाम से कहते हैं, वह लोगों को जानना चाहिए। और वह जानने का माध्यम यही है कि हम स्वतंत्रता आंदोलन के समय की पत्रकारिता की चर्चा करें, उस समय के इतिहास की चर्चा करें, उस समय के ज्ञान संपदा की चर्चा करें, उस समय हमारी स्कूलिंग सिस्टम की चर्चा करें, उस समय की हमारी सारी व्यवस्था, जो समाज की व्यवस्था थी, उसकी चर्चा करें, न्याय प्रक्रिया की चर्चा करें, तो लोगों में यह बात बहुत स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगी कि जो 200 वर्ष बीता हमारा अंग्रेजी शासनकाल में, वो किस प्रकार का बीता। और इसलिए स्वतंत्रता आंदोलन भारत की एक बड़ी ही महत्वपूर्ण और अनिवार्य आवश्यकता थी जो एक समय में खड़ी हुई, और उसके आंदोलन के जरिए ही हम इस बड़े अपने अवरोधक तत्व को, जो हमारे विकास में, हमारे ज्ञान के क्षेत्र में जो बाधक था, उसे हम हटा सके। इसलिए तमाम तरह की जानकारियां दी जानी चाहिए और अनेक प्रकार से दी भी जा रही हैं। भाषा को लेकर के हमारा काम, जो निदेशालय का काम है हमारा, उसका जो मैंडेट है वो प्रोपगेशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज है।

0: उसके माध्यम से हम भाषाई परिवारों की संकल्पना के माध्यम से, हम भाषाई एकता के माध्यम से, हम सांस्कृतिक संदर्भों को पढ़ने और समझने की कोशिश करते हैं और लोगों के बीच जाकर के उसकी चर्चा करते हैं। हम तमाम प्रकार की संगोष्ठियां आयोजित करते हैं और विशेष करके जो हिंदी क्षेत्र से इतर क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में उन क्षेत्र के लोगों को हम भारत के साथ उनके कैसे सामाजिक सांस्कृतिक संबंध हजारों हजार वर्षों से रहे हैं इसे एस्टेब्लिश करने का प्रयास करते हैं, जिससे भारत में एकता, एकात्मकता और एकीकरण का भाव हम प्रत्येक समुदाय प्रत्येक व्यक्ति के बीच जागृत कर सकें।
1: भाषाओं की इस विविधता में जब राष्ट्र प्रेम शब्दों में ढलता है तो वो कालजयी बन जाता है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की महाकाव्य कृति भारत भारती ऐसी ही एक रचना है जिसने पीढ़ी दर पीढ़ी भारतीयों के हृदय में राष्ट्र प्रेम की ज्वाला प्रज्वलित रखी है। थोड़े शब्दों में गहन भाव समेटे इस कृति पर आधारित है हमारी अगली प्रस्तुति, लघु रूपक अत्यल्प में संपूर्ण।
2: किसी राष्ट्र के स्वाभिमान की वास्तविक संचेतना का पुनरुत्थान राजनीतिक मंचों से नहीं बल्कि किसी निष्ठावान साधक की लेखनी से मिश्रित होता है। सन 1912 का वो दौर जब औपनिवेशिक सत्ता के दंश से संपूर्ण भारतवर्ष की चेतना सुप्त पड़ी थी, तब झांसी के चिरगांव से एक ऐसी आवाज गूंजी जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला कर रख दी। एक ऐसी अमर कृति जिसने बहुत कम शब्दों में यानी अत्यल्प में पूरे भारत के गौरव, उसकी चेतना और उज्जवल भविष्य के सपनों को समेट लिया। भारत भारती अत्यल्प में संपूर्ण, और इसे अपनी लेखनी से रचा था राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने। तीन खंडों की इस कृति में मैथिली शरण गुप्त ने भारतवर्ष के त्रिकाल का संपूर्ण दर्शन उखेर दिया। भारत भारती का पहला खंड था अतीत खंड। वो पन्ने केवल कविता नहीं थे, वो सोई हुई कौम को जगाने के लिए ऋषियों की वाणी की तरह गूंजे थे।
1: उन्नत रहा होगा कभी जो हो रहा अवनत अभी, जो हो रहा अवनत अभी उन्नत रहा होगा कभी, हंसते प्रथम जो पद्म है तम पंख में फंसते वही, मुरझे पड़े रहते कुमुद जो अंत में हंसते वही, उन्नति तथा अवनति प्रकृति का नियम एक अखंड है, चढ़ता प्रथम जो व्योम में गिरता वही मारतंड है, अतएव अवनति ही हमारी कह रही उन्नति कला, उत्थान ही जिसका नहीं उसका पतन ही क्या भला।
2: मैथिली शरण गुप्त का राष्ट्रप्रेम केवल अतीत के यशोगान तक सीमित रहने वाला भावुकता का संजाल नहीं था। भारत भारती की वास्तविक अग्नि उसके वर्तमान खंड में धधक रही थी।
1: तुम सभ्य हो मार्केट जिनका सात सागर पार है, पर ग्राम की वो हाट ही उनका बड़ा बाजार है। तुम हो विदेशों से मंगाते माल लाखों का यहाँ, पर वे अकिंचन नमक गुड़ ही मोल लेते हैं वहाँ। तुम दार्शनिक हो ईश का अस्तित्व सत्य न मानते है, भूत प्रेतों से अधिक वे भी न उसको जानते। हा देव इस ऋषि भूमि का ये आज कैसा हाल है, तू काल सचमुच काल ही है क्रूर और कराल है।
2: गुप्त ने जब औपनिवेशिक गुलामी के दंश, हमारी आपसी फूट और सामाजिक शिथिलता पर लेखनी चलाई तो पंक्तियां कविता ना रहकर सोई हुई चेतना पर एक करारा वैचारिक वज्रपात बन गई। वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर महेश कटारे कहते हैं,
3: एक समय पर भारत भारती की ही स्थिति थी कि वो काव्य एक समय पर राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का घोषणा पत्र जैसा हो गया था और आम जन के बीच में बहुत ही लोकप्रिय पुस्तक रही थी। वह ये हिंदी की पहली कृति थी जिसने राष्ट्रीयता के प्रसार प्रचार में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था।
2: प्रभात फेरियों से लेकर स्वाधीनता संग्राम

0: की गुप्त बैठकों तक भारत भारती की पंक्तियां आजादी के दीवानों का पाथेय बन गई। इसी अप्रतिम जनचेतना और अनूठी राष्ट्र सेवा को देखते हुए सन 1936 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि के अमर समादर से अलंकृत किया।
1: हे नव युवाओं, देश भर की दृष्टि तुम पर ही लगी है, मनुष्य जीवन की तुम्ही में ज्योति सबसे जगमगी। दोगे न तुम तो कौन देगा योग देशोद्धार में, देखो कहां क्या हो रहा है आजकल संसार में। सुख शांति में सरकार का शासन समय है अब यहाँ, सुविधा समुन्नति के लिए है प्राप्त हमको सब यहाँ। अब भी न यदि कुछ कर सके हम तो हमारी भूल है, अनुकूल अवसर की उपेक्षा फूलती फिर शूल है।
0: भारत भारती का तीसरा और अंतिम खंड, भविष्यत खंड, मात्र एक राजनीतिक आजादी की मांग नहीं था, बल्कि वो संपूर्ण मानव जाति के कल्याण, ज्ञान विज्ञान की उन्नति और विश्व बंधुत्व का संकल्प था। वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर राजरानी शर्मा बताती हैं,
2: हमारे राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने हमें आदर्श की ओर उन्मुख किया। भारत भारती काव्य उन्होंने रचा और किस प्रकार से जीवन की संचेतना को उभारता है, देशभक्ति जगाता है, हमें हमारे अतीत के गौरव से मिलवाता है, वर्तमान का स्वरूप दिखाता है और भविष्य की राह बताता है।
0: भौतिक साम्राज्य नष्ट हो जाते हैं, शासकों के आदेश पन्नों में सिमट जाते हैं, किंतु राष्ट्र चेतना के प्रांगण में रोपे गए शब्द अजर अमर रहते हैं। भारत भारती केवल एक ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं, ये भारतीय संविधान संग्राम की वैचारिक पीठिका है जिसने हमारी सांस्कृतिक अस्मिता को अक्षुण रखा है। साहित्य मनीषी KBL पांडे कहते हैं,
3: भारत भारती को याद करना न केवल इसलिए जरूरी है कि वो उस समय की एक प्रमुख पुस्तक है, बल्कि इसलिए कि स्वातंत्र्य चेतना की प्रेरणा के रूप में उसका मुख्य स्थान है। हम जब अपने त्रासद वर्तमान से मुक्ति कामना के लिए संघर्ष करते हैं तो हमारे साथ हमारा वर्तमान ही नहीं होता, बल्कि हमारा प्रेरक और गर्वीला अतीत भी होता है और नए सूर्योदय के भविष्य का प्रकल्प भी होता है। जब हम समय के इन तीनों आयामों के बोध से संपन्न होते हैं तो रचना की समग्रता के विचार में होते हैं, यानी जो हम करना चाहते हैं उसके प्रति हमारी पूरी दृष्टि होती है काल के तीनों आयामों के साथ।
0: राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का ये कालजयी शब्द शिल्प आज भी हमें यही स्मरण कराता है कि स्वदेश प्रेम ही हर राष्ट्र का शाश्वत प्राण तत्व है।
1: आलेख और वाचन प्रांजल, स्वरांश सौजन्य, आकाशवाणी ग्वालियर। राष्ट्र कवि की कविता के स्वर अभी थमे भी नहीं कि हमें याद आते हैं एक और कालजयी रचनाकार प्रेमचंद, जिनके कलम ने केवल कहानियां ही नहीं लिखी, आजादी के सपनों को भी शब्द दिए। उनकी महान कृतियों में बसा वतन का दर्द और आजादी की आकांक्षा आज भी उतनी ही जीवंत है। उदाहरण के लिए सोजे वतन, जिसकी रचना प्रेमचंद ने नवाब राय के नाम से की थी। सुनते हैं हमारी अगली प्रस्तुति कलम का दम और सोजे वतन।
4: तारीख अक्सर युद्ध भूमि की चीखों, तोपों की गूंज और साम्राज्यों के ढहने का हिसाब रखता है, लेकिन किसी राष्ट्र के स्वाभिमान की वास्तविक इबारत किसी निष्ठावान साहित्यकार की मेज पर रखी स्याही से निस्तृत तो होती है। सन 1908 का वो दौर याद कीजिए जब आजादी केवल एक राजनीतिक मांग नहीं बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष की आत्मा की आकुलता बन चुकी थी। ठीक उसी दौर में हमीरपुर की एक शांत मेज पर जन्म होता है सोजे वतन का। रचनाकार नवाब राय यहां सोज केवल एक शब्द

0: नहीं बल्कि पराधीनता के दंश से पीड़ित किसी स्वाभिमानी हृदय की वो अंतर्वेदना है जिसने आगे चलकर पूरे ब्रिटिश साम्राज्य की नींद उड़ा दी। इसमें शामिल अमर रचनाएं, दुनिया का सबसे अनमोल रतन शेख मखमूर, यही मेरा वतन है, शोक का पुरस्कार और सांसारिक प्रेम और देश प्रेम केवल कहानियां नहीं थी बल्कि पराधीन भारत की आत्मा की आकुलता थी। संग्रह की कहानी यही मेरा वतन है में प्रेमचंद ने अपनी मातृभूमि के प्रति जो भाव उकेरे थे वे किसी श्रेष्ठ कविता से कम नहीं थे।
1: साहित्य मनीषी डॉक्टर मनीषा कहती हैं,
2: जब वे सूर्य वतन में दास्तानों की शैली में दुनिया का सबसे अनमोल रतन और शेख मखमूर कहानी सुनाते हैं तो उनका लक्ष्य अपने समय की सबसे बड़ी सच्चाई से ही भेंट कराना था, जिसे हुब्बे वतन कहते हैं। प्रेमचंद के समक्ष कहानी की शैली के लिए कोई दुविधा या संकट की स्थिति कभी नहीं रही। इस संकटहीनता को समझने के लिए सोजे वतन एक सुंदर नमूना है क्योंकि उसमें दास्तानों की शैली से भिन्न कथा रूप की इश्के दुनिया और हुब्बे वतन भी सम्मिलित है। इन सबसे अलग कहानी के कहन का एक रूप यही मेरा वतन है और सिले मातम दिखाई पड़ता है। ये दोनों उत्तम पुरुष शैली की कहानियां हैं। प्रेमचंद अपनी रचनाओं के आरंभ, विस्तार, अंत, घटनाओं के चुनाव, भाषा शैली आदि के विषय में बहुत सचेत थे। वे किसी परफेक्शनिस्ट से कम नहीं थे।
0: 20वीं सदी के प्रथम दशक में जब भारतीय स्वाधीनता संग्राम अपनी राजनीतिक चेतना के नए क्षितिज तलाश रहा था तब इस संग्रह ने कथा साहित्य को क्रांति का एक सशक्त माध्यम बना दिया। संग्रह की पांचवी कहानी सांसारिक प्रेम और देश प्रेम में प्रेमचंद ने ये स्थापित किया कि व्यक्तिगत प्रेम से कहीं ऊंचा स्थान राष्ट्र प्रेम का है। निरंकुश साम्राज्यवादी सत्ताएं शास्त्रों से अधिक विचारों की शक्ति से भयभीत होती हैं। हमीरपुर के तत्कालीन अंग्रेज कलेक्टर ने जब सोजे वतन के पृष्ठ पलटे तो उसे प्रत्येक कथा में विद्रोह की गूंज सुनाई दी। इस कृति की 500 प्रतियों को जब्त करके सरेआम अग्नि के समर्पित कर दिया गया। ब्रिटिश हुकूमत को ये भ्रम था कि उन्होंने कागज जलाकर क्रांति की ज्वाला को शांत कर दिया किंतु वे भूल गए थे कि विचारों की राख से ही नए इतिहास का प्रादुर्भाव होता है।
1: साहित्य मर्मज्ञ मजरुल वासे कहते हैं,
3: ये कहानी संग्रह अंग्रेज सरकार की बर्दाश्त से बाहर था। जिला कलेक्टर हमीरपुर उत्तर प्रदेश ने इसकी सभी उपलब्ध प्रतियां अपने सामने जलवा कर नष्ट करवा दी और लेखक नवाब राय जो उस समय उप विद्यालय निरीक्षक थे को सरकारी कर्मचारी होने के कारण और ये चेतावनी देकर क्षमा कर दिया कि आगे से वे अंग्रेज सरकार के विरुद्ध कोई साहित्य नहीं लिखेंगे। दो विशेष परिवर्तन हुए। प्रथम तो ये कि नवाब राय का नाम बदल गया और वे प्रेमचंद नाम से लिखने लगे। ये नाम उन्हें अखबार जमाना के संपादक दयाराम निगम ने दिया और दूसरा ये कि अब उनकी भाषा उर्दू से हिंदी हो गई।
0: आज जब हम स्वतंत्र भारत की अक्षुण हवाओं में सांस ले रहे हैं तो हमें उस समर्थ लेखनी को भी नमन करना होगा जिसने बंधनों के कालखंड में स्वाधीनता के दीप प्रज्वलित किए थे। सोजे वतन केवल एक पुस्तक नहीं हमारी आजादी की साहित्यिक हुंकार थी।
1: वाचन आनंद श्रीवास्तव, स्वराज सौजन्य, आकाशवाणी आगरा। साहित्य की ये यात्रा उन सबके बिना अधूरी है जिन्होंने अपनी लेखनी से भारतीय साहित्य को समृद्ध किया और आज हमारे बीच शारीरिक रूप से नहीं है लेकिन जिनकी रचनाएं आज भी हमारा मार्गदर्शन कर रही हैं। कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान, उपन्यासकार भगवती चरण वर्मा, कथाकार भीष्म साहनी, उर्दू के मशहूर शायर फिराक गोरखपुरी, जंग के हस्ताक्षर हरिशंकर परसाई, कथा आलोचना के पुरोधा

था राजेंद्र यादव, कन्नड़ साहित्य के ज्ञानपीठ विजेता विनायक कृष्ण गोकक, असमिया साहित्यकार सैयद अब्दुल मलिक और कथा आलोचना के पुरोधा राजेंद्र यादव। भारतीय साहित्य में इन विभूतियों के अवदान को नमन करते हुए संपन्न होता है साहित्य भारती का ये अंक। नवोदिता मिश्रा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में श्रोताओं का स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हम प्रस्तुत कर रहे हैं चिन्मया भगिनी श्रीमती उमा और श्रीमती राधिका का गायन। चिन्मया भगिनी ने अपनी संगीत शिक्षा पद्मभूषण विद्वान मदुरई श्री टी एन शेषगोपालन और कलईमा मणि विद्वान नैवेली श्री आर संतान गोपालन से प्राप्त की। आप अपने गुरु की प्रमुख शिष्याओं में से एक हैं। संगीत के प्रति विशेष अभिरुचि के कारण आप देश विदेश की विविध संगीत सभाओं में अपना गायन प्रस्तुत करती आ रही हैं। आकाशवाणी तथा दूरदर्शन टीवी चैनलों पर आपके द्वारा प्रस्तुत अनेकानेक कार्यक्रम अत्यंत लोकप्रिय हुए हैं। चिन्मया भगिनी अनेक पुरस्कार एवं उपाधियों से अलंकृत हैं। आज के कार्यक्रम में चिन्मया भगिनी के साथ संगत कर रहे हैं वायलिन पर श्रीमती श्रद्धा रविन्द्रन, मृदंगम पर श्री बी गणपति रामन तथा मोरसिंह पर श्री एन सुंदर।
1: दिस इज आकाशवाणी। गुड इवनिंग लिसनर्स। इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग टू यू अ कर्नाटिक क्लासिकल वोकल रिसाइटल बाय चिन्मया सिस्टर्स श्रीमती उमा एंड श्रीमती राधिका। चिन्मया सिस्टर्स आर वन ऑफ द लीडिंग एंड पॉपुलर डियो इन द फील्ड ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक विद देयर मेलिफ्लुस वॉइसेस, spirited singing and strict adherence to classicism, the duo has captured the hearts of rasikas worldwide. Chinmaya sisters are senior disciples of Padma Bhushan awardee Madurai Shri T.N. Seshagopalan and Kalaimamani Neyveli Shri R. Santana Gopalan and have successfully imbibed and observed the specialities of their guru style in their singing. They have travelled extensively and performed in prestigious venues all across India and abroad. They are A-graded artists of Akashvani and have had the privilege of performing in many special programs organized by Akashvani and Doordarshan. In tonight's concert, Chinmaya sisters Srimati Uma and Srimati Radhika are accompanied by Srimati Shrata Ravindra on the violin, Shri B. Ganapati Raman on the Mridangam and Shri N. Sundar on Morsing.
0: कार्यक्रम का प्रारंभ करते हुए चिन्मया भगिनी प्रस्तुत कर रही हैं नाट्य राग और रूपक ताल में हरिकेशनल्लूर मुत्तया भागवतर की रचना शक्ति गणपतिम।
1: The concert for tonight begins with the composition of हरिकेशनल्लूर मुत्तया भागवतर in raga नाट्य set to रूपक तालम शक्ति गणपतिम।

0: चिन्मया भगिनी अब प्रस्तुत कर रही हैं मां मव मीनाक्षी, वराली राग और मिश्र चापुताल में मुत्तुस्वामी दीक्षितर की रचना।
1: चिन्मया सिस्टर्स श्रीमती उमा एंड श्रीमती राधिका फर्दर कंटिन्यूज देयर कॉन्सर्ट विद मा मव मीनाक्षी, अ कॉम्पोजिशन ऑफ मुत्तुस्वामी दीक्षितर इन रागा वराली सेट टू मिश्र चापुतालम।

0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं चिन्मया भगिनी, श्रीमती उमा और श्रीमती राधिका का गायन। आपके साथ संगत कर रहे हैं वायलिन पर श्रीमती श्रद्धा रविंद्रन, मृदंगम पर श्री बी गणपति रामन तथा मोरसिंग पर श्री एन सुंदर।
1: इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी आर लिसनिंग टू अ कर्नाटिक क्लासिकल वोकल रिसाइटल बाय चिन्मया सिस्टर्स श्रीमती उमा एंड श्रीमती राधिका। दे आर अकंपनीड बाय श्रीमती श्रद्धा रविंद्र ऑन द वायलिन, श्री बी गणपति रामन ऑन द मृदंगम एंड श्री एन सुंदर ऑन मोरसिंग।
0: कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए चिन्मया भगिनी प्रस्तुत कर रही हैं मोहनम राग और आदिताल में रचना नन्नू पालिम्पा, रचनाकार हैं संत त्यागराज।
1: चिन्मया सिस्टर्स श्रीमती उमा एंड श्रीमती राधिका कंटिन्यूज देयर कॉन्सर्ट विद नन्नू पालिम्पा, अ कॉम्पोजिशन ऑफ सेंट त्यागराजा इन रागा मोहनम सेट टू आदितालम।

0: अभी आपने सुना तनिया वर्तनम। कलाकार थे मृदंगम पर श्री बी गणपति रामन तथा मोरसिंग पर श्री एन सुंदर।
1: यू जस्ट हियर टू अ तनि आवर्तनम प्लेड ऑन द मृदंगम बाय श्री बी गणपति रामन एंड बाय श्री एन सुंदर ऑन मोरसिंग।
0: कार्यक्रम का समापन करते हुए चिन्मया भगिनी प्रस्तुत कर रही हैं जौनपुरी राग और आदिताल में पापनासम शिवन की रचना मुरुगनई बजी मन में।
1: Chinmaya sisters conclude their concert with Muruganai Bhaji Maname, a composition of Papanasam Sivan in Raga Jaunpuri set to Aditalam.

0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे चिन्मया भगिनी श्रीमती उमा और श्रीमती राधिका का गायन। आपके साथ संगत कर रहे थे वायलिन पर श्रीमती श्रद्धा रविंद्रन, मृदंगम पर श्री बी गणपति रामन तथा मोरसिंह पर श्री एन सुंदर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के चेन्नई केंद्र में रिकॉर्ड किया गया तथा आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया।
1: In tonight's national program of music, you just listened to a Carnatic classical vocal concert by Chinmaya sisters, Srimati Uma and Srimati Radhika. They were accompanied by Srimati Shraddha Ravindran on violin, Sri B. Ganapati Raman on mridangam, and Sri N. Sundar on morsing. With that, we come to the end of tonight's national program of music. This program was recorded at the studios of Akashwani Chennai and was broadcast from Akashwani Delhi.
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के युवा विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कर्नाटक के मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। हम सभी अपने आसपास देख रहे हैं, आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का सपना युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं।
1: पिछले 12 वर्षों में 650 से ज्यादा नई यूनिवर्सिटीज बनी है। पिछले 12 वर्षों में करीब 14,000 नए कॉलेज बने हैं। 4,000 से ज्यादा नई ITI बनाई गई, 9 नए IIM, 7 नई IIT और 13 नए एम्स भी स्थापित किए गए हैं। आज देश में MBBS की सीटें करीब 1,40,000 हो चुकी है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 823 हो गई है।
0: श्री मोदी ने कहा कि खेलो इंडिया, यूनिवर्सिटी गेम्स और यूथ गेम्स ने युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने का अवसर दिया है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के भोगपुरम में अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा कि 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में NDA सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती हैं। सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच व्यापार आज फिर से शुरू हो गया है। इसके साथ ही 6 साल से अधिक समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। व्यापार का फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। गृहमंत्री अमित शाह ने दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता देने के लिए राज्य आपदा मोचन कोष के केंद्रीय हिस्से की अग्रिम राशि के रूप में 2,117 करोड़ 85 लाख रुपए जारी करने की मंजूरी दी है। बाढ़ प्रभावित 7 राज्यों में से हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और नागालैंड को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पहली किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है। ओडिशा में महानदी का जलस्तर बढ़ने से कटक, पुरी, जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा और खुर्दा जिलों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। हीराकुंड बांध से 22 फाटकों के माध्यम से बाढ़ का पानी छोड़ा जा रहा है। 10 निचले जिलों में हाई अलर्ट जारी है। 8 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि 2,69,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी और अन्य संगठनों को मिली विदेशी फंडिंग की जांच शुरू कर दी है। गृह राज्य मंत्री पंकज भोयर ने कहा कि जांच की जा रही है कि विदेश से प्राप्त राशि का इस्तेमाल कैसे किया गया, जबकि प्रवर्तन निदेशालय भी समानांतर जांच कर रहा है। उन्होंने कहा कि अगर राशि का इस्तेमाल गैर कानूनी गतिविधियों के लिए किया गया है तो उचित कार्रवाई की जाएगी। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 12 स्वर्ण, 16 रजत और 8 कांस्य पदकों सहित कुल 36 पदकों के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारतीय मुक्केबाज जैस्मिन लेम्बोरिया, प्रीति पवार, साक्षी चौधरी, प्रिया घंघास, अरुधंति चौधरी और सचिन सिवाच ने अपने अपने फाइनल मुकाबलों में शानदार जीत हासिल करते हुए स्वर्ण पदक जीते। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

टीटी वेब पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में रात के 11:10 हो चुके हैं। संपन्न होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा। कल प्रातः 5:53 पर हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।